दिन सब हो गए हैं गोविंदा के संग। अरे समझे,

0: Mirchi Mornings.
1: Mirchi Mornings with Mirchi Afreen. It's hot.
2: 89.6
1: Mirchi One. It's hot. Mirchi. Fresh Maal.
3: इमरान हाशमी के सॉन्ग्स और प्लेलिस्ट हिट्स दोनों का रिश्ता पुराना है. उनकी अगली म्यूजिकल ऑफरिंग है ये आवारापन.

इस गाने को आवाज दी है अरिजीत सिंह ने, म्यूजिक दिया है अमाल मलिक ने और लिरिक्स लिखे हैं रश्मि विराग ने। आवारापन 2 से सुनते रहिए ये आवारापन, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।

0: Milci. Iskabana, uskabana, sakabana. Rabana. Burga, burga. Na vjet vala burga. Milci, burga.
1: Hello.
2: Hello, madam. Good evening.
1: Hi.
2: Bank se bol le ho na, hamari nahi scheme hai ye. मैडम ताजी स्कीम है, बढ़िया स्कीम है, इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट बिल्कुल कम
1: है। सब्जी बेच रहा है या लोन के
2: लिए? पहले सब पहले सब्जी बेचता था।
1: अगर अगली बार फोन आ गया ना
2: मैडम, तमीज से बात करो वरना यहीं से चपेट मारूंगा सारे दांत। बात कर दो।
1: हेलो
2: मैडम, अगर ये स्कीम लोगी तो धनिया साथ फ्री दे दूंगा
1: मारूंगी ना।
3: प्रीति, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। मुझे पहली बार ये एहसास हुआ कि लड़कियों से ज्यादा पंगे लेने नहीं चाहिए, अपने ऊपर पड़ जाती है यार। आप रेडियो मिर्ची में इतना गुस्सा क्यों कर रही हैं? आपका मुर्गा बन गया
2: मेरा आपका तो मुर्गा बन गया है।
3: प्रीति, ये जो बीप बीप हो रहा था, ये बीप हटा दूं मैं एक बार दिल्ली को सुना दूं?
1: नहीं,
3: से सॉरी,
1: आई एम सॉरी नवे, आई एम सॉरी।
3: प्यार से बोल दीजिए कोकड़ो को है।
1: कुकड़ू गो।
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट,
5: इट्स हॉट।
6: इट्स ऑल डाउन टू धोनी, इज़न्ट इट? फोर बॉल्स लेफ्ट, दे नीड 12 रन्स टू विन।
7: महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है ये सामने वाली टीम को कभी पता नहीं चला, लेकिन उसे पता है। सलमान खान अभी अपने फार्म हाउस में हॉर्स राइडिंग के बारे में सोच रहे हैं या
8: आर यू थिंकिंग ऑफ लाइक अ फ्लाइंग कार्पेट? आर यू थिंकिंग फ्लाइंग कार्पेट?
9: कैसे किया, सीरियसली कैसे किया ये?
7: उसे सब पता है। Ladies and gentlemen, your mind is about to get blown because number one mentalist from India, the Suhani Shah, is coming to Qatar for the very first time. Catch her live on 25th September at QNCC.
10: Early bird tickets out now. Get them at STT Snoo Noo. Book yours now.
7: The mentalist Suhani Shah. Live

बचपन में जब चोट लगती थी तब एक बैंडेड लगा दो और सब ठीक। लेकिन अडल्टिंग के असली मतलब तब समझ आए जब पता चला कि हर टूटी हुई चीज एक बैंडेड हील नहीं कर सकती। अब चाहे दिल टूटे, भरोसा टूटे, सपने टूटे, लेकिन क्या हीलिंग उतनी ही आसान है जितने पहले थी? वेलकम बैक, मैं हूँ आरजे आफरीन आपके साथ ऑन दिस शो मिट्टे मोहब्बत। और एज अ चाइल्ड एक बैंडेज लगता था और दुख छुप जाता था, है ना? लेकिन अब हीलिंग के तरीके भी बदल गए हैं। कभी अपने फेवरेट फूड से, कभी किसी प्यारे इंसान से बातें करके, कभी किसी शांत जगह जाकर, या फिर बस कभी कोई अपना फेवरेट वाला गाना सुनकर। क्योंकि अब हीलिंग सिर्फ जख्म भरने के लिए नहीं होती है ना, सुकून ढूंढने का तरीका बन चुका है।

एक गरम चाय का कप, एक अच्छी खिताब या एक ड्राइव बिना किसी डेस्टिनेशन के, हर किसी की हीलिंग का डेफिनेशन अलग हो सकता है। शायद हम सब एक दूसरे से एक सवाल हमेशा पूछते हैं, कैसे हो? और शायद कभी कभी बस ये सवाल सुनना भी एक तरीका होता है हील होने का, नहीं? Well, इसी सब में ये तो जरूर पता लग गया है दैट जिंदगी का राज ये समझ आया है, सुकून ना किसी जगह में था ना किसी इंसान में, सुकून बस अपने अंदर ढूंढना होता है। तो दोस्तों, अगर आज दिल हल्का नहीं लग रहा है ना, तो अपना फेवरेट स्पॉट ढूंढ लो, फेवरेट सॉन्ग या फिर लगा दो, या फिर बस किसी अपने से बात कर लो, शायद हीलिंग शुरू हो जाएगी। मिर्ची पर आप सुन रहे हो आफरीन को, सिटी विद मी ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: वेल, आपको बातों में उलझाने के लिए थोड़ी ना मैं आई हूँ भाई, बातों में एंटरटेन करने के लिए आई हूँ मैं। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। आप सुन रहे हो सिंपली आफरीन को राइट हियर ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। और बातें तो भाई आप अच्छी अच्छी कर लेते हो, क्योंकि यार गुड मॉर्निंग मैसेजेस जिस तरह से आते हैं ना सुबह सुबह, लिटरली आई एम टेलिंग यू, मेरा ना दिन बन जाता है। जैसे वेदर का हालचाल सुनकर गुड मॉर्निंग शुड मॉर्निंग करेंगे या उसके पहले, चलो वेदर का हालचाल सुना ही देती हूँ, फिर गप्पे वापस मारेंगे आराम से।
1: नाम तो जानते हो मेरा, तापमान सलमान।
0: वेदर अपडेट। वेल, वेदर ये कह रहा है 45 डिग्री सेल्सियस पर मैक्सिमम चलेगा, 33 पर मिनिमम चलेगा। एक्चुअल जो महसूस कर रहे हो आप, 44 चल रहा है, ह्यूमिडिटी लगभग कल की तरह ही है। और इसी बात पर देखा जाए तो यार वो लोग जो चश्मे पहनते हैं ना, आप लोगों को तो बहुत दिक्कत होती होगी ना, जैसे ही आप एसी या कहीं से बाहर निकलो तो बस पूरी तरह से आपके चश्मे फॉग हो जाते हैं और कुछ भी नजर नहीं आता है ना। हैविंग सेड दैट, गुड मॉर्निंग मैसेजेस के बारे में मैं बातें कर रही थी यहाँ पर, जहाँ पर गुड मॉर्निंग आफरीन अलीशान का कहना है, देन आई हैव अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, आपका दिन अच्छा गुजरे और आपको ढेर सारी खुशी और कामयाबी आता करे, आमीन। यस, व्हाट अ ब्यूटीफुल मैसेज आज है सेट के, आप लोग बहुत ही खूबसूरत तरीके से गुड मॉर्निंग कहते हो। सैफुल्ला का भी मैसेज आता है गुड मॉर्निंग, एंड देन इमरान का मैसेज आता है सेइंग दैट द वर्ल्ड गेट्स इट्स मॉर्निंग सन बट आई गेट माई डेली स्पार्क फ्रॉम योर वॉइस, हैव अ वंडरफुल शो टुडे, थैंक यू सो मच। जुल्फिकार भी यही कहते हैं गुड मॉर्निंग, एंड हु इज दिस, और नाजीन का भी मैसेज आ रहा है गुड मॉर्निंग एंड गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग आप सभी को। और मैसेज आप भी करना चाहते हो तो 5000 1896 इज माई व्हाट्सएप नंबर। मीन वाइल अरिजीत सिंह इज बैक अगेन, बट दिस टाइम विद नीति मोहन। माइक से दिल तक आप फ्री के साथ बने रहिएगा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: गूगल आपकी सर्च हिस्ट्री जानता है, इंस्टाग्राम आपकी लाइक्स, नेटफ्लिक्स आपकी चॉइस, लेकिन सुहानिशा वो सब जानती है बिना किसी प्रॉम्प्ट, पासवर्ड या परमिशन के। एक्सपीरियंस द इम्पॉसिबल फॉर द फर्स्ट टाइम, इंडियाज मोस्ट सेलिब्रेटेड मेंटलिस्ट सुहानिशा लाइव इन कतर ऑन 25th सितंबर एट QNCC।
1: Early bird tickets out now. Get them at STD Snoo Noo. Book yours now.
0: The Mentalist Suhani Shah.

इनफैक्ट एक धुन नहीं, ये मूवी के सारे धुन बहुत ही खूबसूरत है। सैयारा मूवी का ये गाना था, अरिजीत सिंह की आवाज थी, लेकिन कंपोजर और लिरिसिस्ट दोनों मिथुन, हुज डन मैजिक इन दिस मूवी सैयारा। एक ऐसी मूवी जो आजकल के यूथ को बहुत ज्यादा रेजोनेट कर रही थी। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक, सिंपली आफरीन का साथ है एंड वी आर टॉकिंग अबाउट यूथ। आज 12th अगस्त है एंड टुडे इज इंटरनेशनल यूथ डे। वैसे यूथ की सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है पता है आजकल के नौजवानों की, कि उनके पास एक्सपीरियंस ऑफकोर्स कम है लेकिन सवाल बहुत होते हैं। वाई नॉट, वाई कांट वी, इसको बेहतर कैसे कर सकते हैं? और आई थिंक यही सवाल किसी भी सोसाइटी को आगे लेकर जाते हैं, है ना। यूथ हमारा फ्यूचर ही नहीं है, ऑब्वियसली They are very much the present as well. नए ideas, नए careers, technology, entrepreneurship, social change, हर जगह ये नौजवानों की आवाज जो है already it's shaping the world. आज का एक छोटा सा trivia आपके लिए मैं बताऊँ कि International Youth Day का जो idea है actually young people से ही आया था। 1991 में वियना में UN World Youth Forum में यंग पार्टिसिपेंट्स ने इंटरनेशनल यूथ डे प्रपोज किया। लेटर 1999 में यूएन जनरल असेंबली ने ऑफिशियली 12 अगस्त को इसे बिल्कुल एंडोर्स किया और पहली बार ये फिर 12 अगस्त 2000 में ऑब्जर्व हुआ है। वैसे बात करें आज कतर में भी आज से प्लेस वेंडम में फ्रॉम लर्निंग टू लीडिंग एम्पावरिंग यूथ इस इनिशिएटिव का स्टार्ट होने वाला है। ये कैंपेन स्टार्ट होने वाला है 12 से लेकर 16 अगस्त। प्लेस वेंडम इज द प्लेस और यहां पर फोकस होने वाला है यूथ स्टोरीज, स्किल्स और यंग पीपल को एक्शन के हिसाब से उनके अपॉर्चुनिटीज पर। वेल, हो सकता है ये जो है यंग पीपल को सिर्फ जो गाइड नहीं कीजिए, हमें उन्हें सुनना भी है। और कहते हैं ना कभी कभार जो सबसे फ्रेश आइडियाज होते हैं एक कमरे में वो इन्हीं से आते हैं। मैं हूँ आफरीन आपके साथ और आप सुन रहे हो 89.6 मिर्च यू वन, इट्स हॉट।

0: Hollywood, Bollywood, Boulder.
1: Only on Mirchi. It's hot.
2: नेहा शर्मा, आपको आए दिन कोई ना कोई ट्रोल करता रहता है, अगर आपको किसी को ट्रोल करना होता तो क्या कहते?
3: अंदर से मैं ट्रोल करना चाहती हूँ, but I can't. But if I were to, I would. You know, there are people, it's unbelievable. कुछ लोग नीचे लिखते हैं, रोज जिम जाते हो फिर भी पतले नहीं हो रहे. तुम लोगों को क्या सिक्स पैक्स एट पैक्स है क्या घर पे? जाओ ना जिम, इट्स हार्ड वर्क. हाँ जाओ डेली जिम, इट्स नॉट ईजी.
2: करेक्ट, नेहा शर्मा सही कह रही है. It is very easy to troll, but it's not easy to go to the gym. Aap sun rahe hain Mirchi. It's hot.
0: Bollywood Boulder. Bollywood, Bollywood, Bollywood Boulder.
1: Only on Mirchi. It's hot.
4: It's all down to Dhoni, isn't it? Four balls left. They need 12 runs to win.
5: महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है ये सामने वाली टीम को कभी पता नहीं चला, लेकिन उसे पता है. सलमान खान अभी अपने फार्म हाउस में हॉर्स राइडिंग के बारे में सोच रहे हैं.
6: या आर यू थिंकिंग ऑफ लाइक अ फ्लाइंग कार्पेट? आर यू थिंकिंग फ्लाइंग कार्पेट?
7: कैसे किया? सीरियसली कैसे किया ये?
5: उसे सब पता है. Ladies and gentlemen, your mind is about to get blown because number one mentalist from India, the Suhani Shah, is coming to Qatar for the very first time. Catch her live on 25th September at QNCC.
8: Early bird tickets out now. Get them at STD Snoo Noo. Book yours now.
5: The mentalist Suhani Shah.

0: वो देखो टूटता तारा। आप कहोगे आफरीन दिन में टूटे तारे की बातें कर रही हो, लेकिन रात में तो आप ये कर सकते हो ना। वेल बॉलीवुड में कितनी बार ऐसे दिखाया ना रोमांटिक सीन्स में, वो देखो टूटा तारा अपनी जो विश है वो इससे मांग सकते हो और वो फिर कबूल होती है ना, ऑल दोस थिंग्स। लेकिन लेट मी टेल यू, टूटा तारा जिसे शूटिंग स्टार भी कहते हैं, एक्चुअली एक टूटा तारा नहीं होता है। स्पेस में एक टाइनी सा रॉक या डस्ट पार्टिकल जब बहुत तेज स्पीड से अर्थ के एटमॉस्फेयर में आता है ना, तो वो हीट की वजह से चमक उठता है और हमें स्काई में वो ब्यूटीफुल सी जो लाइट स्ट्रीक दिखाई देती है जिसे हम शूटिंग स्टार कहते हैं या फिर टूटा तारा कहते हैं। नाउ व्हाई एम आई टॉकिंग अबाउट ऑल दिस टुडे, क्योंकि आज यानी 12 अगस्त की रात से लेकर 13 अगस्त की अर्ली मॉर्निंग कल सुबह तक पर्सिड मीटियर शावर अपने पीक पर होने वाला है। एंड ये जो साल है 2026 इज एक्चुअली अ ग्रेट ईयर टू वॉच इट, बिकॉज न्यू मून के वजह से हमारा जो आसमान है कंपैरेटिवली डार्क रहेगा, उसके वजह से बेटर विजिबिलिटी रहेगी ग्लोबली। इनफैक्ट परफेक्ट डार्क स्काई कंडीशन में पर्सियड्स जो होते हैं 8 से 10 मीटियर्स पावर पर आवर भी ये प्रोड्यूस कर सकते हैं। मतलब अगर आपको ये देखना है सो यू एक्चुअली डोंट नीड एन ऑब्जर्वेटरी और सम टेलीस्कोप और समथिंग टू वॉच दिस। आप कहीं डार्क जगह, मतलब हमारे जो दोहा सिटी लाइट से कहीं दूर जाकर स्क्रीन को थोड़ी देर बाय बाय कहने के बाद आंखों को ना डार्कनेस में एडजस्ट होने के लिए तकरीबन 20 से 30 मिनट लगते हैं, एंड देन जस्ट लुक अप यू माइट जस्ट एक्सपीरियंस समथिंग मैजिकल। एंड दिस इज फॉर समवन जो इस तरह से आसमानों में तारों में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं। एंड कभी कभार हमें भी ऐसे करना चाहिए ना, इवन इफ़ यू आर नॉट, शायद अब से हमारा इंटरेस्ट जाग उठे और उसके बाद में जो सुकून मिलता है ना, पहली बात तो शहर से दूर और बस खुले आसमान और इतने सारे तारों के बीच, अ वेरी ब्यूटिफुल फीलिंग।
1: कैसे तू गुनगुनाए मुस्कुराए,
0: अक्षत की आवाज में ही अगला गाना राइट हियर ऑन मिर्ची माइक से दिल तक आप ट्रेन के साथ बने रहिएगा।

0: हेलो, मिर्ची हेल्पलाइन।
1: नहीं नहीं हेल्पलाइन मिर्ची, बताओ सवाल क्या है।
0: आजकल जिसे देखो इन्फ्लुएंसर बन के घूम रहा है, और एक मैं हूँ, मुझे रील बनानी भी नहीं आती, मैं क्या करूँ?
1: तो तू एक काम कर, मैंने रील डाला है, तू फटाफट लाइक कमेंट और शेयर तो कर दे।

0: Mirchi Mornings.
1: Mirchi Mornings with Mirchi Afreen. It's hot.
2: 89.6
1: Mirchi One. It's hot.
3: मिर्ची घड़ी का इशारा सुबह के 7 बजे की तरफ और आप सुन रहे हो सिंपली आफ्टरनून को राइट हियर ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स इट्स हॉट
4: इन एसोसिएशन विद नसीब मेडिकल सेंटर कतर्स लार्जेस्ट प्राइवेट मेडिकल सेंटर

0: लेकर।
1: वेल संजू राठौर की आवाज में ये गाना राइट हियर ऑन मिर्ची एंड आई एक्चुअली लाइक हिज सॉन्ग्स। मतलब हाँ, जेंजी आवाज है और कुछ तो इनोसेंस है। इसके लिरिक्स बहुत ही सिंपल रहती है और कनेक्ट करती आती है बस लोगों से, है ना। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। आप सुन रहे हो सिंपली आफ्टरनून को राइट हियर ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। और देखो, वैसे तो आपको सब पता है, सब जानते हैं, लेकिन ना कभी कभार थोड़े से जेंटल रिमाइंडर्स अच्छे होते हैं। और ये मेरी तरफ से नहीं, ये मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की तरफ से एक इम्पॉर्टेंट रिमाइंडर आया है कि जब भी आप रात के वक्त ड्राइव करते हैं ना, तो व्हीकल की लाइट्स ऑन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ट्रैफिक लॉ के आर्टिकल 70 के अकॉर्डिंग बिना लाइट्स के नाइट ड्राइविंग का एक ट्रैफिक वायलेशन होता है। और हेडलाइन जिसने सबका अटेंशन पकड़ा ये है कि पेनल्टी जो है इसकी 10,000 कतरी रियाल तक जा सकती है। यस, नो, दिस इज नॉट सम 500 या 1,000 वाली पेनल्टी, दिस इज 10,000 कतरी रियाल वाली। सो दिस इज डेफिनेटली नॉट वन ऑफ दोस सिचुएशंस के भाई अच्छा स्ट्रीट लाइट्स तो ऑन है ना। नहीं, देखिए लॉजिकली भी अगर देखा जाए तो हेडलाइट सिर्फ आपको रोड दिखाने के लिए नहीं होती है ना, दे मेक यू विजिबल टू एवरीवन एल्स ऑन द रोड एज वेल। सो वैसे तो आप समझदार हो ही, बस छोटा सा जेंटल रिमाइंडर था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले गाने की तरफ। और कोक स्टूडियो टाइम, मामे खान की आवाज में ये कोक स्टूडियो वर्जन ऑफ चौधरी ऑन मिर्ची माइक से दिल तक आफरीन के साथ। इट्स हॉट।

0: Mirchi. Iskabana, puskabana, sakabana. Rabbana. Burka, burka. La fiesta la burka. Mirchi, burka.
1: Mirchi.
2: It's Navid.
1: बोल रहा हूँ।
2: अगर किसी का वो जो बनाते हैं आप उल्लू, उसके लिए क्या करना पड़ेगा?
1: वो आपको मुझे बताना होगा।
2: तो मैं अभी बता दूँ?
1: एक सेकंड, ये फॉर्म भर देते हैं। क्या नाम है आपका?
2: संजना।
1: संजना, किसका मुर्गा बनवाना है आपको?
2: अपने हस्बैंड का।
1: क्या बात कर रही हैं, और कोई नहीं मिला आपको?
2: फिलहाल अभी कोई दिमाग में नहीं आ रहा।
1: अच्छा संजना, मुझे प्लीज आप ये बता देंगे कि ये इनको कितना गुस्सा आता है, ताकि मैं उसी हिसाब से इनसे बात करूँ फिर मुर्गा बनाऊँ। बहुत ज्यादा भड़क जाते हैं?
2: भड़क भी जाते हैं।
1: अरे बाप रे। तो मुझे संजना प्लीज बता देंगे किस तरह भड़कते हैं ये?
2: अब्यूजिंग वे में, थोड़ा
1: अब्यूजिंग वे में। जैसे कि कैसे?
2: आप मुझे शुरू कीजिए, फिर मैं बताता
1: हूं। ओके चलिए।
3: हेलो सर, मैं इस बैंक से बोल रहा हूँ, फलाना बैंक से। सर आपको लोन देना है, 2 मिनट दे सकते हैं?
2: नहीं, मेरे पास अभी टाइम नहीं है।
3: सर थोड़ा सा 2 मिनट दे दीजिए यार, क्या बात जाती है आपकी? अरे शर्म किस बात की यार, हम लोन बेच रहे हैं, आप मुझे बता दीजिए। सर आप एक तो तमीज से बात करिए, आप लोन लेना है ले लीजिए, तमीज से बात करिए, बदतमीज कहीं का।
1: मुझे भी अच्छा नहीं लगता कि मैं इस तरीके से किसी का मुर्गा बनाऊं। और संजना मैं तुम्हें ये कहना चाह रहा था कि तुम्हारा मुर्गा बन चुका है। मैं रेडियो में चिपके
2: मैंने अपना बनवाने के लिए फोन नहीं किया था।
1: हम तो किसी का ही बना देते हैं, आपके हस्बैंड से ज्यादा हमदर्दी हो गई, किसी दिन उनका ही बनाएंगे। फिलहाल आपका बन गया है, मेरे साथ प्यार से कह दो एक बार, कुकुड़ुकु। थैंक यू।
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: Conditions apply.
1: It's all down to Dhoni, isn't it? Four balls left. They need 12 runs to win.
2: महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है ये सामने वाली टीम को कभी पता नहीं चला, लेकिन उसे पता है। सलमान खान अभी अपने फार्म हाउस में हॉर्स राइडिंग के बारे में सोच रहे हैं या
3: आर यू थिंकिंग ऑफ लाइक अ फ्लाइंग कारपेट? आर यू थिंकिंग अ फ्लाइंग कारपेट?
4: कैसे किया, सीरियसली कैसे किया ये?
2: उसे सब पता है। Ladies and gentlemen, your mind is about to get blown because number one mentalist from India, the Suhani Shah, is coming to Qatar for the very first time. Catch her live on 25th September at QNCC.
5: Early bird tickets out now. Get them at STD Snoo Noo. Book yours now.
2: The mentalist Suhani Shah.

0: होए।
1: अच्छा कभी सोचा है कि आपका अगर कोई माइंड रीड कर ले तो, मतलब एकदम सही सही आपके दिमाग में जो चल रहा है वो बता दे। और यस, मैं कोई साईफाई मूवी या फिर कोई वेब सीरीज की बात नहीं कर रही हूँ, मैं बिल्कुल रियलिटी में बात कर रही हूँ। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं सिंपली आफरीन को। और बिल्कुल हमारे कतर में ऐसे ही कुछ रियलिटी में जादू होने वाला है, और वो कब क्या वही तो बताने आई हूँ मैं। यस, वेरी फेमस मेंटलिस्ट सुहानी शाह हमारे कतर आने वाली है 25th of September, और ये इवेंट हमारा मिर्ची आपका अपना मिर्ची लेकर आया है भाई। वेल, चलिए बात करते हैं सुहानी शाह के बारे में। आई एम श्योर इंस्टाग्राम पर और सोशल मीडिया पर आपने इतने सारे वीडियोज इनके देखे होंगे, सलमान खान के साथ, आमिर खान के साथ, वे शी इज एब्सोल्युटली रीडिंग द माइंड। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात यह है कि बहुत लोगों को लगता है कि वो मैजिशियन है, बट नहीं, वो अपने आप को एक मेंटलिस्ट कहलाती है। वो इसलिए क्योंकि सिर्फ ट्रिक्स दिखाना नहीं उनका काम है, बल्कि ऑब्जर्वेशन, साइकोलॉजी, बॉडी लैंग्वेज और ह्यूमन बिहेवियर को इतनी डीपली ये समझती है कि आपको सच में लगेगा कि भाई ये कैसे कर रही है, भाई क्या, हाउ इज इट इवन पॉसिबल। बिलीव इट और नॉट, उन्होंने सिर्फ 7 साल की एज में स्टेज पर परफॉर्म करना शुरू कर दिया था। आज उनके नाम पर हजारों लाइव शोज हैं, दुनिया भर में सोल्ड आउट परफॉर्मेंसेस हैं, और अब हमारे कतर भी वो लेकर आ रही है ये मैजिक। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, फटाफट से टिकट्स बुक करो, क्योंकि पहली बार ऐसा कुछ हो रहा है हमारे कतर में, है ना, मतलब मिर्ची पहली बार ऐसा कुछ लेकर आया है एटलीस्ट। सो यू कैन नॉट मिस सुहानी शाह, दैट इज हैपनिंग लाइव इन कतर 25th of September, और ये होने वाला है QNCC में। तब तक के लिए आप जो है फटाफट से जाइए SCT यानी सोनो सिटी से जाके अपनी टिकट्स बुक कर लीजिएगा। माइक से दिल तक आफरीन है आपके साथ ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। This is the future, man.

0: जस ने सोचा था सिर्फ वाइफ क्यों, लंदन में एक गॉर्जियस गर्लफ्रेंड भी रख लूं। जस को लगा है जवानी तो इश्क होना है, पर जब पुराने रिश्ते नए सीक्रेट से टकराए तो एक लाई छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़े। एक लड़का, दो लव स्टोरीज और अनलिमिटेड केओस। है जवानी तो इश्क होना है। स्ट्रीम इट नाउ ओनली ऑन Z5। डाउनलोड द ऐप नाउ। गूगल आपकी सर्च हिस्ट्री जानता है, इंस्टाग्राम आपकी लाइक्स, नेटफ्लिक्स आपकी चॉइस, लेकिन सुहानी शाह वो सब जानती है बिना किसी प्रॉम्प्ट, पासवर्ड या परमिशन के। एक्सपीरियंस द इम्पॉसिबल फॉर द फर्स्ट टाइम, इंडियाज मोस्ट सेलिब्रेटेड मेंटलिस्ट सुहानी शाह लाइव इन कतर ऑन 25th सितंबर एट QNCC।
1: अर्ली बर्ड टिकट्स आउट नाउ, गेट देम एट STD Snoo Noo, बुक योर्स नाउ।
0: द मेंटलिस्ट सुहानी शाह।

0: पवन सिंह और सुमन चौधरी की आवाज में ये गाना राइट हियर फ्रॉम द मूवी स्त्री। और देखिए भाई, आ भी गई और सवाल में लेकर आ गई हूँ आपके लिए। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। सिंपली आफ्टरनून का साथ है राइटर ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। और सवाल आज का, लाइट्स कैमरा सीन टेस्ट, एक ऐसी सीन और एक ऐसी मूवी और विच नीड्स एब्सोल्युटली नो इंट्रोडक्शन, आई थिंक सो द सीन इज गोना से इट ऑल। एंड ऐसी कोई कोई मूवीज होती है ना जिसके सीन और डायलॉग इज एब्सोल्युटली नॉट फेमस, ठीक है, फिर भी आप जब सुनोगे एक बार में ना आपको पता लग जाएगा ये कौन सा सीन है। इतने मतलब आपको पूरी मूवी रटी हुई होती है ना, उनमें से एक है ये।
1: Lights, camera, scene test. Scene test.
2: जब मैं 17 साल की थी ना, मेरा तब से ड्रीम है कि मैं अपनी फेवरेट जगह जाऊं हनीमून के लिए।
3: गोवा?
2: नहीं, फॉरेन कंट्री, पेरिस। पेरिस मेरी फेवरेट जगह है और उनकी एम्स्टरडैम।
3: एम्स्टरडैम वो कहाँ पड़ता है?
2: पेरिस से आगे ही है, ट्रेन में जाना पड़ता है।
3: तो कब जाना है?
2: शादी के अगले दिन।
0: All right. A simple conversation है ना, simple dialogue है, simple conversation है, लेकिन फिर भी ये बहुत ही अच्छी और famous movie से है। 5000 1896 is my number. Come here and tell me कौन सी movie है ये। Meanwhile, वरुण जैन, सचिन जिगर, शादा फरीदी, ये सारे लोगों की आवाज में ये अगला गाना आपका इंतजार कर रहा है। तेरे वास्ते ही ये गाना लगा रही हूँ और गाने का नाम भी तेरे वास्ते। अनमिर्ची, इट्स हॉट।

0: हॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: गुलशन देवैया कौन सी फिल्म को देखकर लगा था कि मुझे एक्टर बनना है, मैं भी ये कर सकता हूँ?
2: सत्या देखे तो उम्मीद जगी थी कि हम आ सकते हैं। मनोज जी को देखे लगा कि नहीं नहीं कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं।
1: ये तो सत्य है कि आप भी कर सकते हैं। दिस वॉज गुलशन देवैया ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
0: बॉलीवुड बोल्डा बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
3: अरे यार, इतना सारा डेटा और कॉल्स कैसे मिल गया रिचार्ज में?
4: क्योंकि मैंने रिचार्ज किया ओरेडो के योर स्पेशल ऑफर से।
3: योर स्पेशल ऑफर?
4: हाँ, ये रिचार्ज मेरे हाला नंबर के लिए स्पेशली बना हुआ ऑफर है। ज्यादा वैल्यू और वो बेनिफिट्स जो मुझे एक्चुअली चाहिए।
3: ये तो मेरे नॉर्मल रिचार्ज से काफी बेटर लग रहा है।
4: बिल्कुल, योर स्पेशल ऑफर मेरे लिए सबसे अच्छा रिचार्ज ऑप्शन है।
3: ओरेडो का योर स्पेशल ऑफर, यानी वो ऑफर जो बना है खास आपके लिए। अभी ओरेडो ऐप पर चेक करें या अपने नियरेस्ट रिटेलर पर जाएं। एक्सपीरियंस मोर विद ओरेडो।
5: It's all down to Dhoni, isn't it? Four balls left, they need 12 runs to win.
6: महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है ये सामने वाली टीम को कभी पता नहीं चला, लेकिन उसे पता है। सलमान खान अभी अपने फार्म हाउस में हॉर्स राइडिंग के बारे में सोच रहे हैं या
7: आर यू थिंकिंग ऑफ लाइक अ फ्लाइंग कार्पेट? आर यू थिंकिंग फ्लाइंग कार्पेट?
8: कैसे किया, सीरियसली कैसे किया ये?
6: उसे सब पता है। Ladies and gentlemen, your mind is about to get blown because number one mentalist from India, the Suhani Shah, is coming to Qatar for the very first time. Catch her live on 25th September at QNCC.
9: Early bird tickets out now. Get them at STT Snoonu. Book yours now.
6: The mentalist Suhani Shah.

0: सोनू निगम और सुनिधि चौहान की आवाज में दिल मांगे मोर से ये गाना। और आपको याद है ये मूवी में एक्टर कौन थे? शाहिद कपूर वॉज द एक्टर। और इसमें ना तीन हीरोइंस थी, आई एम राइट, और वो तीन हीरोइंस में एक सोहा अली खान थी और एक वो टूलिप आई थिंक सो, अच्छी खासी कुछ तो ऐसी तीन हीरोइंस, आयशा टाकिया थी, हाउ कैन आई फॉरगेट हर, एंड देन टूलिप जोशी, यस यस यस टूलिप जोशी, सर नेम याद नहीं आ रहा था, लेकिन याद आई आपको ये मूवी? वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक, आप सुन रहे हो सिंपली आफरीन को। और कैसी कमाल की बात है ना कि भले ही बात 20 साल पहले या 15 साल पहले की मूवी की हो, हमें ना मोस्टली वी नो द मूवीज, वी नो द स्टार कास्ट और आस्क मी अबाउट एनी मूवी जो 2 साल पहले की हो। जैसे है जवानी है तो इश्क होना, अभी आप ये जस्ट रीसेंट मूवी है, इसके मुझे एक्टर्स के नाम बताओ, याद है आपको? अरे नहीं याद है, मुझे पता है यार। चलिए फिलहाल, लेकिन अगर आपको कुछ याद रहेगा तो ये सीन कौन सी मूवी का है ये जरूर याद रहेगा।
1: लाइट कैमरा सीन टेस्ट, सीन टेस्ट।
2: जब मैं 17 साल की थी ना, मेरा तब से ड्रीम है कि मैं अपनी फेवरेट जगह जाऊं हनीमून के लिए।
3: गोवा?
2: नहीं, फॉरेन कंट्री, पेरिस। पेरिस मेरी फेवरेट जगह है और उनकी एम्स्टरडैम।
3: एम्स्टरडैम वो कहाँ पड़ता है?
2: पेरिस से आ गई है, ट्रेन में जाना पड़ता है।
3: तो कब जाना है?
2: शादी के अगले दिन।
0: Alright, a very simple conversation, but I think so it sums up the entire movie. ऐसी movie जहाँ पर ये लड़की honeymoon पे जा रही है, Paris जा रही है, Amsterdam जा रही है, but अकेली जा पड़ती है। अब मैंने ये तो बहुत बड़ा हिंट दे दिया, लेकिन नाउ इसके बावजूद भी अभी हिंट तो मैंने अभी दिया, तब इसके पहले नहीं दिया था। आई हैव गॉट सम आंसर्स वेयर पीपल आर सेइंग तनु वेट्स मनु रिटर्न्स, ये ऐसा क्यों? इनफैक्ट मुझे एक मैसेज भी, वॉइस मैसेज भी आया है, और फिर यहाँ पर और किसका मैसेज है, किसी का मैसेज है कि रहना है तेरे दिल में, शायद हो सकता है कि आपको प्यारी सी आवाज़ दिया मिर्जा की लगे, लेकिन नहीं। यहाँ पर आलोक का देखो मैसेज आया है, देन आई हैव मोहम्मद यूसुफ खान अनदर सेइंग दैट इट इज क्वीन, ऑफकोर्स कंगना रनौत की क्वीन मूवी का ये डायलॉग था। एंड टॉकिंग अबाउट दिस मूवी, ये तो पता होगा आपको कि ऑफकोर्स पेरिस में शूट हुई है, एम्स्टरडैम में शूट हुई है, लेकिन पता है क्या कि बजट बहुत कम था इस मूवी का, तो इंडिया से इस शूट के लिए सिर्फ 25 लोग ही गए थे। दिस इज नॉट नॉर्मल, क्योंकि जब बाहर की शूटिंग की बात होती है ना, तो बहुत सारे लोग जाते हैं द स्टार कास्ट के साथ में, उनकी जो टीम होती है बहुत होती है। बट नाउ इनके बजट के अनुसार ये क्या करते थे ना, कि ये कोई जगह को सिर्फ कुछ घंटे के लिए बुक करते थे, फिर वहाँ पे शूट कर लिया, आस पास के होटल में कुछ खा लिया। और इनफैक्ट कई बार ऐसा होता था कि कंगना रनौत को अपने कपड़े जो है आस पास के पब्लिक टॉयलेट्स में चेंज करने पड़ते थे। सो they are actually shot at 145 different locations in just 40 days. And what a movie they made, yaar. Queen, Kangana Raut ki movie ka ye gaana, Amit Trivedi ki music. Agla gaana coming, Jugni, on your way. Mike Sadhul tak aap stream ke saath bane rahiyega. It's hot.

0: हेलो, मिर्ची हेल्पलाइन।
1: जी बिल्कुल, मिर्ची हेल्पलाइन, बता बेटा सवाल क्या है।
0: सर, मैंने 3 अलग अलग बिजनेस किए, उनके लिए मार्केटिंग भी किया, पर कुछ बिक नहीं रहा, मैं क्या करूं? कुछ सोल्यूशन बताओ ना।
1: अरे बेटा, सिंपल सा सोल्यूशन है, तू एक काम कर, दुकान ही बेच दे।
2: अब जो

0: 89.6 Mirchi 1. It's hot.
1: मिर्ची घड़ी का इशारा सुबह के 8 बजे की तरफ आ रहा है। सुन रहे हो सिंपली आफ्टरनून को ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। इट्स हॉट
2: इन एसोसिएशन विद नसीब मेडिकल सेंटर, कतर्स लार्जेस्ट प्राइवेट मेडिकल सेंटर।
3: मिर्ची मॉर्निंग्स
4: विद मिर्ची आफ्टरनून। इट्स हॉट
5: 89.6
0: Mirchi 1. It's hot.
6: Mirchi. Fresh Maal.
7: Love, loss, or hope ka musical safar. Ve Junoon.

0: गाने को गाया है सुबोध शर्मा ने, म्यूजिक दिया है मिथुन ने और लिरिक्स लिखे हैं सईद कादरी ने। फिल्म आवारा पंटू से सुनते रहिए बेजुनून, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप, सब्सक्राइब टू द गाना, 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।
1: देखो आजकल की दुनिया में रील्स बनाना किसे नहीं आता, पर इस टाइम ये शायद आपको कोई फायदा दिला सकता है। अब बताओ ये जो फायदा है ये इन्फ्लुएंसर्स और ब्लॉगर्स तक ही सीमित क्यों ना हो। वेल लेट्स टॉक समथिंग सीरियस। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक, आप सुन रहे हो सिंपली आफरीन को। और देखिए अगर आपकी उम्र 18 से 35 के बीच है, आप स्टूडेंट है या यंग प्रोफेशनल है और फोन से रील्स बनाना आता है, तो इस बार आपकी क्रिएटिविटी सिर्फ व्यूज नहीं WHO तक पहुंच सकती है। यस यू हर्ड इट राइट, बिकॉज कतर मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक हेल्थ इज एनकरेजिंग यंगस्टर्स हियर इन कतर टू पार्टिसिपेट इन द WHO ग्लोबल यूथ कॉम्पिटिशन ऑन इन्फ्लुएंस and COVID-19 prevention and control. देखो थीम बड़ा सा सिंपल है, हाउ डू यू शील्ड योर सर्कल फ्रॉम रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस, मतलब इन्फ्लुएंजा कोविड जैसे इन्फेक्शन से अपने आसपास के लोगों को प्रोटेक्ट करने का मैसेज, बट आपके क्रिएटिव अंदाज में। अब यहाँ इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि वीडियो सिर्फ 90 सेकेंड्स का होना चाहिए, स्टोरी टेलिंग हो, इंटरव्यू, रील, एनिमेशन, पोएट्री या डायलॉग, फॉर्मैट इज कम्प्लीटली अप टू यू। आप किसी भी लैंग्वेज में बना सकते हैं, बस इंग्लिश सबटाइटल्स जरूर होने चाहिए। एंड हियर्स अ लिटिल वैल्यू एडिशन मेरी तरफ से कि आप मैक्सिमम 3 वीडियो सबमिट कर सकते हैं। अगर AI यूज किया है तो सिंपली सबमिशन फॉर्मेट डिस्क्लोज करना बहुत जरूरी है। देखिए डेडलाइन जो है इसका 13 सितंबर 2026 तक है और ग्लोबल विनिंग वीडियो WHO की वेबसाइट पर फीचर होगा। विनर को अक्टूबर में WHO के ग्लोबल वेबिनार में अपना वीडियो प्रेजेंट करने का इन्विटेशन और WHO सर्टिफिकेट भी मिलेगा। सो वेलकम के यंग क्रिएटर्स, रील तो रोज बनाते हैं लेकिन इस बार रील विद रीजन बना के तो देखिए। डिटेल्स सारी आपको मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक हेल्थ कतर के ऑफिशियल चैनल्स पर मिल जाएगी। माइक से दिल तक आफरीन है आपके साथ, राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirchi.
1: Iskra bala, uska bala, saka bala. Ya bala. Burga, burga. La fiat bala, burga. Mirchi, burga.
2: Hello.
3: Hello, Mr. Vipul, ma'am. से बोल रहा हूँ आपका कुछ दिन के लिए हमें इनबॉक्स चाहिए आपके मोबाइल का इनबॉक्स तो मैं अपना आदमी भेज दूँ या आप यहाँ पे आके जमा करा देंगे
2: इनबॉक्स चाहिए इनबॉक्स कैसा मतलब
3: मैं आपको वही समझा रहा हूँ एक्चुअली हमारी कंपनी अपना सर्वर चेंज कर रही है तो सर्वर में जो डेटा होता है अब वो सर्वर हटाएंगे तो सारा डेटा हमें कहीं तो रखना पड़ेगा ना तो हम आपके इनबॉक्स में रखेंगे कुछ दिन तक वो डेटा अब वो जब हमारा सर्वर नया लग जाएगा तो हम आपको इनबॉक्स आपका वापस कर देंगे तो मैं यहाँ से कंप्यूटर में फीड कर रहा हूँ आपका इनबॉक्स अपनी तरफ खींच रहा हूँ ठीक है सर
2: नहीं बात तो सुनो भाई साहब
3: हाँ बताइए
2: नहीं तो जो इनबॉक्स है मेरा वो तो मेरा अपने फोन मेमोरी में है ना
3: वो हम खींच लेंगे आप उसकी फिक्र मत करिए
2: नहीं तो आप कैसे उसको अपलोड करेंगे
3: मैं कुछ भी करूँ यार आप ज्यादा बहस करते क्यों एक तो सर्वर वो उतार रहे हैं आप मुझसे बहस कर रहे हैं
2: बहस वाली बात नहीं मतलब मैं खुद मालूम तो करूँ ना अगर आप मेरे से कोई बात पूछ रहे हैं तो कम
3: बिल्कुल,
2: से कम मुझे
3: बिल्कुल सही,
2: होना
3: बिल्कुल सही कह रहे हैं
2: जा कहाँ रहा है
3: नहीं जा कहाँ रहा है जा यहीं रहा है आपकी कंपनी में जा रहा है और मैं आपसे सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आपका कुछ दिन के लिए हमें इनबॉक्स चाहिए अब उसमें आपको टेंशन क्या है हम आपके मैसेजेस रखेंगे उसको पढ़ेंगे सही से
2: मेरे प्राइवेट एसएमएस है उसमें मैं ऐसे किस तरह से दे दूँ उसको
3: वैसे आप बुरा मत मानना आपके ये मना करने से मुझे लग रहा है कि आप मैंने उसमें सारे नॉन वेज मैसेजेस रखे हुए हैं उसमें
2: यार क्या बात कर रहा
3: हूँ
2: मतलब
3: नॉन वेज एसएमएस क्यों रखे हुए यार आपने उसमें बेकार की बातें कर रहे हैं आप कंपनी को जरूरत है क्या बदतमीजी कर रहे हैं आप उसपे मैं तो मुझे सिर्फ इनबॉक्स नहीं चाहिए मेरी बात सुनिए
2: चल
3: नहीं नहीं आपने फॉर्म भरा था सेकंड पेज पे मेरे हाथ में है रुकिए रुकिए सेकंड पेज पे लिखा हुआ है कि कंपनी आपका इनबॉक्स कभी भी ले सकती है उसमें कस्टमर को कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं होगा यहाँ तक कि आपके घर की बाल्टी आपके बर्तन आपके कपड़े तक उतरवा सकती है
2: बिल्कुल
3: क्या बात कर रहे हैं मेरी बात सुनिए आप पूरी हेलो
2: हेलो
3: हेलो भाई साहब आपने फोन काट दिया यार इनबॉक्स लेने की बात कर रहा था मैं आप फोन काट रहे हैं यार
2: आपको से फोन मत करियो मैं इनबॉक्स बना दूंगा
3: क्या क्या क्या क्या यार बात सुनिए आप मेरी मैं आपसे सिर्फ एक बात विपुल मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ कोई तुम्हारा इनबॉक्स नहीं चाहिए मैंने मुर्गा बनाया है तुम्हारा तुम रेडियो मिर्ची पे हो
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
5: कभी प्यार का एहसास और कभी खुद को दिया हुआ एक खूबसूरत तोहफा फेस्टिवल ऑफ डायमंड्स इज बैक एट तनिष्क रोज पहनने के लिए स्टाइलिश डिजाइन्स हो या किसी खास मौके के लिए स्टनिंग डायमंड ज्वेलरी हर पीस में है तनिष्क का भरोसा और बेहतरीन क्राफ्ट्समैनशिप यही नहीं गेट अ फ्री गोल्ड कॉइन ऑन एवरी 3000 रियाल्स स्पेंट ऑन डायमंड परचेसेस तो आज ही विजिट करें तनिष्क एट लुलू हाइपरमार्केट रिंग रोड एंड दोहा फेस्टिवल सिटी टुडे supply.
6: It's all down to Dhoni, isn't it? Four balls left, they need 12 runs to win.
7: महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है ये सामने वाली टीम को कभी पता नहीं चला लेकिन उसे पता है सलमान खान अभी अपने फार्म हाउस में हॉर्स राइडिंग के बारे में सोच रहे हैं या
8: आर यू थिंकिंग ऑफ लाइक अ फ्लाइंग कार्पेट आर यू थिंकिंग ऑफ फ्लाइंग कार्पेट
9: कैसे किया सीरियसली कैसे किया ये
7: उसे सब पता है Ladies and gentlemen, your mind is about to get blown because number one mentalist from India, the Suhani Shah, is coming to Qatar for the very first time. Catch her live on 25th September at QNCC.
10: Early bird tickets out now. Get them at STT Snoo Noo. Book yours now.
7: The mentalist Suhani Shah, live in

देखिए 90s इंडी पॉप के गानों की बात यही तो अच्छी लगती है कि भले शायद ये गाने के आपको सिंगर याद नहीं हो, लेकिन यू डेफिनेटली रिमेम्बर सम मेमोरी टू इट कि हाँ यार इतने साल पहले सुना था ये गाना, बट यस सुना है और बहुत पसंद भी है। तो मैं आपको सिंगर बता दूँ, असलम ने गाया हुआ ये गाना राइट हियर ऑन मिर्ची। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक, सिंपली आफ्रीन का साथ है ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। और देखिए वक्त चला है कि हम आपको बता दें कि यार करेंसी का एक्सचेंज रेट का क्या चल रहा है हालचाल। वेल देखिए आज का एक्सचेंज रेट ये कहता है दैट एक कतरी रियाल के बदले मिल रहे हैं इंडियन रुपीज 26.14, वहीं जनाब पाकिस्तानी रुपीज जो है आपको मिल रहे हैं 76.20, वेर एज बांग्लादेशी टाका इज 33.88, श्रीलंकन रुपीज की बात करें तो 91.89 पर है और नेपाली रुपीज इज एट 41.79। ये थे आज के एक्सचेंज रेट, घर भेजे पैसे, ढेरों सारी खुशियां। एंड कमिंग अप नेक्स्ट ट्रैक इज अरिजीत सिंह की आवाज में दंगल मूवी का ये गाना, वन ऑफ माई फेवरेट ट्रैक, yeah, and very underrated. Enjoy it on Mirchi, it's hot.

0: गूगल आपकी सर्च हिस्ट्री जानता है, इंस्टाग्राम आपकी लाइक्स, नेटफ्लिक्स आपकी चॉइस, लेकिन सुहानिशा वो सब जानती है बिना किसी प्रॉम्प्ट, पासवर्ड या परमिशन के। एक्सपीरियंस द इम्पॉसिबल फॉर द फर्स्ट टाइम, इंडियाज मोस्ट सेलिब्रेटेड मेंटलिस्ट सुहानिशा लाइव इन कतर ऑन 25th सितंबर एट QNCC।
1: Early bird tickets out now. Get them at STD Snoonu. Book yours now.
0: The Mentalist Suhani Shah live.

0: कुमार सानू की आवाज में ये खूबसूरत से गाने को ऐसे ही संभाल के रखना चाहिए, छेड़खानी मत करना। इसका कोई भी मुझे न्यू वर्जन, रीमिक्स वर्जन बिल्कुल भी नहीं सुनना है, बस इस ओरिजिनल गाने को ही सुनकर ना जस्ट ऐसा लगता है कि यार वक्त थोड़ा सा ना धीमे धीमे चलने लगा है एंड कहीं रुक सा गया है एंड यू आर इन दैट मोमेंट, लगा ना ऐसा। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक, सिंपली आफ्टरनून को सुन रहे हो आप ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। एंड यस, जब ऐसी कोई 90s के गाने होते हैं और 90s की बातें होती है ना, आई गेट लॉस्ट एंड आई एम श्योर ये आपके साथ भी होता होगा। भाई आखिरकार हम और आप एक ही वक्त के तो हैं, मिलेनियल्स से हैं ज़्यादातर लोग, आई फील, जो मुझे सुन रहे हो, आई थिंक सो, ये मुझे लगता है। वेल टॉकिंग अबाउट मिलेनियल, टॉकिंग अबाउट अदर थिंग्स, आई थिंक सो इट्स नाउ टाइम कि मैं अब कोई और बात करूँ एंड वो है कि मैं मेरा मिर्ची मिस्ट्री बॉक्स खोलो। सो हियर इट इज, क्या निकला है आज? निकले हैं कुछ एक्टर एक्ट्रेस के नाम, यानी मूवी का स्टार कास्ट। अब मैं आपको कुछ एक्टर एक्ट्रेस के नाम बताने वाली हूँ, मल्टी स्टारर मूवी है, आपने गेस करना है कि आखिर आफरीन कौन सी मूवी की बात कर रही है। सो हियर इट गोज, जहां मैं पहले दो एक्टर्स के नाम बोलूंगी ना तो आपके जहन में बहुत सारे ये आएंगे, नाम आएंगे मूवी के, एंड दैट्स वेयर आई एम गोइंग टू गेट यू कंफ्यूज्ड। ओके, आलिया भट्ट, ओके, वरुण धवन, उसके बाद है आदित्य रॉय कपूर, कुछ सूझा आपको? ठीक है, और एक नाम देती हूँ और इसमें है सोनाक्षी सिन्हा। कौन सी मूवी की बात हो रही है बताओ बताओ बताओ, बड़ा बड़े सोच में डाल दिया मैंने आज आपको। आलिया भट्ट है इस मूवी में, वरुण धवन है इसमें, आदित्य रॉय कपूर भी है और इसमें सोनाक्षी सिन्हा भी है। आप सोच रहे हो ना कि आफरीन कौन सी मूवी की बात करी है, अगर समझ में आ गया है तो बता दीजिए। 5000196 इज माई व्हाट्सएप नंबर, यहाँ आप मैसेज भी कर सकते हैं, यहाँ आप वॉइस मैसेज भी भेज सकते हैं। और इस बीच में मैंने यहाँ पर किसी का मैसेज पढ़ा मूवी का नाम बताते हुए, कहते हैं कि ये तो वेरी ईजी है आफरीन। तो रुको, कल ना बहुत डिफिकल्ट वाला मैं सवाल लेकर आऊँगी आपके लिए, क्योंकि थर्सडे भी है ना, तो कल तो आप अच्छे से कोई डिफिकल्ट वाला ये पूछ सकते हो सवाल, है ना। सो उदित नारायण की आवाज में ये अगला गाना आपके लिए।
1: जादू भरी आंखों वाली सुनो, जादू भरी आंखों,
0: थोड़ी देर और वक्त थम जाएगा आपका जब ऐसे खूबसूरत गाने सुनोगे। और मिर्ची, इट्स हॉट।

0: हॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा
1: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: नवाजुद्दीन सिद्दीकी, अगर आपको किसी को ट्रोल करना होता तो कैसे करते?
3: मैं करूँ?
4: आप करोगे?
3: नहीं, मैं करवाता हूँ। मतलब मेरा होता है
4: सर, वो तो पता है। मेरा बस चलता है, एक एक को घुसण मार के आती हूँ।
3: माय फ्रेंड, हाउ आर यू माय फ्रेंड?
2: ये थे नवाजुद्दीन सिद्दीकी ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
0: बॉलीवुड बोल्डा, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा
1: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
5: It's all down to Dhoni, isn't it? Four balls left, they need 12 runs to win.
6: महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है ये सामने वाली टीम को कभी पता नहीं चला, लेकिन उसे पता है। सलमान खान अभी अपने फार्म हाउस में हॉर्स राइडिंग के बारे में सोच रहे हैं या
7: आर यू थिंकिंग ऑफ लाइक अ फ्लाइंग कार्पेट? आर यू थिंकिंग फ्लाइंग कार्पेट?
8: कैसे किया, सीरियसली कैसे किया ये?
6: उसे सब पता है। Ladies and gentlemen, your mind is about to get blown because number one mentalist from India, the Suhani Shah, is coming to Qatar for the very first time. Catch her live on 25th September at QNCC.
9: Early bird tickets out now. Get them at STD Snoonu. Book yours now.
6: The mentalist Suhani Shah live.

वेल अलीशा चिनाई और जुबिन गर्क की आवाज में ये गाना राइट हियर ऑन मिर्ची आपके साथ में हूँ मैं। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। और कभी कभार ऐसा लगता है आप लोग मुझे बहुत ज्यादा चैलेंज कर देते हो, और जब मुझे चैलेंज मिलता है ना तो फिर मैं देखो अब कल मैं आपको ऐसा डिफिकल्ट चैलेंज लेकर आऊंगी। और बात इस वजह से हो रही है मेरी मिर्ची मिस्ट्री बॉक्स जो खुला है और उसमें से बहुत ईजी सवाल निकला है, ऐसा आपका कहना है, जहां पर मैंने आपको मूवी के स्टारकास्ट बताया था और आपने गेस करना था आखिर ये मूवी है कौन सी। एज सिंपल एज दैट। सो वेल स्टारकास्ट में कुछ ऐसे लोग थे आलिया भट्ट वरुण धवन। अब इन दोनों नाम से तो बहुत सारी मूवीज आपके ध्यान में आती है, लेकिन रुको जरा सबर करो, उसके बाद आता है आदित्य रॉय कपूर, फिर आते हैं सोनाक्षी सिन्हा। अब कौन सी मूवी की बात हो रही है? लोगों के मैसेजेस आए हैं यहाँ पर। मोहम्मद यूसुफ खान का मैसेज है, ताहिर का मैसेज है, देन आई हैव आरिफ का मैसेज, प्रिंसन ने कहा आफरीन दिस इज सुपर डुपर इजी, एंड देन आई हैव योर जाहिद, एंड यस आंसर है कलंक। यस यू ऑल आर राइट, इट इज कलंक। और ठीक है अगर आपको लगता है कि आफरीन बहुत ईजी पूछ रही है और थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल बढ़ा दूँ, तो कल आपको डिफिकल्ट सवाल मिलेगा, लेकिन उसके लिए आपको जुड़ना पड़ेगा मेरे साथ इसी वक्त पर अराउंड मिर्ची मॉर्निंग्स पर। Meanwhile, I just can't resist myself playing this beautiful track. Arijit Singh ki awaaz hai, title track of Kalank. Mike se dil tak Afreen ke saath on Mirchi It's Hot.

0: हेलो, मिर्ची हेल्पलाइन
1: जी। बिल्कुल, बताइए सवाल क्या है।
0: कॉल सेंटर वालों से कंटाल गया हूँ, पूरे दिन लोन के लिए इतने कॉल आते हैं, क्या करूँ।
1: अरे तो सिंपल है ना, लोन भर दे, फिर फोन ही नहीं आएगा।

0: राघव और टशर की आवाज में ये गाना राइट हियर ऑन मिर्ची जुड़ गई है आपके साथ आफरीन और मिर्ची घड़ी का इशारा हो रहा है 9:02 की तरफ
1: इन एसोसिएशन विद नसीब मेडिकल सेंटर कतर्स लार्जेस्ट प्राइवेट मेडिकल सेंटर।

एंड दैट इज जवान मूवी से ये गाना अरिजीत सिंह और शिल्पा राव की आवाज में फीचरिंग वन एंड ओनली हमारे किंग खान. वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक. जो लोग अभी अभी हमारे साथ जुड़े हैं, अभी ऑफिस की तरफ जा रहे हैं, तो बस बहुत बहुत गुड मॉर्निंग है. और यही चाहती हूँ कि भाई कभी कभार कुछ चीज़ ना कह देते हैं तो वो हो जाती है, वो मैं कहती हूँ कि वो आमीन हो जाती है, वो कबूल हो जाती है. इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि आपका दिन ना बहुत ही अच्छा जाएगा आज, बस आमीन. विद दिस लेट्स टॉक अबाउट द किड्स. या वीकेंड हमारे बच्चों के लिए तो इस बार वीकेंड हर दिन चल रहा है, छुट्टियां चल रही हैं और ये छुट्टियों के बस कुछ आखिरी चंद दिन बचे हैं. एंड एट दिस पॉइंट आई वुड लाइक टू टेल कि अगर कहीं बच्चों के अभी तक कुछ चीज़ें बाकी हैं यहाँ पर घूमना फिरना ले जाना करना, अगर आप इस बार ट्रैवल नहीं किए हैं या फिर अभी अभी ट्रैवल करके आए हैं और कतर में जो चीज़ें चल रही थी वो अब तक इंजॉय नहीं किया, तो लेट मी टेल यू दिस वीकेंड यू कैन टेक योर किड्स टू कलावर्स. कलावर्स एक ऐसी बेरंग दुनिया जिसे रंगीन बनाने का जिम्मा आपके ऊपर है. और ऐसे ही कुछ वहां पर इट्स एन इमर्सिव एक्सपीरियंस लेट मी टेल यू. और ये जो हो रहा है ना, ये साउथ पार्किंग कतारा में हो रहा है और इसकी टिकट्स जो वीकडे में है 35 कतरी रियाल है और वीकेंड्स पर इसकी टिकट जो है वो 55 कतरी रियाल है. तो यहाँ आप जरूर ले जा सकते हो कतर में बच्चों को कतारा में, बिकॉज क्या है ना, अब इट्स हॉट, दैट्स द ट्रुथ. क्योंकि अब ये कहा जाता है कि वो कोई एक स्टार आया है, आई एम नॉट गेटिंग द नेम, आई हैव फॉरगॉटन द नेम, बट उसके आने से अब और ज़्यादा गर्मी बढ़ेगी. अब चलिए ये हम उस चीज़ से रेडी तो है, लेकिन एक्टिविटीज़ जो है, एंटरटेनमेंट जो है वो बरकरार रहना चाहिए कि नहीं. बस इसी के साथ में अगला गाना आपकी तरफ आ रहा है मंज निंदी कौर और रफ्तार की आवाज़ में. और आप सोच रहे हो ये कौन लोग है भाई, लेकिन ये म्यूजिक बड़ी जानी पहचानी है ना. लेकिन नॉट दी ओजी, उनके सुपुत्र का गाना है ये, टाइगर श्रॉफ का ये गाना राइटेड.

0: Mirchi.
1: Iskabara, uskabana, sakabana. Rambala. Murga, murga. La vieja la murga. Mirchi, murga.
2: Hello.
3: Hi. ये पे आपकी फ्री कॉल है। अगर आप अकेले बैठे हुए हैं और चाहते हैं किसी को अपना बनाना, किसी से अभी बात करना, तो हैश दबाइए। कृपया लाइन होल्ड करें, हम आपकी कॉल उस तक पहुंचा रहे हैं जिससे आप बात करना चाहते हैं।
4: हेलो।
2: हेलो,
4: कौन बोल रही हैं?
2: आप कौन बोल रही हैं?
4: बोल नहीं रही हूँ, मैं बोल रहा हूँ यार, मेरी लड़की से बात करानी थी, फोन आया था मेरे पास।
2: तो भाई मेरे पास भी तो फोन आया था।
4: तो यार आप कहाँ से बीच में आ गए? वो कह रहे थे लाइफ पार्टनर, मैं लड़की से बात करना चाह रहा हूँ।
2: टाइम पे दोनों को भी, आपको भी करा होगा फोन, उन्होंने मुझे भी करा होगा, तो मैंने भी मिला दिया।
4: मैं क्या पागल हूँ यार, मैं आपसे बात करना चाहूंगा, मुझे भी तो टाइम पास करना है, लड़की का इंतजार कर रहा था मैं यार। मेरे पास फोन आया था, आप अपनी चला रहे हैं, मैं आपसे झूठ बोल रहा हूँ क्या?
2: ये तो वहाँ से मेरे पास,
4: अरे यार
2: जैसे आपके पास आया कि अगर आप खाली बैठे।
4: हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है।
3: हाय, आप दोनों की कॉल गलती से मिल गई है, कृपया लाइन होल्ड रखें, आप दोनों को अपने अपने पार्टनर तक पहुंचा दिया जाएगा।
4: हेलो।
2: हेलो,
4: कौन बोल रही है? अरे भाई Hello? यार मैं लड़की के चक्कर में यार, कहां से आ रहे हो यार बीच में? मैं मेरी लाइन
2: भाई
4: कहां से लाइन पे आ रहा हूँ यार, तू लाइन में आ रहा है? लाइन में आ रहा हूँ अच्छा, एक घंटे से मैं एक लड़की से बात करने के लिए चाह रहा हूँ यार, तू मुझ पर चिल्ला रहा है, मेरे पास कॉल आई है यहाँ पे। हाँ तो दो मिनट रुक के तू कर ले, तेरा कुछ जा रहा
2: है?
4: या बदतमीजी बदतमीजी मत कर, तू बड़ा शरीफ आदमी है जो यहाँ पे इस लाइन में आया हुआ है, इस सर्विस में।
3: हाय, कृपया करके लड़ाई बंद करें, अब आपकी लास्ट फाइनल कॉल, हम उस लड़की तक पहुँचा रहे हैं, लेकिन लाइन तक पहुँचने के लिए आप कहिए मेरे साथ कुकड़ू कु। सर मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, आप रेडियो मिर्ची पे हैं, दुनिया आपको सुन रही है, कम से कम इतनी तमीज होनी चाहिए यार, आप लड़की से बात करना चाह रहे हैं, किस तरह का टाइम पास करना चाह रहे थे?
2: तो वो आ रहा है, मुझे लग रहा भाई मुझे भी टाइम पास करना था, मुझे भाई मालूम था ये।
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।
6: It's all down to Dhoni, isn't it? Four balls left, they need 12 runs to win.
7: महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है ये सामने वाली टीम को कभी पता नहीं चला, लेकिन उसे पता है। सलमान खान अभी अपने फार्म हाउस में हॉर्स राइडिंग के बारे में सोच रहे हैं या
8: आर यू थिंकिंग ऑफ लाइक अ फ्लाइंग कार्पेट? आर यू थिंकिंग ऑफ फ्लाइंग कार्पेट?
9: कैसे किया, सीरियसली कैसे किया ये?
7: उसे सब पता है। Ladies and gentlemen, your mind is about to get blown because number one mentalist from India, the Suhani Shah, is coming to Qatar for the very first time. Catch her live on 25th September at QNCC.
10: Early bird tickets out now. Get them at STD Snoo Noo. Book yours now.
7: The mentalist Suhani Shah.

गेम बना दिया है और इंटरनेशनल स्टेज पर कमाल कर दिया है। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक, मैं हूँ आफरीन आपके साथ। और कतर के स्टूडेंट्स ने 40th वर्ल्ड चैंपियनशिप फॉर मैथमेटिकल एंड लॉजिकल गेम्स में 8 ऑनररी सर्टिफिकेट्स जीते हैं। यस, कॉम्पिटिशन मिलान में हुआ और इंटरेस्टिंगली दिस वॉज ओनली कतर सेकेंड पार्टिसिपेटेशन इन द चैंपियनशिप। और ये कोई रेगुलर फॉर्मूला याद करो आंसर निकालो वाला कॉम्पिटिशन बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ गेम है लॉजिक, इंट्यूशन, क्रिएटिविटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग का। इनफैक्ट चैंपियनशिप का स्पिरिट ही है मैथ्स को एक एंगेजिंग इंटेलेक्चुअल चैलेंज बनाना। एंड इनकी इंटरेस्टिंग बात यह कि 2026 में पहली बार इटली ने इस चैंपियनशिप की इंटरनेशनल फाइनल होस्ट की है एट मिलान्स बुकोनी यूनिवर्सिटी। 600 से ज्यादा कॉम्पिटिटर्स थे फ्रॉम मोर देन 20 कंट्रीज ये चैलेंज के लिए आए थे। और कतर का इसमें 8 सर्टिफिकेट्स जीतना डेफिनेटली एक बहुत ही प्राउड मोमेंट है। और शायद एक रिमाइंडर ये भी है कि मैथ सिर्फ नंबर्स का गेम नहीं है, इट्स एक्चुअली अ वर्कआउट फॉर योर ब्रेन। हैविंग सेड दैट, मुझे ये बताइए कि आप में से ऐसे कोई था जो मैथ से बहुत ज्यादा डरता था? 5000186 इज माई व्हाट्सएप नंबर, लेट मी नो योर। या फिर ऐसा कोई है जो मैथ से बहुत ज्यादा प्यार करता है लाइक मी? ओके, आई एम अ गर्ल ऑफ नंबर्स। अगर मुझे आप कोई नंबर चैलेंज दे दो, आप मुझे कोई ऐसे लॉजिकल वाले मैथ्स के क्वेश्चंस दे दो, आई रियली एंजॉय इट लाइक गेम एंड आई हैड बीन एंजॉयिंग इन माय स्कूल टाइम आल्सो। लेकिन ऐसा ये नहीं बता रही हूं कि मैं कोई स्टूडियस टाइप थी, बस मैथ्स सिर्फ पसंद था, बाकी साइंस, हिस्ट्री, ये सब कुछ चीजें मुझे बिल्कुल नहीं पसंद थी। माइक से दिल तक आफरीन है आपके साथ। कमिंग अप नेक्स्ट ट्रैक सोना महापात्र की आवाज में, लेकिन अगले जो गाने बजा रही हो ना, आई एम श्योर आपको मन नहीं करेगा गाड़ी छोड़कर जाना है या रेडियो का चैनल चेंज करने का। यस मुस्तफा, डोंट वरी, ये भी आने वाला है और फिर ये भी आने वाला है। अरे ये गाना बहुत ही प्यारा है, लेकिन उससे पहले ये वाला हो जाए। फुकरे मूवी का ये गाना राइट टू रणवीर सिंह, इट्स हॉट।

सोनू निगम और असीस कौर की आवाज में ये गाना राइट हियर ऑन मिर्ची। और थप्पड़ से डर नहीं लगता, मैथ से लगता है। ऐसे कुछ हाल था ना हमारा स्कूल में। देखिए, हम में से ऐसे बहुत लोग हैं जो स्कूल के वक्त मैथ से बहुत डरा करते थे, लेकिन कतर के कुछ यंग माइंड्स ने मैथ्स को सब्जेक्ट नहीं, माइंड

0: घर बैठे चाहिए नया कार्ड, स्मार्ट चॉइस है ओरिरू मनी कार्ड। अप्लाई करो आज ही और क्यू पोस्ट से पाओ डोर स्टेप डिलीवरी कहीं भी इन कतर। एक्टिवेट करते ही शॉपिंग करो लोकल या इंटरनेशनल, और सुनो हर एप्लीकेशन पर जीत सकते हैं एक ब्रांड न्यू आईफोन 17 प्रो मैक्स। लेट मत करो, ऑर्डर योर ओरिरू मनी कार्ड स्ट्रेट अवे। TNC अप्लाई। गूगल आपकी सर्च हिस्ट्री जानता है, इंस्टाग्राम आपकी लाइक्स, नेटफ्लिक्स आपकी चॉइस, लेकिन सुहानी शाह वो सब जानती है बिना किसी प्रॉम्प्ट, पासवर्ड या परमिशन के। एक्सपीरियंस द इम्पॉसिबल फॉर द फर्स्ट टाइम, इंडियाज मोस्ट सेलिब्रेटेड मेंटलिस्ट सुहानी शाह लाइव इन कतर ऑन 25th सितंबर एट QNCC।
1: अर्ली बर्ड टिकट्स आउट नाउ, गेट देम एट STD Snoo Noo, बुक योर्स नाउ।
0: द मेंटलिस्ट सुहानी शाह लाइव।

0: कभी सोचा है? जिंदगी में जो चीजें हमें मिल जाती है उनसे ज्यादा वक्त हम उन चीजों के बारे में सोचने लगा देते हैं जो हमें मिलती ही नहीं। जैसे वो चीज मुझे क्यों नहीं मिली, या फिर कोई मौका मेरे पास क्यों नहीं आया, या फिर वो रिश्ता क्यों नहीं रहा, मेरे साथ ही क्यों ऐसा हुआ। और शायद इसी क्यों का जवाब आज आफरीन की डायरी की ये शायरी में है।
1: आफरीन की डायरी से शायरी।
0: अर्ज किया है कि कहां आके रुक रहे थे रास्ते, कहां मोड़ था उसे भूल जा। कहां आके रुक रहे थे रास्ते, कहां मोड़ था उसे भूल जा। वो जो मिल गया उसे याद रख, वो जो नहीं मिला उसे भूल जा। वो जो मिल गया उसे याद रख, वो जो नहीं मिला उसे भूल जा। तेरे नसीब की बारिशें किसी और छत पर बरस गई, दिले बेखबर मेरी बात सुन उसे भूल जा। क्योंकि हर चीज का मिल जाना ही नसीब नहीं होता, कभी कभी किसी चीज का छूट जाना भी नसीब होता है। माइक से दिल तक आफरीन है आपके साथ और मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Hollywood, Bollywood, Bold Eye.
1: Only on Mirchi. It's hot.
2: One of my favorite things to do is Rajkumar Rao ke saath mein filmi quiz khelna.
3: Aapko fill in the blanks karna hai. Gangs of? वास्तव में संजय दत्त ने किस चीज की गाड़ी लगाई थी?
4: पावभाजी।
3: शाबाश। डॉन को कितने मुल्क की पुलिस पकड़ना चाहती है?
5: 11।
3: गोली मार भेजे में भेजा
4: चोर करता है।
3: शाबाश। लगे रहो मुन्ना भाई में वो किस फिलॉसफी से?
4: गांधीयन।
3: सरकार में अभिषेक बच्चन के भाई का रोल किसने निभाया?
4: पीके मेनन।
3: खत्म।
2: इस आदमी से कोई नहीं जीत सकता। आदमी का नाम राजकुमार राव, रेडियो स्टेशन का मिर्ची। इट्स हॉट।
0: बॉलीवुड बोल्ड Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bold Eye.
1: Only on Mirchi. It's hot.
6: Enjoy the golden days with Kalyan Jewelers. Enjoy 0% making charges on selected ornaments. Visit Kalyan Jewelers today to grab this limited period offer. Conditions apply.
7: जस ने सोचा था सिर्फ वाइफ क्यों, लंदन में एक गॉर्जियस गर्लफ्रेंड भी रख लूं। जस को लगा है जवानी तो इश्क होना है, पर जब पुराने रिश्ते नए सीक्रेट से टकराए तो एक लाई छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़े। एक लड़का, दो लव स्टोरीज और अनलिमिटेड केयर्स। है जवानी तो इश्क होना है। स्ट्रीम इट नाउ ओनली ऑन Z5। डाउनलोड द ऐप नाउ।
8: इट्स ऑल डाउन टू डोनी, इज़न्ट इट? 4 बॉल्स लेफ्ट, दे नीड 12 रन्स टू विन।
7: महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है ये सामने वाली टीम को कभी पता नहीं चला, लेकिन उसे पता है। सलमान खान अभी अपने फार्म हाउस में हॉर्स राइडिंग के बारे में सोच रहे हैं या
9: आर यू थिंकिंग ऑफ लाइक अ फ्लाइंग कार्पेट? आर यू थिंकिंग फ्लाइंग कार्पेट?
10: कैसे किया? सीरियसली कैसे किया ये?
7: उसे सब पता है। Ladies and gentlemen, your mind is about to get blown because number one mentalist from India, the Suhani Shah, is coming to Qatar for the very first time. Catch her live on 25th September at QNCC.
11: Early bird tickets out now. Get them at STD Snoo Noo. Book yours now.
7: The mentalist Suhani Shah live.

तेरे पाछे इतने ना फिरे जितने तेरे पीछे भटक रहे हैं। ला क्या छाती का कह देना आई लव यू, छोरे तेरे के सांस अटक रहे हैं।

मिटरोर स्वरा वर्मा की आवाज में ये गाना राइट हियर ऑन मिर्ची एंड आई फाइंड दिस सॉन्ग क्वाइट क्यूट है ना. वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक. सिंपली आफरीन का साथ है. 12th of August, इट इज वेडनेसडे ऑलरेडी माई दोस्त. कल हम एक्स्ट्रा एनर्जी के साथ में यहाँ पर आएंगे. ऑफकोर्स हमारा वीकेंड है, आपका मेरा, वी ऑल कैरी द सेम एनर्जी है ना. और अगर कल थोड़ी एनर्जी कम पड़ती है ना, मैं हूँ ना बहुत सिधर, गानों के थ्रू बातों के थ्रू एकदम एनर्जेटिक बना दूंगी आपको कि हाँ बस अपने को अभी रेडी होने का है अपना वीकेंड बनाने के लिए. और यही हम करेंगे कल. लेकिन टॉकिंग अबाउट टुडे, आज के दिन में वो काम कीजिए जो आप ये हफ्ते में सोच रहे थे. वो है, अगर आप सुन रहे हो सुहानी शाह आ रही है, अगर आप देख रहे हो इंस्टाग्राम पर भी, अरे सुहानी शाह की वीडियोस है, ये है वो है, आपके ध्यान में है कि यार काफ़ी टाइम हुआ है कि कोई ऐसे शो में जाए जो म्यूज़िक डांस नहीं, ये हमने देख लिया है, काफ़ी कुछ अलग देखते हैं, कुछ मजा आएगा. कभी मेंटलिस्ट का शो देखा है? पहले तो मुझे ये बताओ, अगर देखा है वो भी बताओ, नहीं देखा है तो भी बताओ. 5000 1896, क्योंकि दिस इज अ चांस दैट 25th of September जब सुहानी शाह आएगी, इंडिया की काफी बड़ी नामचीन है ये, जानी वानी मेंटलिस्ट है सुहानी शाह, जो हमारे कतर में आके अपने माइंड गेम से आपको कंप्लीटली शॉक करने वाली है, प्लेजेंटली सरप्राइज करने वाली है. सो यू हैव टू कम एंड विटनेस दैट. QNCC में जैसे मैंने बताया ये हो रहा है, और टिकट्स जो है इसके SCT यानी सोनू सिटी पे आपको मिल जाएंगे एकदम इजी पीजी लेमन स्क्वीजी. दिस टाटा बाय बाय और अपना ख्याल रखिएगा. सायोनारा. माइक से दिल तक आफरीन हमेशा रहेगी आपके साथ में. मिर्ची साथ.

0: हेलो, मिर्ची हेल्पलाइन।
1: यस ऑफ कोर्स, मिर्ची हेल्पलाइन बोलिए।
0: मेरा बॉस एआई पे ज्ञान देता रहता है और मुझे डांटता रहता है कि मुझे एआई से रिप्लेस कर देगा, क्या करूं?
1: अरे तू सिंपल है ना, उसको बोल तुझे रिप्लेस कर देगा तो डांटेगा किसे, एआई को?
2: साले खोपड़ी तोड़, खोपड़ी तोड़।

0: Well, Wajid and Shreya Ghoshal ki khubsurat si awaaz and what a power pack track it is. Ye gaana to maine aapko suna diya, lekin is waqt itna bata doon ki mirchi ghadi mein baj rahe hain 10:08.
1: In association with Naseeb Medical Center, Qatar's largest private medical center.
0: Well, वक्त का कांटा आगे बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन साथ ही कुछ खास इशारा भी कर रहा है।
2: मिर्ची अंशु
0: वेलकम बैक, यू लिसनिंग टू मीठी मिर्ची एंड दिस इज आरजे अंशु विथ यू। वेल, आपकी जिंदगी में मिठास के साथ स्पाइस का तड़का लगाते हुए एक बार फिर से आ चुकी हूँ नए दिन में, शो को नए तरह से शुरू करते हुए। वेल, अगर वक्त के कांटे की तरफ देखने की कोशिश करूँ भाई, तो सीधा अगर मुझे कोई बात याद आती है तो मेरे बचपन की, जहाँ मुझे बहुत अच्छी तरह से बस एक ही बात सिखाई गई थी कि लाइफ में कुछ करे या ना करे, लेकिन इस एक शब्द को अपनी डिक्शनरी से पूरी तरह से हटा दें, एंड हम उसे कहते हैं प्रोकास्टिनेशन। प्रोकास्टिनेशन सुनने में जरा टफ लगता है, बोलने में और भी ज्यादा टफ लगता है, लेकिन मतलब जो है इसका बड़ा इंपॉर्टेंट, आसान नहीं लेकिन हाँ महत्वपूर्ण है। यार, हमारी ना अक्सर ये आदत होती है कि चीजों को हम डिले करें ना। कई बार ऐसा लगता है कि यार ठीक है यार, काम ही तो है, बाद में कर लेंगे, हो जाएगा, क्या करना है, बहुत वक्त है, बहुत समय है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि वक्त जो है बहुत है? ये बात तब रियलाइज होती है जब पता ही नहीं चलता कि कब पिछली दफा अगस्त का महीना आया था, एंड अगर देखते देखते फिर से देखो तो फिर से अगस्त हमारी जिंदगी में आ गया, एंड उसके बाद अगर लाइफ में कुछ आती है तो वो सॉलिड वाली हड़बड़ी, भाई टाइम आ गया है, काम नहीं हुआ है, फटाफट करो, जैसे भी करना है करो, लेकिन हाँ आधा करो, पूरा करो, कर दो बस। जिस परफेक्शन को हम क्रेव करने की कोशिश कर रहे थे, फिर रियलाइज होता है यार वो तो मिला ही नहीं। बोल, इतना ही कहना चाहूंगी यार, जो भी काम कहते हैं ना, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। अगर कोई काम इम्पॉर्टेंट है, आपके पास वक्त है, उसे बिना डिले किए, बिना टाले आज के आज पूरा करें। जब सही वक्त रहते सारे के सारे काम को हम कंप्लीट कर लेते हैं ना, तब समझ में आता है कि काम कितनी अच्छी तरह से पूरा हुआ है। एंड बात की वो जो हड़बड़ी है ना भाई, उससे भी तुम सॉलिड तरह से बच ही जाओगे। बात जो है काफ़ी पते की है, काम की है, इसे अपनी लाइफ में अडॉप्ट करें। एंड इसी पॉजिटिव थॉट के साथ करते हैं मिर्ची की शुरुआत, मिठास के साथ। मीनवाइल, महमूद एंड राघव चैतन्य की आवाज़ में ये अगला पावर पैक नया गाना आपके लिए, एंजॉय। बंदी का नाम अंशु।

0: Mirchi.
1: Escabana, escabana, sacabana. Rambala. Burga, burga. La vieja la burga.
0: Mirchi, burga.
2: Hello.
3: Oh, madam, good evening.
2: Hi.
3: बैंक से बोल रहे हो ना, हमारी नई स्कीम आई है मैडम, ताजी स्कीम है, बढ़िया स्कीम है, इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट बिल्कुल कम।
2: तो सब्जी बेच रहे हैं या लोन के लिए?
3: पहले सब पहले सब्जी बेचता था।
2: अगर अगली बार फोन आ गए ना
3: मैडम, तमीज से बात करो वरना यहीं से चपेट मारूंगा सारे दांत। बात कर दो।
2: हेलो
3: मैडम, अगर ये स्कीम लोगी तो धनिया साथ फ्री दे दूंगा।
4: प्रीति, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। मुझे पहली बार ये एहसास हुआ कि लड़कियों से ज्यादा पंगे लेने नहीं चाहिए, अपने ऊपर पड़ जाती है यार। आप रेडियो मिर्ची में इतना गुस्सा क्यों कर रही हैं? आपका मुर्गा बन गया
2: है
3: मैडम, आपका तो मुर्गा बन गया है।
4: प्रीति, ये जो बीप बीप हो रहा था, ये बीप हटा दूं मैं? एक बार दिल्ली को सुना दूं?
2: नहीं,
4: से सॉरी,
2: आई एम सॉरी नवीन, आई एम सॉरी।
4: प्यार से बोल दीजिए कोकड़ो को है।
2: कुकड़ू गो।
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट,
6: इट्स पटाक।
7: इट्स ऑल डाउन टू डोनी, इज़न्ट इट? 4 बॉल्स लेफ्ट, दे नीड 12 रन्स टू विन।
8: महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है ये सामने वाली टीम को कभी पता नहीं चला, लेकिन उसे पता है। सलमान खान अभी अपने फार्म हाउस में हॉर्स राइडिंग के बारे में सोच रहे हैं या
9: आर यू थिंकिंग ऑफ लाइक अ फ्लाइंग कार्पेट? आर यू थिंकिंग फ्लाइंग कार्पेट?
10: कैसे किया, सीरियसली कैसे किया ये?
8: उसे सब पता है। Ladies and gentlemen, your mind is about to get blown because number one mentalist from India, the Suhani Shah, is coming to Qatar for the very first time. Catch her live on 25th September at QNCC.
11: Early bird tickets out now. Get them at STD Snoo Noo. Book yours now.
8: The mentalist Suhani Shah live.

वेलकम बैक, यू लिसनिंग टू मीठी मिर्ची एंड दिस इज आरजे अंशु विद यू। और आपकी जिंदगी में मिठास के साथ स्पाइस का तड़का लगाते हुए एक बार फिर से आ चुकी हूँ। लेकिन कोई तो खास बात है जो इस वक्त आपके बीच में पेश करना चाहती हूँ। भाई साहब, एक ऐसी आवाज जिसे हर वक्त सुनते ही दिल एक ही बात कहता है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। इन्होंने पिक्चरों में कुछ इस तरह का कमाल किया कि इस वक्त अगर जेमिनाई की पिक्चर की बात करूं तो उसमें इनकी पिक्चर जो है ना हमेशा के लिए पिक्चराइज हो चुकी है। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट किंग खान, यानी कि द वन एंड ओनली शाहरुख खान। लेकिन भारत के सबसे चहेते अभिनेता ने अब की बार क्या कमाल किया है, जरा ये तो समझ जाएं। वेल, अगर एक आइकॉनिक वॉइस स्टेपिंग की बात करूं इन द वर्ल्ड ऑफ एआई, तो इतना समझ जाएं गूगल जेमिनाई की अगर इस वक्त कोई नई आवाज है तो वो है शाहरुख खान। लेकिन आवाज जो है किंग खान की तो है, लेकिन इसमें मैजिक किसका चलेगा? भैया मैजिक जो है डेफिनेटली एआई का चलेगा। एंड उस मैजिक को अब पूरी तरह से आवाज देने की बारी आएगी बॉलीवुड के बादशाह की। तो अब जेमिनाई से बात करना शायद थोड़ा और लेस आर्टिफिशियल और काफी ज्यादा रोमांटिक होने वाला है। हाय, जितनी भी लड़कियां हैं तैयार हो जाओ भाई, शाहरुख खान एंड जेमिनाई के इस नए अंदाज को अपनी जिंदगी में शामिल करने के लिए। मैं तो यही कहती हूँ, आज के डेट में ना लोग बाग अपनी फ्रेंडशिप वाली जर्नी में अक्सर एआई का साथ बहुत लेते हैं, तो जब शाहरुख खान जैसा साथ हो तो कोई और जिंदगी के सफर में ढूंढे तो किसी और को क्यों ही ढूंढे, है कि नहीं? संजू राठौड़ की आवाज़, चलिए अगला ये पावर पैक गाना सुनते हैं। मीनवाइल यू ऑल स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, बंदी का नाम अंशु, एंजॉय।

0: फ्रेश माल।
1: इमरान हाशमी के सॉन्ग्स और प्लेलिस्ट हिट्स दोनों का रिश्ता पुराना है। उनकी अगली म्यूजिकल ऑफरिंग है ये आवारापन।

इस गाने को आवाज दी है अरिजीत सिंह ने, म्यूजिक दिया है अमाल मलिक ने और लिरिक्स लिखे हैं रश्मि विराग ने। आवारापन 2 से सुनते रहिए ये आवारापन, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।

मलरत सिंह या नसीह कौर की खूबसूरत सी आवाज़ यानी खूबसूरत सा गाना बस इस वक्त किसी की खूबसूरत सी लव स्टोरी को डिफाइन करने का काम 101% कर ही रहा है। भाई साहब मुबारकबाद देने की बारी जो है आ गई है। मुबारका जी मुबारका बहुत बहुत बधाई। अरे क्रिस्टियानो को बधाई दे रही हूँ। नहीं मुलाकात हुई थी मेरी उनसे फीफा वर्ल्ड कप के मैदान में, कतर की बात कर रही हूँ। तब मैंने उनसे कहा था कि अपनी शादी में मुझे बुलाना ज़रूर। कोई बात नहीं यार, अब मेरा कैलेंडर इतना बिजी था ना कि उन्होंने बुलाया लेकिन मैं जा नहीं पाई। लेकिन नहीं, ऐसी बातें करके मैं खुद को तसल्ली दे देती हूँ कि इन लोगों ने बुलाया लेकिन मैं ना जा पाई। हैविंग सेड दैट, अगर क्रिस्टियानो रोनाल्डो की हम बात करें तो अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा गोल जो है इस वक्त इन्होंने दाग दिया एंड इज ऑफिशियली मैरिड। क्या बात है यार, बताइया जी बताइया। एब्सोल्युटली लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड जॉर्जिना के साथ इस वक्त क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो है शादी के बंधन में बंध चुके हैं। कहते हैं ना यार, कुछ लव स्टोरीज जो है वो लिखी नहीं जाती एंड वो बस हो जाती है, और ऐसी एक कहानी है क्रिस्टियानो की एंड दूसरी तरफ जॉर्जिना की, जिनकी मुलाकात हुई थी गुची के एक स्टोर में। एब्सोल्युटली साल था 2016 जब मैड्रिड के गुची स्टोर में जॉर्जिना सेल्स असिस्टेंट हुआ करती थी एंड वहीं उनकी मुलाकात हुई रोनाल्डो से। एक सीमिंगली ऑर्डिनरी सा एनकाउंटर जो धीरे धीरे तकरीबन 10 साल की लव स्टोरी बना, एक ब्यूटीफुल फैमिली बनी एंड फाइनली शादी के मुकाम तक पहुँच गया। एंड इस कहानी की अगर सबसे खूबसूरत बात लगे तो बस यही यार कि दुनिया रोनाल्डो के गोल्स को काउंट करती है, लेकिन शायद उन्होंने अपनी जिंदगी के सबसे खूबसूरत गोल को उस गुची के स्टोर में पा ही लिया एंड आज दोनों ने सारे स्टेडियम्स, ट्रॉफीज, रिकॉर्ड्स और रोरिंग क्राउड्स के बीच पूरे दिल से अगर कुछ कहा तो वो है आई डू। बधाई क्रिस्टियानो, यही उम्मीद करते हैं शादी का बंधन जो है आपकी जिंदगी में बहुत सारी खुशियां लेकर आई, क्योंकि हमने सोचा है कि बंदी जब तक गर्लफ्रेंड रहती है तो एहसास अलग होता है, द डे शी बिकम्स योर वाइफ ऐसा बदल जाता है। मैं नहीं, मेरे दोस्त यार कहते हैं। सिर्फ मैं तो आपको चेतावनी दे रही। कुमार सानू एंड कविशा कविता कृष्णमूर्ति की प्यारी सी आवाज 90s में एक बार फिर से डाइव इन करते हैं, आपको ये अगला प्यारा सा गाना सुनाते हैं। एंजॉय, बंदी का नाम अंशु।

0: हॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: रणबीर कपूर, जब भी आप एयरपोर्ट से निकल रहे होते हैं या गाड़ी में घुस रहे होते हैं, एक कैप या हैट हमेशा आपके सर पे होती है। व्हाट इज दिस ऑब्सेशन विद अ हैट?
2: दिस हैट हैज बीन अटैच्ड विद मी फॉर लॉन्ग टाइम। आई एम अ हैट गाय। आई फील इट्स माय सिक्योरिटी ब्लैंकेट और अ बैड हैट व्हिच आई एम नॉट टू शो हाउ बैड माय हेयर लुकिंग राइट नाउ, बट आई लाइक हैट्स। इट काइंड ऑफ मेक्स मी सिक्योर, इट मेक्स मी हैप्पी।
1: रणबीर कपूर जो आपको खुश करे वो हमें खुश करे। कल से मैं भी हैट पहन के निकलूंगी। यू आर लिसनिंग टू मिर्ची इट्स हैट ओ हॉट।
0: बॉलीवुड बोल्डा Bollywood, Bollywood, Bollywood, Boulder.
3: Only on Mirchi, it's hot.
4: It's all down to Dhoni, isn't it? Four balls left, they need 12 runs to win.
5: महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है ये सामने वाली टीम को कभी पता नहीं चला, लेकिन उसे पता है। सलमान खान अभी अपने फार्म हाउस में हॉर्स राइडिंग के बारे में सोच रहे हैं या
6: आई यू थिंकिंग ऑफ लाइक अ फ्लाइंग कार्पेट? आई यू थिंकिंग फ्लाइंग कार्पेट?
7: कैसे किया? सीरियसली कैसे किया ये?
5: उसे सब पता है। Ladies and gentlemen, your mind is about to get blown because number one mentalist from India, the Suhani Shah, is coming to Qatar for the very first time. Catch her live on 25th September at QNCC.
8: Early bird tickets out now. Get them at STT Snoonu. Book yours now.
5: The mentalist Suhani Shah. Live

हमारी एंड मतलब के रोशन एक पावर बैक डोर भाई, मतलब ऑन स्क्रीन इतनी ज़्यादा खूबसूरती एक साथ आए तो आए कैसे, मतलब लोग संभाले तो संभाले कैसे, यही कहना चाहूँगी। मिर्ची अंशु यार पता है कभी कभी जब मैं अक्सर सुनती हूँ दैट दे आर जेन ज़ीज़ दे आर यूथ्स, मेरे ना जहन में एक बड़ा सा सवाल आता है कि आखिरकार ये जो टर्म है यूथ, ये यूथ कहते किसे हैं, यू नो युवा कौन है। चलिए आखिरकार इस बारे में आज बात क्यों हो रही है ये भी जरा सोच लेते हैं, बिकॉज टुडे वी आर सेलिब्रेटिंग इंटरनेशनल यूथ डे। एंड इस वक्त ना हम यूथ को डिस्कस करें उसके पहले जरा स्टैट्स पे नजर डालते हैं। अगर दुनिया की पॉपुलेशन को मैं देखने की कोशिश करूं एंड अगर मैं यूएन के स्टैट्स के हिसाब से यूथ की डेफिनेशन देखूं तो 15 साल से 24 साल तक के लोग, नहीं अपने आप को जरा बुजुर्ग कम महसूस करो, मैं तुम्हारा दर्द समझ सकती हूं। तो इस ब्रैकेट में दुनिया की तकरीबन 1.2 बिलियन पॉपुलेशन आती है, यानी अप्रॉक्सीमेटली 16% ग्लोबल पॉपुलेशन का यूथ है एज पर यूएन, जो हम नहीं मानते। वेल, अगर भारत की बात करें तो हम दुनिया की लार्जेस्ट यूथ पॉपुलेशन में से एक हैं, अराउंड 26% ऑफ इंडिया इज बिटवीन 10 टू 24 ईयर्स ऑफ एज। एंड अगर कतर को देखने की कोशिश करें तो कतर की डेमोग्राफिक स्टोरी जो है ये जरा अलग है, यहाँ पॉपुलेशन का मेजर हिस्सा वर्किंग एज एक्सपैट्रिएट्स है, लेकिन इसी वजह से यंग डायनामिक एंड मल्टी कल्चरल वर्कफोर्स आपको हर जगह नजर आता है, बस आपके और मेरे जैसा। लेकिन दुनिया की वो कौन सी कंट्री है जो यंगेस्ट पॉपुलेशन को कैटर करती है, तो उसमें नाम आता है नाइजर का, जहां पे तकरीबन 47% पॉपुलेशन जो है वो 15 साल से छोटी है। भाई साहब, लेकिन यूएन के इस एज पैमाने को मैं नहीं मानती, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब तक एक इंसान के अंदर जज्बा है ना नई सोच का, कुछ नया सीखने का, नया कुछ करने का, वाई नॉट ये सवाल पूछने का एंड दुनिया को बेहतर बनाने का और खुद बेहतर बनने का, भाई तो वो हर एक शख्स युवा है जिंदगी के आखिरी मुकाम तक भी, जब तक उसके अंदर ये जुनून, ये जज्बा, ये चाह जो है ना वो जिंदा है। एंड इस बार की अगर थीम को देखने की कोशिश करें सो इट इज डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट कॉमन एस्पिरेशंस। कॉन्टेक्स्ट जो है हर एक देश के लिए अलग हो सकते हैं, हर एक इंडिविजुअल के लिए अलग हो सकते हैं, लेकिन अगर आपके एस्पिरेशंस जो है जिंदगी के अंत तक सेम है ना, तो आपका दिल जो है हर पल हर मुकाम में युवा ही है, और ये बात जो है वो तय। हैविंग सेड दैट, दिल तो वैसे भी हमेशा ही बच्चा है जी, जरा बता के तो देखिए। विशाल मिश्रा की आवाज यानी अगला प्यारा सा गाना आपके लिए, विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी इंटरनेशनल यूथ डे, एंजॉय। बंदी का नाम अंशु।

0: खूबसूरत सी आवाज़ एंड व्हाट अ लवली ट्रैक इट इज़. क्या प्यारा सा खूबसूरत सा गाना फ्रॉम द फिल्म बर्फी. वैसे ये तो मैंने आपको सुना दिया, लेकिन जेन्युइनली बैठे बैठे आपके दिमाग में कौन सी मिठाई चल रही है इसकी दास्तां ये सुना देंगे, बता ही देंगे.
1: मिर्ची अंशु
0: भाई सारा सोचें, दुनिया के सबसे कंपोज्ड इंसानों में से एक कंसिडर किए जाने वाले MS धोनी की अगर मैं बात करूं, जिन्हें पढ़ पाना, जिन्हें समझ पाना अच्छे अच्छे के बस की बात नहीं थी, अगर किसी की में ये काबिलियत है कि चंद मिनटों में उनके दिमाग में क्या चल रहा है ये बात को उनसे बिना सुने, बिना जाने, बिना समझे पहचान पाए, मतलब क्या बात है. चाहे मैं MS धोनी की बात करूँ, सलमान खान की बात करूँ, माधवन की बात करूँ, सुरेश रैना की बात करूँ, या दुनिया के बड़े बड़े दिग्गजों की बात करें जिन्हें कोई ना समझ पाया, कोई ना पहचान पाया, बस उनकी मौजूदगी में 5 मिनट उनके साथ वक्त बिताते हुए ये समझ पाना कि आखिरकार उनकी सोच है तो क्या है. भाई ये हुनर दुनिया के सबसे बड़े हुनर में से एक है, मैं तो ये मानती हूँ. एंड ये काम जेन्युइनली अगर बहुत प्राउडली कोई करता है तो वो है दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट सेलिब्रेटेड मेंटलिस्ट, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट सुहानी शाह. बिल्कुल ठीक सुना आपने. एंड सबसे अच्छी बात दुनिया वालों, दोहा वालों, ये है कि कतर में पहली दफ़ा शिरकत करने सुहानी जो है आ रही हैं 25th of September को एट कतर नेशनल कन्वेंशन सेंटर. एंड सुहानी का ये मैजिक इंडिया के अलावा दुनिया के कोने कोने में किस तरह सर चढ़ के बोलता है ये बात आपको और अच्छी तरह से जाननी है, समझनी है, तो बस सुहानी शाह टाइप कर उनके कुछ वीडियोज देखें, इंस्टाग्राम उनका हैंडल चेक करें, आप समझ जाएंगे कि आखिरकार इस वक्त मैं किस शख्सियत की बात कर रही हूँ. दिस इज गोइंग टू बी वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग एंड फैसिनेटिंग एक्सपीरियंसेस दैट यू वुड नॉट वॉन्ट टू मिस एट ऑल. एंड अगर आपको लगता है कि क्यों ना टिकट्स जो है अच्छे खासे दाम पर मिल जाए तो इतना समझ जाओ इस वक्त अगर स्नूनो एप्लीकेशन डाउनलोड करते हो, इस नूनो सिटी के ऐप में जाते हो, तो कुल मिलाकर हर एक कैटेगरी में आपको 20% तक का डिस्काउंट मिलेगा. एंड दिस इज वन एंड फाइनल ऑफर, इसके बाद ऐसा कोई ऑफर बिल्कुल भी नहीं आने वाला है. इनफैक्ट अभी एक और ऑफर है जहां पे सिर्फ और सिर्फ 160 रियाल्स में आप 2 टिकट बुक कर सकते हैं. गो सिक्योर योर टिकट्स राइट अवे, एक ऐसा एक्सपीरियंस जो हम सबको कुल मिलाकर मंत्र मुग्ध कर दे जिसे कहते हैं ना, उसके लिए हम तैयार हैं, आप जो है तैयार हो ही जाएं. मीनवाइल संजू राठौड़ की आवाज में साड़ियों की दुनिया में आपको लेके चलते हैं. एंजॉय. बंदी का नाम अंशु.

0: Milci.
1: Iskabana, puskabana, sakabana. Rabana. Burga, burga. La virtua la burga. Milci, burga.
2: Hello.
3: Hello, Mr. Whipple, ma'am. से बोल रहा हूँ आपका कुछ दिन के लिए हमें इनबॉक्स चाहिए आपके मोबाइल का इनबॉक्स तो मैं अपना आदमी भेज दूँ या आप यहाँ पे आके जमा करा देंगे
2: इनबॉक्स चाहिए इनबॉक्स कैसा मतलब
3: मैं आपको वही समझा रहा हूँ एक्चुअली हमारी कंपनी अपना सर्वर चेंज कर रही है तो सर्वर में जो डेटा होता है अब वो सर्वर हटाएंगे तो सारा डेटा हमें कहीं तो रखना पड़ेगा ना तो हम आपके इनबॉक्स में रखेंगे कुछ दिन तक वो डेटा अब वो जब हमारा सर्वर नया लग जाएगा तो हम आपको इनबॉक्स आपका वापस कर देंगे तो मैं यहाँ से कंप्यूटर में फीड कर रहा हूँ आपका इनबॉक्स अपनी तरफ खींच रहा हूँ ठीक है सर
2: नहीं नहीं बात तो सुनो भाई साहब
3: हाँ बताइए
2: नहीं तो जो इनबॉक्स है मेरा वो तो मेरा अपने फोन मेमोरी में है ना
3: नहीं वो हम खींच लेंगे आप उसकी फिक्र मत करिए
2: नहीं तो आप कैसे उसको अपलोड करेंगे
3: मैं कुछ भी करूँ यार आप ज्यादा बहस करते क्यों एक तो सर्वर वो उतार रहे हैं आप मुझसे बहस कर रहे हैं
2: बहस वाली बात नहीं है मतलब मैं खुद मालूम तो करूँ ना अगर आप मेरे से कोई बात पूछ रहे हैं तो कम
3: बिल्कुल
2: से कम
3: बिल्कुल, से, बिल्कुल सही कह रहे हैं
2: जा कहाँ रहा है
3: नहीं वो जा कहाँ रहा है जा यहीं रहा है आपकी कंपनी में जा रहा है और मैं आपसे सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आपका कुछ दिन के लिए हमें इनबॉक्स चाहिए अब उसमें आपको टेंशन क्या है हम आपके मैसेजेस रखेंगे उसको पढ़ेंगे सही से
2: मेरे प्राइवेट एसएमएस है उसमें मैं ऐसे किस तरह से दे दूँ उसको
3: वैसे आप बुरा मत मानना आपके ये मना करने से मुझे लग रहा है कि आप मैंने उसमें सारे नॉन वेज मैसेजेस रखे हुए हैं उसमें
2: यार क्या बात कर रहा
3: हूँ नॉन वेज एसएमएस क्यों रखे हुए यार आपने उसमें बेकार की बातें कर रहे हैं आप कंपनी को जरूरत है क्या बदतमीजी कर रहे हैं आप उसपे मैं तो मुझे सिर्फ इनबॉक्स नहीं चाहिए मेरी बात सुनिए
2: चल
3: नहीं नहीं आपने फॉर्म भरा था सेकंड पेज पे मेरे हाथ में है रुकिए रुकिए सेकंड पेज पे लिखा हुआ है कि कंपनी आपका इनबॉक्स कभी भी ले सकती है उसमें कस्टमर को कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं होगा यहाँ तक कि आपके घर की बाल्टी आपके बर्तन आपके कपड़े तक उतरवा सकती है
2: बिल्कुल
3: क्या बात कर रहे हैं यार मेरी बात सुनिए आप पूरी हेलो
2: हेलो
3: हेलो भाई साहब आपने फोन काट दिया यार इनबॉक्स लेने की बात कर रहा था मैं फोन काट रहे हैं यार
2: आपको से फोन मत करियो मैं इनबॉक्स बना दूंगा दिमाग खराब कर दिया
3: क्या क्या क्या क्या यार बात सुनिए आप मेरी मैं आपसे सिर्फ एक बात एक बार विपुल मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ कोई तुम्हारा इनबॉक्स नहीं चाहिए मैंने मुर्गा बनाया है तुम्हारा तुम रेडियो मिर्ची पे हो
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
3: बात कर रहा था मैं आप फोन काट रहे हैं यार
2: आपको से फोन मत करियो मैं इनबॉक्स बना दूंगा दिमाग खराब कर दिया
3: क्या क्या क्या यार बात सुनिए आप मेरी मैं आपसे सिर्फ एक बात एक बार विपुल मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ कोई तुम्हारा इनबॉक्स नहीं चाहिए मैंने मुर्गा बनाया है तुम्हारा तुम रेडियो मिर्ची पे हो
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची

0: खोज रहे हैं?
1: या आर यू थिंकिंग ऑफ लाइक अ फ्लाइंग कारपेट? आर यू थिंकिंग ऑफ फ्लाइंग कारपेट?
2: कैसे किया? सीरियसली कैसे किया ये?
0: उसे सब पता है. Ladies and gentlemen, your mind is about to get blown because number one mentalist from India, the Suhani Shah, is coming to Qatar for the very first time. Catch her live on 25th September at QNCC.
3: Early bird tickets out now. Get them at STT Snoonu. Book yours now.
0: The mentalist Suhani Shah, live in

0: Well, Kinky, खूबसूरत सी आवाज और बड़ा लवली ट्रैक इट इज. आई जस्ट एब्सोल्युटली लव दिस ट्रैक मैन. ये प्यारा सा गाना तो मैंने आपको सुना दिया, लेकिन एक बहुत ही खूबसूरत सी डायलॉग बात आप तक पहुंचा दूं.
1: मिर्ची अंशु.
0: देखो यार, बॉलीवुड की जो फिल्में हैं ना, ये हमें एंटरटेन करने के अलावा जिंदगी में बहुत बड़ा पिक्चर भी प्ले करती हैं बॉस. मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है कि किस तरह कुछ खास डायलॉग्स ने मेरी जिंदगी को शेप करने का काम बहुत अच्छी तरह से किया है. कुछ फिल्मों ने जिंदगी को एक नई दिशा देने का भी काम किया है. एंड इनफैक्ट कुछ फिल्मों ने जब जब मैं उदास रही हूँ चेहरे में नॉन स्टॉप मुस्कान लाने का भी बहुत काम किया है. लेकिन कुछ आर्टिस्ट, कुछ कलाकार ऐसे हैं जो कि ना ही सिर्फ अपना किरदार निभा जाते हैं, लेकिन अपने किरदार से कहीं ना कहीं हमारी जिंदगी में ना एक अलग छाप जो है वो ज़रूर छोड़ जाते हैं. तो चलिए, बॉलीवुड की एक ऐसी अदाकारा हैं जो बेहतरीन बखूबी तरह से जानती हैं हम सबके दिल में रूल किया जाए तो कैसे किया जाए. चलिए मैं आपको उनकी आवाज़ इस वक्त सुनाने जा रही हूँ. बहुत खूबसूरत प्यारा सा डायलॉग है, आपको सुनना है एंड मुझे आइडेंटिफाई करके ये बताना है कि ये आवाज़ है तो आखिरकार किस शख्सियत की है. अगर गौर से सुनेंगे ना यार, तो इस डायलॉग में ही पूरा का पूरा सही जवाब जो है वो छुपा हुआ है. एंड साथ ही अगर फिल्म का नाम बताएंगे किस फिल्म से है तो आपको एक ब्राउनी पॉइंट जो है मैं दूंगी, लेकिन ज़रूर दूंगी. फिलहाल आपको आइडेंटिफाई करना है कि आवाज़ है तो है किस अदाकारा की, किस एक्ट्रेस की. 5000 1896. This is our WhatsApp number. I look forward to receiving your audio messages. Instagram Mirchi One Kataria Mirchi Anshu. But for now, here you go.
2: हर खूबसूरत चीज में दाग होता है, चांद में भी दाग है, तो फिर ये बगीचा इतना बेदाग क्यों? हर खूबसूरत चीज में दाग होता है, चांद में भी दाग है, तो फिर ये बगीचा इतना बेदाग क्यों?
0: क्या बात है यार, क्या डिलीवरी है यार. 5000 1896, ये खूबसूरत सी सुरीली सी आवाज है तो है किसकी. वेटिंग फॉर योर मैसेजेस. मीनवाइल बादशाह एंड शर्वी यादव की आवाज में आपको ये अगला पावर पैक गाना सुना दूं. एंजॉय. बंदी का नाम अंशु.
3: मोरनी

0: इस गाने को गाया है सुबोध शर्मा ने, म्यूजिक दिया है मिथुन ने और लिरिक्स लिखे हैं सईद कादरी ने। फिल्म आवारा पंटू से सुनते रहिए बेजुनून, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप, सब्सक्राइब टू द गाना, 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।
1: वैसे पूरे जुनून के साथ अपने किरदार को किस तरह से निभाया जाता है, ये शख्स इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानता है।
2: मिर्ची अंशु
1: मैं तो बस उसी शख्स की बात कर रही हूँ जिसकी आवाज अब से कुछ देर पहले मैंने बस आपके बीच पहुंचाई थी। एब्सोल्युटली अंशु ने आपसे कुछ देर पहले आपकी जिंदगी में अगर कुछ लाई तो वो है बॉलीवुड का सॉलिड वाला तड़का, जहाँ पे कोई तो इंटरेस्टिंग सा डायलॉग मैंने आपके बीच पेश किया था, आपको सुनकर आइडेंटिफाई कर बस ये बताना था कि ये है तो है किस शख्सियत की आवाज, और मैंने कहा था कि अगर गौर से सुनेंगे तो कहीं ना कहीं सही जवाब पहचानने में आपको वक्त नहीं लगेगा। अब एक काम करेंगे, जिन लोगों ने अभी अभी ज्वाइन किया है उनके लिए एक बार फिर से मैं ये डायलॉग सुनाती हूँ। अगर आपको लगे कि अभी भी आपने इस शख्स की आवाज पहचान ली डायलॉग सुनते सुनते, तो मुझे जल्दी से करेक्ट आंसर भेजना 5000186 पर, 5000186 पर। विल गेट कनेक्टेड द इंस्टाग्राम मिर्ची वन कतरिया मिर्ची अंशु एंड हियर वी गो।
3: हर खूबसूरत चीज में दाग होता है, चांद में भी दाग है, तो फिर ये बगीचा इतना बेदाग क्यों?
1: क्या बात है यार, क्या बात। चले देखिए लोगों का क्या कहना है। ये कौन है?
4: हेलो, अस्सलाम वालेकुम। विद्या बालन, हमारे अधूरी कहानी, इमरान हाशमी है।
5: हाय अंशु, दिस इज अल्ताफ। द एक्ट्रेस नेम इज विद्या बालन, द फिल्म नेम इज हमारी अधूरी कहानी।
6: हेलो, ये आवाज है विद्या बालन की, विद्या बालन, दिस इज नदीम। थैंक यू रेडियो मिर्ची।
1: वेल एब्सोल्युटली आप सबने जो कहा, इनफैक्ट जो सबने लिख कर भी भेजा, ये पूरी तरह से सही। अगर इस फिल्म की मैं बात करूँ तो बस वही फिल्म जो कि रिलीज हुई थी साल 2015 में, यानी एक ऐसे डायरेक्टर ने इसे डायरेक्ट किया था जिन्होंने आशिकी 2 एंड एक विलन जैसी फिल्में हमारी जिंदगी में लेकर आए, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट मोहित सूरी। एंड इस फिल्म में अगर आपको कोई नजर आए तो वह है विद्या बालन, इमरान हाशमी एंड राजकुमार राव। वैसे एक बात आपको पता है कि दिस स्टोरी वॉज इंस्पायर्ड बाय एस्पेक्ट्स ऑफ फिल्म मेकर महेश भट्ट पेरेंट्स रिलेशनशिप, जहां पे फिल्म की थीम जो है थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड भी लगी एंड साथ ही इनकम्प्लीट लव स्टोरी को इसने पोर्ट्रे करने की कोशिश की। लेकिन चलिए, इस वक्त अगर मैं विद्या बालन की बात करूं तो यार इनके बारे में ना मैं आपको कुछ खास बताना चाहूंगी। यार कभी कभी ना किसी सक्सेसफुल इंसान की सक्सेस से ज्यादा इंटरेस्टिंग होती है वो कहानी जब दुनिया उसे सक्सेसफुल मानती ही नहीं थी, एंड उसमें सबसे बड़ा एग्जाम्पल अगर कोई है तो वो है विद्या बालन। देखिए, अगर आज के डेट में आप और हम विद्या बालन को देखने की कोशिश करें तो बॉलीवुड के फाइनेस्ट एक्टर्स में इनका नाम जो है वो शामिल है, लेकिन एक वक्त था जब फिल्म्स उनके हाथ से पूरी तरह से निकल रही थी एंड शी हैड टू फेस बैक टू बैक रिजेक्शन। एग्जैक्टली, आई एम टॉकिंग अबाउट विद्या बालन। इनफैक्ट उन्हें अनलकी जिंक्स्ड तक ऐसे टाइटल भी दिए गए, यू नो। फिर कभी उनके लुक्स को लेकर, उनके वेट ड्रेसिंग को लेकर हर बात में ओपिनियन आने लगी, लेकिन विद्या ने इवेंचुअली एक बात बहुत खूबसूरत तरह से सीखी और ने कहा भी कि हर किसी को कन्विंस करना जिंदगी में नामुमकिन है और जरूरी भी नहीं है, लेकिन खुद को एक्सेप्ट करना ये बेहद जरूरी है। एंड परहैप्स दैट्स व्हाई वी फाइंड हर कनेक्शन विद हमारी अधूरी कहानी, क्योंकि क्या है ना, अधूरी कहानियां ही हमें पूरा इंसान बना देती हैं, और ये बात विद्या बालन ने हमें बहुत अच्छी तरह से सिखाई है। विद दैट, अमी मिश्रा की आवाज में इस फिल्म से इस वक्त ये गाना सुनना तो बनता है जी, एंजॉय। बंदी का नाम अंशु।

0: नौटियाल एंड दी मोहन की खूबसूरत सी आवाज एंड व्हाट अ लवली ट्रैक इट इज फ्रॉम द फिल्म जॉली LLB2। एंड सच कहूं यार, अक्षय कुमार एंड हुमा कुरैशी भी इतने खूबसूरत एक साथ लग सकते हैं। इस फिल्म ने ये बात को जो है ना 101% तय कर ही दिया। वैसे मेरी जिंदगी और मेरी दुनिया जो है आपके साथ अधूरी नहीं, पूरी होती।
1: मिर्ची अंशु
0: बस आज का दिन जो है ना बहुत ही ज्यादा खास, बहुत ही ज्यादा स्पेशल है, बिकॉज आज का दिन आपका और हमारा दिन है। वेल, टुडे वी आर सेलिब्रेटिंग इंटरनेशनल यूथ डे। तो सबसे पहले आप सबको और मुझे भी इसकी बहुत सारी बधाई। देखिए, इस वक्त सवाल ये उठता है कि आखिरकार यूथ हम कहते किन हैं? अगर मैं यूनाइटेड नेशंस की डेफिनेशन को समझने की कोशिश करूं तो उनके हिसाब से यंग दरअसल उस ब्रैकेट में आते हैं जिनकी उम्र जो है 15 साल से 24 साल के बीच होती है। कुल मिलाकर दुनिया का तकरीबन 16% जितना भी पॉपुलेशन का ये पिटारा है ना, वो यूथ है एज पर यूएन। अगर भारत की बात करें तो तकरीबन 26%, लेकिन अगर कतर को देखने की कोशिश करें तो डेमोग्राफिक्स के हिसाब से यहाँ पे मैक्सिमम एक्सपैट्स हैं। तो भैया इतना समझ जाए, डिफरेंट कल्चर नेशनैलिटी के चलते हम जो है दिल से यूथ जरूर हैं। लेकिन सच कहूं यार, यूथ की डेफिनेशन देखने की कोशिश करूं तो मुझे ऐसा लगता है कि क्या सिर्फ युवा वही जिसकी उम्र 20 है, या तो फिर वो है जो 50 से भी ये कहता है कि भाई अब ना कुछ जिंदगी में नया करना है। Well, जब तक क्यूरियोसिटी जिंदा है, कुछ नया सीखने का एक्साइटमेंट जिंदा है, एंड हर संडे को बॉस के फीडबैक के बाद उसकी शक्ल देखने के बाद भी ऑफिस आने का वो जज्बा जिंदा है तो मैं कहती हूँ कि तुम्हारे अंदर यूथ जो है ना वो जिंदा है। तो बस इसी यूथ को अपने अंदर आप और हम बरकरार रखते हैं। एंड फिल्म युवा से एहरमान की कॉम्पोजिशन के साथ सुनीता सारथी एंड तन्वी की आवाज में ये अगला गाना एंजॉय करते हैं। बंदी का नाम अंशु।

0: हॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा
1: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: नेहा शर्मा, आपको आए दिन कोई ना कोई ट्रोल करता रहता है, अगर आपको किसी को ट्रोल करना होता तो क्या कहते?
3: अंदर से मैं ट्रोल करना चाहती हूँ, but I can't. But if I were to, I would. You know, there are people. It's unbelievable. कुछ लोग नीचे लिखते हैं, रोज जिम जाते हो फिर भी पतले नहीं हो रहे। तुम लोगों को क्या सिक्स पैक्स एट पैक्स है क्या घर पे? जाओ ना जिम, इट्स हार्ड वर्क। हाँ जाओ डेली जिम, इट्स नॉट इजी।
2: करेक्ट, नेहा शर्मा सही कह रही है। इट इज वेरी इजी टू ट्रोल, बट इट्स नॉट इजी टू गो टू द जिम। आप सुन रहे हैं मिर्ची इट्स हॉट।
0: Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bollywood,
1: Bollywood, only on Mirchi, it's hot.

कुलदीप ने की एंड पलक मुच्छल की पावर पैक आवाज एंड भाई वर्जन 2 जो है आज भी दिल में वही जादू चलाता है जो वर्जन 1 में चलाया था, लेकिन आंखों से या किस तरह से इसने क्या कहा आज तक कोई समझ ना पाया। मिर्ची अंशु मतलब इमेजिन करो कि किसी शख्स के पास ये हुनर है कि सिर्फ तुम्हारी आंखों को देखकर तुम्हें नज़रों से कैद कर या तुम्हें सिर्फ छू के ये समझ जाए कि तुम्हारे दिमाग में चल रहा है तो क्या चल रहा है। भाई मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया में इससे बड़ी ताकत या इससे बड़ा हुनर दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। एंड इस वक्त ये हुनर किसी के पास है तो एक ऐसी शख्सियत के पास जो बहुत जल्द अगर कहीं आने वाली हैं तो वो है कतर ऑन 25 सितंबर एट कतर नेशनल कन्वेंशन सेंटर। और मैं बात कर रही हूँ दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट सेलिब्रेटेड मेंटलिस्ट मजिशियन सुहानी शाह। यार ये बात अब तक आपको बहुत अच्छी तरह से पता है कि सुहानी का मैजिक किस तरह से सर चढ़ के बोलता है। आप इमेजिन करें न्यूयॉर्क में इस वक्त पूरी तरह से कोहराम मचाने के बाद अच्छे अच्छे लोगों के दिमाग को पढ़ने के बाद सिर्फ और सिर्फ एक हाथ मिलाकर मुलाकात करने के बाद ये बताने के बाद कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है, जब इस तरह का असर वो हर जगह छोड़ सकती हैं तो इस वक्त जब कतर आएंगी तो वो नज़ारा होगा तो कितना खूबसूरत होगा। वेल मैं इतना ही कहना चाहूंगी हम जो है ना बड़े कमाल लोग हैं यार, अक्सर हम ये वेट करते हैं इवेंट के लास्ट डेट तक कि शायद कोई एडिशनल ऑफर मिल जाए या फ्री में टिकट मिल जाए। मुफ्त की आदत जो है ना बचपन से लगी हुई है, लेकिन हर एक अच्छी चीज मुफ्त में मिल जाए तो बात ही क्या है। फटाफट से इस वक्त सुनूनू एप्लीकेशन अपने फोन पे डाउनलोड करें, सुनूनू सिटी में जाएं एंड सुहानी शाह लाइव इन कतर को बुक करें। बात इतनी है 20% डिस्काउंट अक्रॉस ऑल कैटेगरीज एंड 160 रियाल में आप दो टिकट भी अवेल कर सकते हैं। नाउ दिस इज द लास्ट एंड फाइनल ऑफर दैट यू माइट नॉट गेट टू अवेल लेटर, मेक श्योर यू विटनेस इट। आपके दिमाग को पढ़ने की बारी जो है ना अब आ ही चुकी। एंजॉय। बिंदी का नाम अंशु।

0: Mirchi.
1: Escabana, escabana, sacabana. Rambala. Murga, murga. La vieja la murga.
0: Mirchi, murga.
2: Hello.
3: Hi. ये पे आपकी फ्री कॉल है। अगर आप अकेले बैठे हुए हैं और चाहते हैं किसी को अपना बनाना, किसी से अभी बात करना, तो हैश दबाइए। कृपया लाइन होल्ड करें, हम आपकी कॉल उस तक पहुंचा रहे हैं जिससे आप बात करना चाहते हैं।
4: हेलो।
2: हेलो,
4: कौन बोल रही हैं?
2: आप कौन बोल रही हैं?
4: बोल नहीं रही हूँ, मैं बोल रहा हूँ यार, मेरी लड़की से बात करानी थी, फोन आया था मेरे पास।
2: तो भाई मेरे पास भी तो फोन आया था।
4: तो यार आप कहाँ से बीच में आ गए? वो कह रहे थे लाइफ पार्टनर, मैं लड़की से बात करना चाह रहा हूँ।
2: टाइम पे दोनों को भी, आपको भी करा होगा फोन, उन्होंने मुझे भी करा होगा, तो मैंने भी मिला दिया।
4: मैं क्या पागल हूँ यार, मैं आपसे बात करना चाहूंगा, मुझे भी तो टाइम पास करना है, लड़की का इंतजार कर रहा था मैं यार। मेरे पास फोन आया था, आप अपनी चला रहे हैं, मैं आपसे झूठ बोल रहा हूँ क्या?
2: ये तो वहाँ से मेरे पास,
4: अरे यार
2: जैसे आपके पास आया कि अगर आप खाली बैठे।
4: हो सकता है, हो सकता है।
3: हाय, आप दोनों की कॉल गलती से मिल गई है, कृपया लाइन होल्ड रखें, आप दोनों को अपने अपने पार्टनर तक पहुंचा दिया जाएगा।
4: हेलो।
2: हेलो,
4: कौन बोल रही है? अरे भाई यार, मैं लड़की के चक्कर में यार, कहां से आ रहे हो यार बीच में? मैं मेरी लाइन,
2: भाई ये नंबर क्या है, तू बता, तू क्यों लाइन में आ रहा है?
4: मैं कहां से लाइन पे आ रहा हूँ यार, तू लाइन में आ रहा है? लाइन में आ रहा हूँ तो एक घंटे से मैं एक लड़की से बात करने के लिए चाह रहा हूँ यार, तू मुझ पर चिल्ला रहा है, मेरे पास कॉल आई है यहाँ पे। हाँ तो दो मिनट रुक, तू कर ले, तेरा कुछ जा रहा
2: है?
4: यार बदतमीजी बदतमीजी मत कर, तू बड़ा शरीफ आदमी है जो यहाँ पे इस लाइन में आया हुआ है, इस सर्विस में।
3: हाय, कृपया करके लड़ाई बंद करें, अब आपकी लास्ट फाइनल कॉल, हम उस लड़की तक पहुँचा रहे हैं, लेकिन लाइन तक पहुँचने के लिए आप कहिए मेरे साथ कुकड़ू कू।
2: हेलो
4: सर, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, आप रेडियो मिर्ची पे हैं, दुनिया आपको सुन रही है, कम से कम इतनी तमीज होनी चाहिए यार, आप लड़की से बात करना चाह रहे हैं, किस तरह का टाइम पास करना चाह रहे थे?
2: तो वो आ रहा है, मुझे लग रहा भाई मुझे भी टाइम पास करना था, मुझे
5: भाई मालूम था ये। मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची।
6: घर बैठे चाहिए नया कार्ड, स्मार्ट चॉइस है ओरिरु मनी कार्ड, अप्लाई करो आज ही और क्यू पोस्ट से पाओ डोर स्टेप डिलीवरी कहीं भी इन कतर। एक्टिवेट करते ही शॉपिंग करो लोकल या इंटरनेशनल, और सुनो हर एप्लीकेशन पर जीत सकते हैं एक ब्रांड न्यू आईफोन 17 प्रो मैक्स। लेट मत करो, ऑर्डर योर ओरिरु मनी कार्ड स्ट्रेट अवे। TNC अप्लाई।
7: It's all down to Dhoni, isn't it? Four balls left, they need 12 runs to win.
6: महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है ये सामने वाली टीम को कभी पता नहीं चला, लेकिन उसे पता है। सलमान खान अभी अपने फार्म हाउस में हॉर्स राइडिंग के बारे में सोच रहे हैं या
8: आर यू थिंकिंग ऑफ लाइक अ फ्लाइंग कार्पेट? आर यू थिंकिंग फ्लाइंग कार्पेट?
9: कैसे किया, सीरियसली कैसे किया ये?
6: उसे सब पता है। Ladies and gentlemen, your mind is about to get blown because number one mentalist from India, the Suhani Shah, is coming to Qatar for the very first time. Catch her live on 25th September at QNCC.
10: Early bird tickets out now. Get them at SCT Snoonu. Book yours now.
6: The mentalist Suhani Shah.

0: विशाल मिश्रा की आवाज़, सचिन जिगर की कॉम्पोजिशन, फिल्म स्त्री से ये गाना है। जब जब मैं ये गाना सुनती हूँ ना, मेरे दिमाग में, मेरे दिल में पहला ख्याल ये आता है कि यार कोई गाना इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है कि उस गाने की खूबसूरती से ही आपको इश्क प्यार मोहब्बत हो जाए। या तो फिर अगर आपके दिल में ऐसे कोई जज्बात नहीं है ना, तो कोई गाने के अल्फाज या कोई गाना आपको मजबूर कर दे कि एक बार यार जिंदगी में कुछ हो तो इश्क हो जाए।
1: मिर्ची अंशु, मिर्ची अंशु, मिर्ची अंशु, मिर्ची अंशु।
0: हाँ जी, वैसे अगर इश्क प्यार मोहब्बत की बात करूँ तो ये दास्तान मुझे सीधा कहीं लेकर जाती है तो अपने बचपन के दिनों में। यार वो स्कूल एंड कॉलेज टाइम का पहला क्रश याद है, जब पहली बार किसी के लिए आपका दिल जो है जोरों से धड़का था। एंड उस वक्त जो है ना, हमारे जेब में, हमारे पॉकेट में ज़्यादा पैसे नहीं हुआ करते थे। जितनी भी पॉकेट मनी मिलती थी या जिस तरह से हम चुरा के छुपा के किसी भी तरह से घर वालों से ऐट लिया करते थे, वो एक एक पैसे जमा कर हम इसी ख्वाहिश में रहते थे कि इसको गिफ्ट में दें तो क्या दें। एंड उस ज़माने में ना गिफ्ट के अलग ट्रेंड्स थे। मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है कि मेरे क्रश ने जिसकी मैं भी क्रश हुआ करती थी, हम फ्रेंड्स हुआ करते थे। अगर मुझे गिफ्ट के तौर पर सबसे पहले कुछ दिया था, सो दैट यूज़ टू बी अ डेरी मिल्क चॉकलेट फ्रूट एंड नट, बिकॉज दैट यूज़ टू बी माई फेवरेट। एंड उस चॉकलेट के रैपर को मैंने ना जाने कितने महीनों, कितने साल तक संभाल के भी रखा था। बहुत प्रेशियस था यार वो गिफ्ट, जो है आज की डेट में ना जाने कितने करोड़ों के हीरो से भी बढ़कर। एंड उसके बाद दूसरे तोहफे की बात करें, सो टेडी बेयर है भाई, क्या पॉपुलर हुआ था। वो तो हम देते थे, लेकिन वो ग्रीटिंग कार्ड से याद है अलग ही चलन था कि मार्केट से वो 3D कार्ड्स लेने हैं, उसमें कुछ कुछ अपनी डिजाइनिंग कर, अपनी हैंडराइटिंग में अपनी फीलिंग्स को लिख कर गिफ्ट करना है। ये सब कितने प्रेशियस गिफ्ट हुआ करते थे यार। आज की डेट में जब जेबें भरी हुई हैं, प्यार को इजहार करने का तरीका ना जाने कितनी महंगी चीज़ों में कुल मिलाकर घुल सा गया है, लेकिन उन तोहफों की कीमत जो है ना भाई, आज के इन तोहफों से नहीं आंकी जा सकती। खैर, उतनी खुशी आज की डेट में कुछ और है जो मुझे देता है, और वो है अच्छा वाला एक्सचेंज रेट। वही गुदगुदी होती है जी। वैसे आज का पैसा भी क्या कड़क बोल रहा है यार। अगर आज आप ट्रांसफर करना चाहेंगे तो 1 रियाल के अगेंस्ट आपको मिलेंगे इंडियन रुपीज 26.15, पाकिस्तानी रुपीज 76.20, साथ ही नेपाली रुपीज 41.78, बांग्लादेशी टका 33.85 एंड लंकन रुपीज 91.78। तो बस घर भेजे पैसे, ढेर सारी खुशियां, लेकिन अभी फिलहाल जिंदगी में खुशियों को बरकरार रखने के लिए सुनते रहे कतर का नंबर 1 हिंदी रेडियो स्टेशन मिर्ची। इट्स ऑल एंजॉय। बंदी का नाम अंशु।

I love you all. दोस्तों ना कोई मंजिल है ना कोई साथी है, फिर भी निकल पड़ा हूं घर से, शायद जिसकी तलाश है वही साथी है वही मंजिल है।

0: बीपी ढिल्लन की ये पावर पैक खूबसूरत सी आवाज़ है, क्या खूबसूरत सा प्यारा सा गाना यार। मतलब कुछ गाने होते हैं ना जो आपको चिल करते हैं, मतलब रिलैक्स करते हैं, आपको हल्का हल्का ग्रूव करने में मजबूर करते हैं, तो उसमें ये गाना जो है ना ज़रूर है जी।
1: मिर्ची अंशु।
0: वैसे ग्रूविंग से मुझे याद आया कि कुछ करें ना करें, लेकिन ये काम जो है ना आप 101% कर ही लें। देखो यार, मुझे ऐसा लगता है कि ज़िंदगी में जहाँ तक ये ज़रूरी है कि हम जो है अच्छा काम करें, अच्छे कपड़े पहने, पार्टी करें, लाइफ को एंजॉय करें, खुश रहें, ये सारी चीज़ें करने के लिए ना एक फैक्टर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, एंड वो है हमारी हेल्थ का अच्छा स्टेट या अच्छा कंडीशन। एब्सोल्युटली यार, एक बात बताओ ना, चाहे तुम्हारे पास कितने भी पैसे क्यों ना हो, तुम कितने भी कामयाब क्यों ना हो, करने के लिए बहुत सारे रिसोर्सेज क्यों ना हो, जब तक तुम्हारा हेल्थ ही, तुम्हारी हेल्थ ही तुम्हारा साथ ना दे, तब तक तुम ये सारे काम एग्जीक्यूट कैसे कर पाओगे। एन अच्छी हेल्थ के लिए बेहद ज़रूर है कि हम अपनी तशरीफ़ को अक्सर उठाते रहें, ज़रा हिलते डुलते रहें। कहने का मतलब है थोड़ी सी एक्सरसाइज यार, थोड़ा सा मूवमेंट, ज़्यादा नहीं, दिन के 20 मिनट ही आप चाहें तो सिर्फ चल लें। गर्मी इतनी है इस वक्त, बहुत सारे इंडोर एरियाज़ हैं, बहुत सारे जिम्स हैं, फुल्ली एयर कंडीशन पार्क्स हैं, वहाँ जाकर 20 मिनट बस चली लो। मैं तो यही कहती हूँ, ज़्यादा कुछ दिल ना करें ना, अच्छा खासा गाना लगाओ और अपने अंदर वो बाराती वाला कीड़ा जो है ना वो लेके आओ, घर पर ही नाच लो, घर वालों के साथ नाचो, नहीं दिमाग के साथ नहीं, फिजिकल बॉडी वाले नाचने की मैं बात कर रही हूँ। इट इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टू कीप वन सेल्फ मूविंग। इनफैक्ट अगर मूवमेंट की बात करें, एक और फैक्टर, बहुत सारे लोग जिनका सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, मतलब ऑफिस काम है, घंटों अगर चेयर पे बैठना होता है, एक हैबिट बना लो कि हर घंटे में एक बार ना हमें 5 मिनट के लिए उठना है, एक ब्रेक ही लेना है, थोड़ा सा चलना फिरना है, और क्या काम कर रहे हैं जब दूसरों के अड्डे में जाके देखना है, वापस आना है, एंड यू विल सी अ मैसिव चेंज इन योर लाइफस्टाइल एंड बॉडी स्ट्रक्चर एंड एवरीथिंग। बाद में जब सब कुछ अच्छा हो ना, मुझे थैंक यू पक्का बोलना। यहीं पे मिलती हूँ मैं 5000 1896, इंस्टाग्राम मिर्ची वन कतरिया मिर्ची अंशु। मीनवाइल जुबिन नौटियाल की आवाज़ है अगला प्यारा सा गाना आपके लिए, एंजॉय। बंदी का नाम अंशु।

0: Hollywood, Bollywood, Bolda. Only on Mirchi. It's hot.
1: नवाजुद्दीन सिद्दीकी, अगर आपको किसी को ट्रोल करना होता तो कैसे करते?
2: मैं करूँ?
3: आप करोगे?
2: नहीं, मैं करवाता मतलब मेरा होता है
3: तो वो तो पता है मेरा बस चलता है एक-एक को घुसन मार के आती हूँ
2: My friend. How are you, my friend?
1: ये थे नवाजुद्दीन सिद्दीकी ऑन मिर्ची इट्स हॉट बॉलीवुड
0: बोल्डा बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
4: It's all down to Dhoni, isn't it? Four balls left. They need 12 runs to win.
5: महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है ये सामने वाली टीम को कभी पता नहीं चला, लेकिन उसे पता है। सलमान खान अभी अपने फार्म हाउस में हॉर्स राइडिंग के बारे में सोच रहे हैं
6: या आर यू थिंकिंग ऑफ लाइक अ फ्लाइंग कार्पेट आर यू थिंकिंग फ्लाइंग कार्पेट
7: कैसे किया सीरियसली कैसे किया ये
5: उसे सब पता है Ladies and gentlemen, your mind is about to get blown because number one mentalist from India, the Suhani Shah, is coming to Qatar for the very first time. Catch her live on 25th September at QNCC.
8: Early bird tickets out now. Get them at STD Snoo Noo. Book yours now.

Well, Rekha Bhardwaj ki khubsurat si awaaz, Toshi Raina ka saath, and what a lovely track it is, yaar. Ye gaana, khaskar hum logo ki zindagi ko na, bahut khubsurat tarah se bayaan karta hai. Mirchi Anshu. यार घर से दूर अपने इस दूसरे घर की जो ज़िंदगी है ना, ये बड़ी कमाल होती है. कुछ अनकहे ऐसे जज्बात होते हैं जिसे शायद सब हम समझ पाते हैं, औरों को समझा पाना बहुत मुश्किल. अपने करियर के चलते, अपने प्रोफेशन के चलते, ज़िंदगी को बनाने के लिए घर से आप जब दूसरे घर में आते हैं ना, और ख़ासकर अपनों को छोड़ कर आते हैं, तो वो जो दिल में एक कसक होती है, दिल में एक खलिश होती है, कभी कभी ना बहुत ज़्यादा छुपती है यार. अपनों की याद जो है ना, बहुत दिल से आती है, बहुत ज़्यादा सताती है. लेकिन शायद यही वो पल होते हैं, यही वो लम्हे होते हैं जब हमें रिश्तों की अहमियत को और ज़्यादा समझाते हैं कि कोई हमारे लिए कितना ख़ास है, कोई हमारी ज़िंदगी में कितनी ज़्यादा अहमियत रखता है. बोल इतना कहना चाहूँगी, अगर घर से दूर आपके उस घर में कोई ऐसा है जिसकी याद आपको अक्सर सताती है, या जो लगता है आपकी ज़िंदगी में इसने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है आपको शेप करने में, आपको बड़ा करने में, भाई आज ये दूसरा घर आपको कितना भी बिजी क्यों ना रखें, आप कितने भी व्यस्त क्यों ना रहें, कोई एक ऐसा ज़िंदगी का दिन ना हो जब आप उनसे कनेक्टेड ना हो, जब आपकी उनसे बात ना हो. याद करना एक बात है, लेकिन अपनी फीलिंग्स को इजहार करना ये उससे भी ज़्यादा ज़रूरी बात है. सो इंश्योर दैट यू मेक अ कॉल टू योर लव्ड वंस एवरी सिंगल डे, इंश्योर यू विजिट देम एज मच एज पॉसिबल एंड एज ऑफन एज पॉसिबल. आज की डेट में टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ चुकी है कि हमारे पास वो सारी फिजिबिलिटी है कि हम एक फिंगर टिप में अपनों से कनेक्टेड हो पाएँ. तो अगर अक्सर हम विजिट नहीं कर पा रहे हैं, तो एक कॉल के ज़रिए कनेक्ट कर सकते हैं. कहीं ना कहीं दिल को सुकून एंड राहत जो है ना, आपको और उनको दोनों को मिल ही जाता है. चलिए जी, अगर ये मेरी बात अच्छी लगी, मुझे फटाफट से एक थैंक यू मैसेज भेजना. 5000 1896. आई एम ईगरली वेटिंग फॉर योर मैसेजेस इंस्टाग्राम. मिर्ची वन कतरिया मिर्ची अंशु. अभी के लिए लेती हूँ अलविदा. मुलाकात होगी कल सारी बातों के साथ, इंटरेस्टिंग खबरों के साथ. वीकेंड का प्लान सेट करेंगे आपका और मेरा. अभी विशाल डिडलानी की आवाज़ में ये प्यारा सा गाना आप तक पहुँचाती हूँ. एंजॉय. बंदी का नाम अंशु.

0: हेलो, मिर्ची हेल्पलाइन
1: जी। बिल्कुल मिर्ची हेल्पलाइन, बता बेटा सवाल क्या है।
0: सर, मैंने 3 अलग अलग बिजनेस किए, उनके लिए मार्केटिंग भी किया, पर कुछ बिक नहीं रहा, मैं क्या करूं? कुछ सोल्यूशन बताओ ना।
1: अरे बेटा, सिंपल सा सोल्यूशन है, तू एक काम कर, दुकान ही बेच दे।
2: I'm joking, mama।

0: सुबह सुबह का टाइम हुआ करता था और स्कूल बस में सब चुप होते थे। क्यों? क्योंकि स्कूल असेंबली के लिए न्यूज जो ढूंढनी होती थी।
1: सारा जमाना सारा का दीवाना।
2: मिड डे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
0: Hi, this is me, Sara, आपकी 90s की यादों का पिटारा, and now you tune in with me on Mirji. और हाँ, हमारी जिंदगी में ऐसा भी तो एक टाइम हुआ करता था यार। आज की मॉर्निंग्स हम कहते हैं कि वी मस्ट गो स्लो, आराम से कॉफी एंजॉय करो एंड ब्ला ब्ला ब्ला, लेकिन बचपन की मॉर्निंग्स हमारी बहुत तूफानी हुआ करती थी यार। भागम भाग में तैयार होना, भागम भाग में नाश्ता करना, भागम भाग में बस पकड़ना, और फिर फाइनली जब बस में बैठ जाते थे तो सब शांत। क्यों? क्योंकि हम सब ना न्यूज लिख रहे होते थे। मुझे नहीं पता आपके स्कूल में ऐसा होता था कि नहीं होता था, लेकिन हमारे स्कूल में डेफिनेटली होता था कि यार हम सबको ना एक छोटी सी डायरी मेंटेन करनी पड़ती थी। वो डायरी हमेशा हमारी पॉकेट्स में रहा करती थी, एंड उस डायरी के अंदर रोज सुबह हमें न्यूज लिखकर ले जानी होती थी स्कूल, ताकि असेंबली में अगर अचानक किसी को बुला लिया जाए, जो कि होता भी था हमारे साथ, हमें न्यूज बोलनी आनी चाहिए ऑन द स्टेज। और इसीलिए सब अपने आप को बचाते हुए हर रोज सुबह बस के अंदर न्यूज ही लिख रहे होते थे, एक नेशनल, एक इंटरनेशनल और एक लोकल। तब ना ये सिस्टम बहुत बोर लगा करता था, बहुत चिड़ होती थी, और दिमाग यही कह रहा होता था कि यार ये रोज सुबह क्या क्या टंडे लगाने पड़ते हैं यार, न्यूज़पेपर घर से लेकर आओ और फिर बस में बैठ के न्यूज टीपो। हमारे घर में ना दो न्यूज़पेपर आते थे इसी चक्कर में, एक जो मैं स्कूल लेकर जा पाऊं जब मुझे न्यूज लिखनी होती थी बस के अंदर, और दूसरा जो घर पे रह जाए ताकि बड़े पढ़ पाए। लेकिन ये जो चिड़न कुड़न बलन थी ना, और जो बोरियत होती थी इन सारे कामों को करते हुए, आज समझ आ रहा है कि ये अच्छी चीज थी यार। कसी जो न्यूज अपडेट रखने की आदत मुझे आज है ना, वो यहीं से तो आई है। वैसे ना लाइफ में और भी ऐसी कई सारी आदतें हैं जो हमें तब तो बहुत ही इरिटेटिंग लगा करती थी, क्योंकि तब करना पड़ता था क्योंकि हम छोटे हैं, लेकिन आज जब वो हमारी लाइफ में एक अच्छे तरीके से इन्वॉल्व है और डिसिप्लिन लेकर आ रही है ना, तो लगता है कि हाँ यार कुछ आदतें अच्छी होती हैं। बताऊंगी आपको थोड़ी देर में उन आदतों के बारे में, लेकिन अभी के लिए मिड डे मोहब्बत की गाड़ी को 90s के गियर में डालने की बारी आ चुकी है। यू स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirchi.
1: Escabana, escabana, sacabana.
2: Rambala.
1: Murga, murga. La fiesta la murga.
2: Mirchi, murga.
3: Mirchi.
4: It's Navid.
3: बोल रहा हूँ।
4: अगर किसी का वो जो बनाते हैं आप उल्लू, उसके लिए क्या करना पड़ेगा?
3: वो आपको मुझे बताना होगा।
4: तो मैं अभी बता दूँ?
3: एक सेकेंड, ये फॉर्म भर देते हैं। क्या नाम है आपका?
4: संजना।
3: संजना, किसका मुर्गा बनवाना है आपको?
4: अपने हस्बैंड का।
3: क्या बात कर रही हैं, और कोई नहीं मिला आपको?
4: फिलहाल अभी कोई और दिमाग में नहीं आ रहा।
3: अच्छा संजना, मुझे प्लीज आप ये बता देंगे कि ये इनको कितना गुस्सा आता है, ताकि मैं उसी हिसाब से इनसे बात करूँ फिर मुर्गा बनाऊँ। बहुत ज्यादा भड़क जाते हैं?
4: भड़क भी जाते हैं।
3: अरे बाप रे। तो मुझे संजना प्लीज बता देंगे किस तरह भड़कते हैं ये?
4: अब्यूजिंग वे में। थोड़ा
3: अब्यूजिंग वे में, जैसे कि कैसे?
4: आप मुझे शुरू कीजिए फिर मैं बताता
3: हूं। ओके चलिए।
5: हेलो सर, मैं इस बैंक से बोल रहा हूँ, फलाना बैंक से। सर आपको लोन देना है, दो मिनट दे सकते हैं?
4: नहीं, मेरे पास अभी टाइम नहीं है।
5: सर थोड़ा सा दो मिनट दे दीजिए यार, क्या बात जाती है आपकी?
4: दिमाग खा रखा है।
5: अरे शर्म किस बात की यार, हम लोन बेच रहे हैं, आप मुझे बता दीजिए। सर आप एक तो तमीज से बात करिए, आप लोन लेना है ले लीजिए, तमीज से बात करिए, बदतमीज कहीं का।
3: मुझे भी अच्छा नहीं लगता कि मैं इस तरीके से किसी का मुर्गा बनाऊं। और संजना मैं तुम्हें ये कहना चाह रहा था कि तुम्हारा मुर्गा बन चुका है। रेडियो मिर्ची पे।
4: गॉड, मैंने अपना बनवाने के लिए फोन दे दिया था।
3: हम तो किसी का ही बना देते हैं, आपके हस्बैंड से ज्यादा हमदर्दी हो गई, किसी दिन उनका ही बनाएंगे, फिलहाल आपका बन गया है। मेरे साथ प्यार से कहते एक बार, कुकड़ुकू। थैंक यू।
6: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।
7: जस ने सोचा था सिर्फ वाइफ क्यों, लंदन में एक गॉर्जियस गर्लफ्रेंड भी रख लूं। जस को लगा है जवानी तो इश्क होना है, पर जब पुराने रिश्ते नए सीक्रेट से टकराए तो एक लाए छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़े। एक लड़का, दो लव स्टोरीज और अनलिमिटेड केओस। है जवानी तो इश्क होना है। स्ट्रीम इट नाउ ओनली ऑन Z5। डाउनलोड द ऐप नाउ।
8: इट्स ऑल डाउन टू डोनी, इज़न्ट इट? 4 बॉल्स लेफ्ट, दे नीड 12 रन्स टू विन।
7: महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है ये सामने वाली टीम को कभी पता नहीं चला, लेकिन उसे पता है। सलमान खान अभी अपने फार्म हाउस में हॉर्स राइडिंग के बारे में सोच रहे हैं या
9: आर यू थिंकिंग ऑफ लाइक अ फ्लाइंग कार्पेट? आर यू थिंकिंग फ्लाइंग कार्पेट?
10: कैसे किया, सीरियसली कैसे किया ये?
7: उसे सब पता है। Ladies and gentlemen, your mind is about to get blown because number one mentalist from India, the Suhani Shah, is coming to Qatar for the very first time. Catch her live on 25th September at QNCC.
11: Early bird tickets out now. Get them at STT Snoo Noo. Book yours now.
7: The mentalist Suhani Shah live in

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: रात में कपड़े प्रेस करके बैग जमा के सारी तैयारी करके सोना, ये हमारी बचपन की आदत थी। और जब रात में ये सारे काम करने पड़ते थे ना, आधी नींदों में थके हुए होते थे फिर भी, क्योंकि अगले दिन स्कूल है, तो बहुत आलस आता था यार। मम्मा इतना बोल बोल के पुश कर करके हमसे काम करवाती थी ताकि अगली सुबह हम स्कूल जाने के लिए लेट ना हो जाए। लेकिन ये आदत ना आज बड़ी अच्छी लगती है।
2: आज की
1: Hi, this is me, सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। और बचपन की कुछ आदतें जो तब तो हमें लगता था कि बड़ी फोर्स्ड है, हम बड़े बेमन से किया करते थे, लेकिन आज लगता है कि यार अच्छा हुआ जो ये सब सीख गए, काम में आ रही है। उनमें से एक यही है, रात में सुबह की तैयारी करके रख लेना सारे कामों की। और उसमें से स्पेशली कपड़े प्रेस करने वाली जो आदत थी हमारी, ये बड़ी सही काम आ रही है यार आज के टाइम पर। मतलब मैं तो अब उन लोगों को भी बड़ा प्रेस करती हूँ जो मैं तो कर ही रही हूँ लेकिन खुद भी इस आदत को फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि काफी सारे लोग इस आदत को भूल भी जाते हैं। लेकिन आज भी जो लोग इस आदत पर अपना पूरा ध्यान फरमाते हैं वो मेरा ध्यान भी ले जाते हैं। और ऐसे लोगों को देखकर समझ में आता है, हाँ ये इंसान जो है ना, ये बड़ा डिसिप्लिन्ड है। So, जो कहां की चीज कहां जोड़ के हम इंसान की पर्सनालिटी ट्रेट निकाल लेते हैं कि ये इंसान डिसिप्लिन है क्योंकि ये रात में अपने कपड़े प्रेस करके सोता है। और हाँ, ये बात सच्ची है कि मुझे वो लड़की पसंद है जो रात में अपने सुबह की तैयारी कर लेते हैं। इनफैक्ट पता है, आज भी मेरे साथ ऐसा होता है कि अगली सुबह की जब तैयारी कर रही होती हूँ ना, रात में अपने कपड़े वपड़े प्रेस करके रख रही होती हूँ, तो ऐसा फील आ रहा होता है जैसे कि स्कूल की तैयारी कर रही हूँ। आज तक ये फील कभी नहीं आया है कि मैं बड़ी हो गई हूँ और मुझे ऑफिस जाने की या कहीं बाहर जाने की तैयारी करनी पड़ रही है। आज भी स्कूल वाला ही फील आ रहा होता है, जो फील शायद आपको भी समझ आए, जो सुबह भी आता है। अगर कभी ऐसा होता है कि हम अपने रूटीन से पहले सुबह सुबह उठ जाते हैं किसी काम के चलते, तो ऐसा लगता है जैसे स्कूल जाने के लिए उठे। यू कैन टेक द किड आउट ऑफ द स्कूल, लेकिन यू कैन नॉट टेक द स्कूल आउट ऑफ दैट किड, जो आज भी हमारे अंदर कहीं बसा हुआ है। यू ट्यून इन विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: गूगल आपकी सर्च हिस्ट्री जानता है, इंस्टाग्राम आपकी लाइक्स, नेटफ्लिक्स आपकी चॉइस, लेकिन सुहानीशा वो सब जानती है बिना किसी प्रॉम्प्ट, पासवर्ड या परमिशन के। एक्सपीरियंस द इम्पॉसिबल फॉर द फर्स्ट टाइम इंडियाज मोस्ट सेलिब्रेटेड मेंटलिस्ट सुहानीशा लाइव इन कतर ऑन 25th September एट QNCC।
1: Early bird tickets out now. Get them at STD Snoo Snoo. Book yours now.

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: आजकल जो हम हमेशा अपने साथ एक बॉटल रखते हैं कैरी करते हुए, हमें लगता है कि हम बॉलीवुड को कॉपी कर रहे हैं. नो वेज, ये आदत हमारे बचपन की है.
2: आज की बात 90s के साथ.
1: हाय, दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा. और ये आदत हमने स्कूल से सीखी है यार, जब रोज बॉटल भरकर ले जाना हमारे लिए लाजमी हुआ करता था. इनफैक्ट कभी कभी तो ऐसा लगता था कि यार ये बॉटल और कैरी करनी पड़ती है, क्योंकि वो लटकाने वाली बॉटल होती थी, कैरी करने वाली बॉटल नहीं हुआ करती थी. हमेशा एक बॉटल हमारे गले में लटकी रहती थी, कंधे पे लटकी रहती थी, या कैसे भी करके उसे हमें कैरी तो करना ही होता था. तब बड़ा जोर आता था, लेकिन अब लगता है कि यार ये जो स्किन के हाइड्रेशन के लिए आदत पड़ी है ना, ये बड़ी सही पड़ी है यार. हमें लग रहा होता है कि हमने बॉलीवुड से ये सारी चीजें सीखी हैं, लेकिन नहीं बाबा, हमने ये आदत जो है ये बचपन में ही सीख ली थी. टू कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड स्कूल में टीचर्स कब से कहा करती थी यार. और अब जो हमें ये बोझ नहीं लगता है ना कि हमें बॉटल भी कैरी करनी है, वो इसी वजह से, क्योंकि बचपन में हम इसके ऑलरेडी आदि और इत्यादि हो गए थे. बॉलीवुड ने सिर्फ और सिर्फ इन बॉटल्स को थोड़ा फैंसी कर दिया है, लेकिन ये जो आदत है ना, इसका क्रेडिट बॉलीवुड को नहीं दे सकते बॉस, बचपन को देना जरूरी है. यू ट्यून इन विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा. On Mirchi, it's hot.

0: हॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा
1: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: गुलशन देवैया कौन सी फिल्म को देखकर लगा था कि मुझे एक्टर बनना है, मैं भी ये कर सकता हूँ?
3: सत्या देखे तो उम्मीद जगी थी कि हम आ सकते हैं। मनोज जी को देखे लगा कि नहीं कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं।
2: ये तो सत्य है कि आप भी कर सकते हैं। दिस वॉज गुलशन देवैया ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
0: बॉलीवुड बोल्डा बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा
1: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
4: It's all down to Dhoni, isn't it? Four balls left, they need 12 runs to win.
5: महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है ये सामने वाली टीम को कभी पता नहीं चला, लेकिन उसे पता है। सलमान खान अभी अपने फार्म हाउस में हॉर्स राइडिंग के बारे में सोच रहे हैं या
6: आर यू थिंकिंग ऑफ लाइक अ फ्लाइंग कार्पेट? आर यू थिंकिंग फ्लाइंग कार्पेट?
7: कैसे किया, सीरियसली कैसे किया ये?
5: उसे सब पता है। Ladies and gentlemen, your mind is about to get blown because number one mentalist from India, the Suhani Shah, is coming to Qatar for the very first time. Catch her live on 25th September at QNCC.
8: Early bird tickets out now. Get them at STT Snoo Noo. Book yours now.

0: ये जादू नहीं है तो और क्या है यार, मतलब वाकई में छोटी छोटी रातें जो है वो लंबी हो जाती है, लेकिन ये जो छोटी रातें लंबी होती हैं ये सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत में नहीं होती है, ये एक्साइटमेंट में भी छोटी रातें जो है वो लंबी हो जाती हैं। क्योंकि क्या होता है ना कि जब हमें ट्रैवल करना होता है, अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट होती है ना, तो अगली सुबह के चक्कर में हम रात भर नहीं सो पा रहे होते हैं और वो रात जो है वो अपने आप लंबी हो जाती है। या तो एक्साइटमेंट होता है या तो एंजाइटी होती है, और मुझे तो कभी कभी दोनों ही होता है, और उस चक्कर में मेरी भी छोटी छोटी रातें लंबी हो जाती हैं। लोगों को गलत फहमी हो जाती है कि मुझे मोहब्बत है, लेकिन नहीं, आई एम नॉट कैचिंग फीलिंग्स, आई एम जस्ट अबाउट टू कैच अ फ्लाइट। दैट्स द रीजन कि मेरी छोटी रात लंबी हो गई है।
1: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
0: Hi, this is me, Sara, आपकी 90s की यादों का पिटारा। और अब मेरे यारा, मान ना मान करो गानों की पहचान, दो गानों के मिक्सेस को आपके लिए चला देती हूँ, आपको सुना देती हूँ, और आपको बताना होता है कि ये जो दो धुने आपने सुनी कौन से गानों की है। तो आज का जो मिक्स है वो है कुछ यूं।
2: They want them and not seven, y'all. They wanted to have coming with a new phone. Call them what you want, babe. I call it the funk, the G-funk, era. Yeah, check it out.
0: बस जी, अब आपको डीएम करना ऑन माय इंस्टाग्राम हैंडल विच इज मिर्ची सारा और बता देना है कि इन दो गानों के नाम क्या हैं। और स्टे ट्यून रहिएगा विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirchi.
1: Iskabala, uskabala, sakabala. Rambala. Burga, burga. La birba la burga. Mirchi, burga.
2: Hello.
3: Oh, madam, good evening.
2: Hi.
3: Bank se bolle ho na, hamari nahi scheme hai ye. Madam, taazi scheme hai, badhiya scheme hai. इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट बिल्कुल कम
2: है। सब्जी बेच रहे हैं या लोन के
3: लिए? पहले सब पहले सब्जी बेचता था।
2: अगर अगली बार फोन आ गए ना।
3: मैडम तमीज से बात करो वरना यहीं से चपेट मारूंगा सारे दांत बात कर दो।
2: हेलो
3: मैडम, अगर ये स्कीम लोगी तो धनिया साथ फ्री दे दूंगा
2: मारूंगी ना।
4: प्रीति, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। मुझे पहली बार ये एहसास हुआ कि लड़कियों से ज्यादा पंगे लेने नहीं चाहिए, आपने ऊपर पड़ जाती है यार। आप रेडियो मिर्ची में इतना गुस्सा क्यों कर रही हैं? आपका मुर्गा बन गया
3: मेरा, आपका तो मुर्गा बन गया है।
4: प्रीति, ये जो बीप बीप हो रहा था ये बीप हटा दूं मैं? एक बार दिल्ली को सुना दूं?
2: नहीं,
4: से सॉरी,
2: आई एम सॉरी नवीन, आई एम सॉरी।
4: प्यार से बोल दीजिए कोकड़ो को है।
2: कुकड़ू गो।
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट,
6: इट्स पटाक।
7: इट्स ऑल डाउन एंड डन, इजंट इट? फोर बॉल्स लेफ्ट, दे नीड 12 रन्स टू विन।
8: महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है ये सामने वाली टीम को कभी पता नहीं चला, लेकिन उसे पता है। सलमान खान अभी अपने फार्म हाउस में हॉर्स राइडिंग के बारे में सोच रहे हैं।
9: या आर यू थिंकिंग ऑफ लाइक अ फ्लाइंग कार्पेट? आर यू थिंकिंग अ फ्लाइंग कार्पेट?
10: कैसे किया? सीरियसली कैसे किया ये?
8: उसे सब पता है। Ladies and gentlemen, your mind is about to get blown because number one mentalist from India, the Suhani Shah, is coming to Qatar for the very first time. Catch her live on 25th September at QNCC.
11: Early bird tickets out now. Get them at STD Snoo Noo. Book yours now.

0: Midday Mohabbat with Zara. Only on Mirchi. It's hot.
1: नो एंट्री एक ऐसी फिल्म जिसका नाम तो नो एंट्री था लेकिन सबको इस फिल्म को देखने के लिए एंट्री चाहिए थी।
0: मिर्ची VCR।
1: Hi, this is me, सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। And well, ये फिल्म इतनी मजाकिया और इतनी मजेदार थी ना, मतलब जिंदगी में कुछ भी बवाल चल रहा हो, इस फिल्म को देखते देखते सबने अपनी हंसी निकाली और उस बवाल को उस हंसी में उड़ा दिया है। लेकिन आपको इस फिल्म में वो वाला सीन तो डेफिनेटली याद होगा जहाँ पर फरदीन खान, अनिल कपूर एंड सलमान खान एक ही क्लिप से लटक गए थे एक के बाद एक। ओरे बाप रे बाप, मतलब दिस सीन इज अ मिक्स ऑफ एंजाइटी एंड ह्यूमर। मुझे भी एंजाइटी हो रही थी इस चीज को लेकर कि ये कहीं गिर ना जाए यार, और ह्यूमर भी इतना था यार इस सीन के अंदर कि थोड़ी देर के लिए टेंशन लेने के बाद मैं हंसने लग जाया करती थी कि यार ये क्या ही कर रहे हैं। लेकिन बिहाइंड द सीन्स की बात ये है कि ये सीन जितना मजाकिया देखने में लग रहा था ना, उतना शूट करने में मजाकिया नहीं था, बिकॉज दिस वॉज एक्चुअली अ वेरी टफ सीन टू शूट, क्योंकि इनको वाकई में ये सीन एक क्लिप से लटकते हुए शूट करना पड़ रहा था एंड सेफ्टी को मद्देनजर रखते हुए रिग केबल्स अटैच करनी जरूरी थी बिकॉज वो जो टेरेन था वो बड़ा स्टीप था। अब ये सारे सीन्स शूट करने के बाद ये जब सीन निकल के आया तो भाई फुल पैसा वसूल था ये सीन। और एक मजे की बात सुनो, ये जो सीन जिस स्पॉट पे शूट हुआ था ना फुकेट में, जहां पर ये तीनों के तीनों एक क्लिप से लटके हुए थे, इस फिल्म के बाद और इस फिल्म की सक्सेस के बाद इस सीन का नाम ही नो एंट्री स्पॉट रख दिया गया था, अंटिल अ सुनामी वॉश दैट स्पॉट अवे। हाँ, वो स्पॉट कभी हुआ करता था मगर आज नहीं। मगर हाँ, इस स्पॉट को आज भी हम फिल्म में जरूर देख सकते हैं। यू ट्यून इन विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: गूगल आपकी सर्च हिस्ट्री जानता है, इंस्टाग्राम आपकी लाइक्स, नेटफ्लिक्स आपकी चॉइस, लेकिन सुहानी शाह वो सब जानती है बिना किसी प्रॉम्प्ट, पासवर्ड या परमिशन के। एक्सपीरियंस द इम्पॉसिबल फॉर द फर्स्ट टाइम, इंडियाज मोस्ट सेलिब्रेटेड मेंटलिस्ट सुहानी शाह लाइव इन कतर ऑन 25th सितंबर एट QNCC।
1: Early bird tickets out now. Get them at STD Snoo Noo. Book yours now.

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: सल्लू भाई के डोले तो बड़े हैं ही हैं, साथ ही साथ उनका दिल भी बहुत बड़ा है यार।
0: मिर्ची चैट रूम।
1: Hi, this is me, Sara, आपकी 90s की यादों का पिटारा। And जब No Entry the movie was being shot ना, at that time, Anil Kapoor of course was the main lead of the film, everybody knew. लेकिन फिर भी सलमान खान ने इस फिल्म को करने के लिए हाँ करी, because जब बोनी कपूर ने उनको ये स्क्रिप्ट दिखाई, तो सलमान खान को ये स्क्रिप्ट इतनी पसंद आई कि वो किसी ना किसी तरीके से इस फिल्म का हिस्सा बनना चाह रहे थे। और जबकि उनका रोल छोटा था, फिर भी उन्होंने अपने इस रोल को निभाने के लिए मुझसे शादी करोगी की शूट एंड नो एंट्री की शूट में बहुत जगल किया। मतलब कभी वो यहां होते थे, कभी वो उस सेट पे हुआ करते थे। एंड इन फैक्ट जो क्रू थी इस फिल्म की, वो भी हमेशा ऐसी रहती थी कि यार कभी भी सल्लू भाई आ सकते हैं अपनी शूट करने के लिए, अपनी शूट कंप्लीट करने के लिए, उनको जहां मौका मिलेगा वो आ जाएंगे। तो वो हमेशा स्टैंड बाय पे रहा करते थे। इन फैक्ट सलमान खान वॉज द वन, जब नो एंट्री की शूट के डिलेज हो रहे थे, तो उन्होंने बोनी कपूर को कहा कि यार पैसों के बारे में बिल्कुल भी फिक्र मत करो, तुम सिर्फ और सिर्फ अपना काम और अपनी फिल्म खत्म करने के बारे में बात करो, और पैसा वैसा जो भी है ना वो हम देख लेंगे। यानी कि इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए जो फाइनेंशियल बैकअप की जरूरत थी, वो उस वक्त सलमान खान ने बोनी कपूर को जरूर दिया था। वहीं अगर बात की जाए फरदीन खान की, तो ये बड़ी मजेदार वाली चीज है यार। मतलब फरदीन खान को कास्ट तो कर लिया था मूवी के लिए, लेकिन जब इनिशियल शूट्स हुए तो अनीस बाजमी को समझ में आ गया था कि यार फरदीन खान की कॉमिक टाइमिंग जो है ना वो थोड़ी डिलेड है, उनके रिएक्शंस थोड़े लेट आ रहे हैं, क्योंकि ये कॉमेडी एक्टर नहीं है। चलो कोई बात नहीं, फरदीन खान को अनीस बाजमी ने इतना स्पेस दे दिया कि उन्होंने उनके कैरेक्टर को ही उस हिसाब से डिजाइन कर दिया, ताकि फरदीन खान की एक्टिंग के साथ उनके कैरेक्टर के रिएक्शंस जो हैं वो ट्यून इन हो पाए। एंड जो फरदीन खान का कैरेक्टर ऑन स्क्रीन ऐसा दिखाया गया है ना कि स्लो है और स्लो रिएक्शंस देता है, वो बेसिकली उनकी एक्टिंग के टोन से एडजस्ट करते हुए उनके कैरेक्टर को बना दिया गया था। इसे कहते हैं अकल। रिकास्ट करने से तो यही अच्छा था कि कैरेक्टर को ही कास्ट के अकॉर्डिंग जो है वो ट्यून कर दिया जाए। और इसी के चलते फरदीन खान की कॉमेडी फिल्मों में भी दुकान खुल गई यार। यू ट्यून इन विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: Hollywood, Bollywood, Bolda.
1: Only on Mirchi. It's hot.
2: One of my favorite things to do is Rajkumar Rao ke saath mein filmi quiz khelna.
3: Aapko fill in the blanks karna hai. Gangs of?
4: Possible.
3: Vaastav mein Sanjay Dutt ne kis cheez ki gaadi lagayi thi?
5: Aubaji.
3: Shabash. Don ko kitne mulk ki police pakadna chahti hai?
4: 11.
3: Goli maar bheje mein bheja?
5: Chor karta hai.
3: Shabash. लगे रहो मुन्ना भाई में वो किस फिलॉसफी से
5: गांधीयन
3: सरकार में अभिषेक बच्चन के भाई का रोल किसने निभाया
5: पीके मेनन
3: था दम
2: इस आदमी से कोई नहीं जीत सकता आदमी का नाम राजकुमार राव रेडियो स्टेशन का मिर्ची इट्स हॉट
0: बॉलीवुड बोल्डाल बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डाल
1: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
6: इट्स ऑल डाउन टू डोनी इज़न्ट इट फोर बॉल्स लेफ्ट दे नीड 12 रन्स टू विन
7: महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है ये सामने वाली टीम को कभी पता नहीं चला लेकिन उसे पता है सलमान खान अभी अपने फार्म हाउस में हॉर्स राइडिंग के बारे में सोच रहे हैं या
8: आर यू थिंकिंग ऑफ लाइक अ फ्लाइंग कार्पेट आर यू थिंकिंग फ्लाइंग कार्पेट
9: कैसे किया सीरियसली कैसे किया ये
7: उसे सब पता है Ladies and gentlemen, your mind is about to get blown because number one mentalist from India, the Suhani Shah, is coming to Qatar for the very first time. Catch her live on 25th September at QNCC.
10: Early bird tickets out now. Get them at STD Snoo Noo. Book yours now.

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: बिपाशा बसु जो नो एंट्री में इतना छा गई थी, क्या आपको पता है वो नो एंट्री में होने ही नहीं वाली थी।
0: मिर्ची फिल्मी गुल्लक।
1: Hi, this is me, Sara, आपकी 90s की यादों का पिटारा। And well, बिपाशा बसु का जो कैरेक्टर था, that was supposed to be played by प्रियंका चोपड़ा। लेकिन फिर हुआ ये कि प्रियंका चोपड़ा को बैकआउट करना पड़ गया, क्योंकि वो मुझसे शादी करोगी की शूट में बिजी थी और नो एंट्री की शूट पे नहीं आ पा रही थी। तो उन्होंने जो एडवांस भी लिया था वो भी उनको वापस करना पड़ गया था। लेकिन बिपाशा बसु की जैसे ही एंट्री हुई, एक्चुअली हुआ ये कि इतनी लास्ट मिनट एंट्री हुई ना कि वो एक वेकेशन से लौटी थी और उन्होंने वजन बढ़ा लिया था। अब ये जो कैरेक्टर उनको प्ले करना था वो तो हम सबको ही पता है कि बड़ा हॉट एंड सेक्सी कैरेक्टर था। इनफैक्ट इन एन इंटरव्यू कहीं जॉन अब्राहम को मैंने ये भी बोलते हुए सुना था कि बिपाशा जो थी वो बीमार भी पड़ गई थी, जिसकी वजह से उनके वर्कआउट्स और डाइट्स जो हैं वो पूरी तरीके से कंप्लीट ही नहीं हो पा रहे थे। यानी कि हुआ था सोने पे अभागा। लेकिन फिर भी इस कैरेक्टर को प्ले करने के लिए बिपाशा बसु ने पूरी मेहनत करी और पूरी कोशिश करी कि वो कामयाब हो पाए। एंड इनफैक्ट वो कामयाब हुई भी। आज भी हमें बिपाशा बसु का वो कैरेक्टर इन नो एंट्री स्टिल याद है। यू ट्यून इन विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: Milci. Escabana, puscabana, sacabana. Rabana. Burga, burga. La virtua la burga.
1: Milci, burga. Hello.
2: Hello, Mr. Whipple, ma'am. से बोल रहा हूँ आपका कुछ दिन के लिए हमें इनबॉक्स चाहिए आपके मोबाइल का इनबॉक्स तो मैं अपना आदमी भेज दूँ या आप यहाँ पे आके जमा करा देंगे
1: इनबॉक्स चाहिए इनबॉक्स कैसा मतलब
2: मैं आपको वही समझा रहा हूँ एक्चुअली हमारी कंपनी अपना सर्वर चेंज कर रही है तो सर्वर में जो डेटा होता है अब वो सर्वर हटाएंगे तो सारा डेटा हमें कहीं तो रखना पड़ेगा ना तो हम आपके इनबॉक्स में रखेंगे कुछ दिन तक वो डेटा अब वो जब हमारा सर्वर नया लग जाएगा तो हम आपको इनबॉक्स आपका वापस कर देंगे तो मैं यहाँ से कंप्यूटर में फीड कर रहा हूँ आपका इनबॉक्स अपनी तरफ खींच रहा हूँ ठीक है सर
1: नहीं नहीं बात तो सुनो भाई साहब
2: हाँ बताइए
1: नहीं तो जो इनबॉक्स है मेरा वो तो मेरा अपने फोन मेमोरी में है ना
2: नहीं वो हम खींच लेंगे आप उसकी फिक्र मत करिए
1: नहीं तो आप कैसे उसको अपलोड करेंगे
2: मैं कुछ भी करूँ यार आप ज्यादा बहस करते क्यों एक तो सर्वर वो उतार रहे हैं आप मुझसे बहस कर रहे हैं
1: बहस वाली बात नहीं है मतलब मैं खुद मालूम तो करूँ ना अगर आप मेरे से कोई बात पूछ रहे हैं तो कम
2: बिल्कुल,
1: से कम मुझे
2: बिल्कुल,
1: मालूम
2: से, होना बिल्कुल सही कह रहे हैं
1: जा कहाँ रहा है
2: नहीं वो जा कहाँ रहा है जा यहीं रहा है आपकी कंपनी में जा रहा है और मैं आपसे सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आपका कुछ दिन के लिए हमें इनबॉक्स चाहिए अब उसमें आपको टेंशन क्या है हम आपके मैसेजेस रखेंगे उसको पढ़ेंगे सही से
1: मेरे प्राइवेट एसएमएस है उसमें मैं ऐसे किस तरह से दे दूँ उसको
2: वैसे आप बुरा मत मानना आपके ये मना करने से मुझे लग रहा है कि आप मैंने उसमें सारे नॉन वेज मैसेजेस रखे हुए हैं उसमें
1: यार क्या बात कर रहा हूँ मतलब
2: नॉन वेज एसएमएस क्यों रखे हुए हैं यार आपने उसमें बेकार की बातें कर रहे हैं आप कंपनी को जरूरत है क्या बदतमीजी कर रहे हैं आप उसपे मैं तो मुझे सिर्फ इनबॉक्स नहीं चाहिए मेरी बात सुनिए
1: चल
2: नहीं नहीं आपने फॉर्म भरा था सेकंड पेज पे मेरे हाथ में है रुकिए रुकिए सेकंड पेज पे लिखा हुआ है कि कंपनी आपका इनबॉक्स कभी भी ले सकती है उसमें कस्टमर को कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं होगा यहाँ तक कि आपके घर की बाल्टी आपके बर्तन आपके कपड़े तक उतरवा सकती है
1: बिल्कुल
2: क्या बात कर रहे हैं मेरी बात सुनिए आप पूरी हेलो
1: हेलो
2: हेलो भाई साहब आपने फोन काट दिया यार इनबॉक्स लेने की बात कर रहा था मैं आप फोन काट रहे हैं यार
1: आपको से फोन मत करियो मैं इनबॉक्स बना दूंगा दिमाग खराब कर दिया
2: क्या क्या क्या क्या यार बात सुनिए आप मेरी मैं आपसे सिर्फ एक बात एक विपुल मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ कोई तुम्हारा इनबॉक्स नहीं चाहिए मैंने मुर्गा बनाया है तुम्हारा तुम रेडियो मिर्ची पे हो
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
4: इट्स ऑल डाउन टू डोनी इज़न्ट इट फोर बॉल्स लेफ्ट दे नीड 12 रन्स टू विन
5: महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है ये सामने वाली टीम को कभी पता नहीं चला लेकिन उसे पता है सलमान खान अभी अपने फार्म हाउस में हॉर्स राइडिंग के बारे में सोच रहे हैं या
6: आर यू थिंकिंग ऑफ लाइक अ फ्लाइंग कार्पेट आर यू थिंकिंग फ्लाइंग कार्पेट
7: कैसे किया सीरियसली कैसे किया ये
5: उसे सब पता है लेडीज एंड जेंटलमैन योर माइंड इज अबाउट टू गेट ब्लोन बिकॉज नंबर वन मेंटलिस्ट फ्रॉम इंडिया द सुहानी शाह इज कमिंग टू कतर फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम कैच हर लाइव ऑन 25th सितंबर एट QNCC
8: Early bird tickets out now. Get them at STT Snoo Snoo. Book yours now.

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: बचपन से हम इस गाने को गुनगुनाते आए हैं और आज इसकी धुन की सच्चाई सामने आ गई है.
2: मिर्ची टग्स ऑफ फिल्मिस्तान.
1: वेल, त्रिदेव का ये गाना.

लेकिन नहीं, ये एक्चुअली दो अलग अलग जगहों से उठाई हुई धुनें हैं। एक तो जो मैंने आपको सुनाई वो त्रिदेव की थी, एंड ये जो म्यूजिक जहां से इंस्पायर्ड है, रादर कॉपीड है, इज मायमी साउंड मशीन का द रिदम इज गोना गेट यू। यार वैसे तिरछी टोपी वाले ने तो शौक से एज अ फैशन स्टेटमेंट ये टोपी पहनी थी, लेकिन म्यूजिक डायरेक्टर विजू शाह ने तो पूरी ऑडियंस को ही टोपी पहना दी। वाह, स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

के म्यूजिक डायरेक्टर हैं बीजू शाह हैज बीन कॉपीड फ्रॉम दिस गाना. अब आप भी सोच रहे होगे कि क्या यार सारा दोनों धुने एक के बाद एक बजा दी.

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: लकी अली एंड सुनिधि चौहान की आवाज में दिस गाना इज फ्रॉम द फिल्म सुर, जो कि कैसेट के साइड बी का चौथा गाना है।
0: मिर्ची 90s कैसेट।
1: आ भी जा, ये गाना मुझे बहुत खूबसूरत लगता है यार। हालांकि गाना थोड़ा सैड है, मेलैंकली है इस गाने के अंदर, लेकिन ये गाना जो है ये पॉजिटिविटी की बात कर रहा होता है, क्योंकि इस गाने में यही गाया गया है कि आ भी जा ए सुबह आ भी जा, और रात को कर विदा दिल रुबा आ भी जा। यानी कि हम जो वो टनल के एंड में एक लाइट ढूंढ रहे होते हैं ना, दिस गाना इज समवेयर अराउंड दैट फैक्ट ओनली। अब ये सुबह ना किसी के लिए मोहब्बत हो सकती है, ये सुबह किसी के लिए कोई अपॉर्चुनिटी हो सकती है, ये सुबह किसी के लिए सिर्फ और सिर्फ जीने की एक वजह हो सकती है। ये डिपेंड करता है कि इंसान कौन सी सिचुएशन में, और उस सिचुएशन के हिसाब से उस इंसान के लिए ये सुबह क्या मायने रखती है। इस गाने में हालांकि मोहब्बत के बारे में बात की गई है, और तभी ये कहा गया है कि मैं हूँ गगन तू है जमीन, अधूरी सी मेरे बिना, रात को कर विदा दिल रुबा भी जा। लेकिन वही वाली बात है कि हम लाइफ में अभी फिलहाल किस चीज को रोमांटिसाइज कर रहे हैं, क्या ऐसी चीज है जो हमें चाहिए और तहे दिल से हम उस चीज के लिए दुआएं कर रहे हैं। मेरी दुआ भी आपके लिए है कि आपकी वो दुआ कबूल हो जाए और जाते जाते यही गाना हो जाए। क्या बोलते हो, ये गाना आपके लिए लगाती भी जा रही हूँ। एंजॉय द ट्रैक, एंड मैं अब कह देती हूँ कि हम है रही प्यार के, लेकिन फिर मिलेंगे चलते चलते। बाकी आप अपना अच्छा खासा ख्याल रखिएगा, और यहाँ के अलावा मिल जाइएगा मुझे ऑन माई इंस्टाग्राम हैंडल विच इज मिर्ची सारा। Stay tuned to Mirchi, 'cause it's hot.

0: Bollywood, Bollywood, Bolda. Only on Mirchi, it's hot.
1: रणबीर कपूर, जब भी आप एयरपोर्ट से निकल रहे होते हैं या गाड़ी में घुस रहे होते हैं, एक कैप या हैट हमेशा आपके सर पे होती है। व्हाट इज दिस ऑब्सेशन विद अ हैट?
2: दिस हैट हैज बीन अटैच्ड विद मी फॉर लॉन्ग टाइम। आई एम अ हैट गाय। आई फील इट्स माय सिक्योरिटी ब्लैंकेट और अ बैड हैट व्हिच आई एम नॉट टू शो हाउ बैड माय हेयर लुकिंग राइट नाउ, बट आई लाइक हैट्स। इट काइंड ऑफ मेक्स मी सिक्योर, इट मेक्स मी हैप्पी।
1: रणबीर कपूर जो आपको खुश करे वो हमें खुश करे। कल से मैं भी हैट पहन के निकलूंगी। यू आर लिसनिंग टू मिर्ची, इट्स हैट ओ हॉट।
0: बॉलीवुड बोल्डा, Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bolda.
3: Only on Mirchi, it's hot.
4: It's all down to Dhoni, isn't it? Four balls left, they need 12 runs to win.
5: महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है ये सामने वाली टीम को कभी पता नहीं चला, लेकिन उसे पता है। सलमान खान अभी अपने फार्म हाउस में हॉर्स राइडिंग के बारे में सोच रहे हैं या
6: आर यू थिंकिंग ऑफ लाइक अ फ्लाइंग कार्पेट? आर यू थिंकिंग फ्लाइंग कार्पेट?
7: कैसे किया, सीरियसली कैसे किया ये?
5: उसे सब पता है। Ladies and gentlemen, your mind is about to get blown because number one mentalist from India, the Suhani Shah, is coming to Qatar for the very first time. Catch her live on 25th September at QNCC.
8: Early bird tickets out now. Get them at STT Snoo Noo. Book yours now.

0: हेलो, मिर्ची हेल्पलाइन।
1: यस ऑफ कोर्स, मिर्ची हेल्पलाइन बोलिए।
0: मेरा बॉस एआई पे ज्ञान देता रहता है और मुझे डांटता रहता है कि मुझे एआई से रिप्लेस कर देगा, क्या करूं?
1: अरे तू सिंपल है ना, उसको बोल तुझे रिप्लेस कर देगा तो डांटेगा किसे, एआई को।
2: साले का खोपड़ी तोड़, खोपड़ी तोड़ साले।

0: 89.6 मिर्ची वन, इट्स हॉट।
1: मिर्ची की स्टूडियो क्लॉक में टाइम हो गया है शाम के 4। मस्त मौला गौरव के साथ शुरू होता है शाम शानदार।
2: In association with Naseeb Medical Center, Qatar's largest private medical center.

कसम उड़ान छल्ले की आज ऐसी शायरी सुनाऊंगा ना, आप लोगों का दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। हाँ जी, आ गया आपका मस्त मौला गौरव सुनाने एक शानदार शायरी कि वो गर्मी में भी सजा देता है, वो सर्दी में भी सजा देता है, वो गर्मी में भी सजा देता है, वो सर्दी में भी सजा देता है। टंकी का पानी है जनाब, हर मौसम में दगा देता है। आए हाय, अगर आपको पसंद आई तो पत्थर फेंक के मारो, इस मजनू को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि गर्मी ने वैसे ही मेरा दिमाग खराब कर रखा है। सच बताएं तो आज ये दगा मुझे मिला है। आज अपने ऑफिस के जब वॉशरूम में गया दोपहर के टाइम, मुझे पता ही नहीं था कि किसी ने पानी खोलता हुआ अंदर रख दिया है, स्प्रे चलाया तो पता लगा। फिलहाल इतना ही कहूंगा, बड़ा सोच समझ के आगे बढ़ते रहो जिंदगी में, कभी कभी ये जेट स्प्रे से भी जिंदगी की सबसे बड़ी दगा मिल जाती है। फिलहाल शुरुआत करते हैं शाम शानदार की। बातों की दुकान लेकर आ गया हूं और अगले 4 घंटे क्या क्या कहां कहां कैसे कैसे चल रहा है और कौन कौन सी नई चीजें आप बिंज वॉच कर सकते हो इस वीकेंड, यानी कि बैठ के सीरीज देख सकते हो, ये सब कुछ बताऊंगा ओनली ऑन 89.6 मिर्ची वन। और कितना खजूर खागे लोग, ये तो यहां लेके आना ही अगली बार। मिर्ची इट्स ऑट

0: Mirchi. Iskabana, uskabana, sakabana. Rabbana. Burga, burga. La virtual burga. Mirchi, burga.
1: Hello.
2: Hi. ये पे आपकी फ्री कॉल है। अगर आप अकेले बैठे हुए हैं और चाहते हैं किसी को अपना बनाना, किसी से अभी बात करना, तो हैश दबाइए। कृपया लाइन होल्ड करें, हम आपकी कॉल उस तक पहुंचा रहे हैं जिससे आप बात करना चाहते हैं।
3: हेलो।
1: हेलो,
3: कौन बोल रही हैं?
1: आप कौन बोल रही हैं?
3: बोल नहीं रही हूँ, मैं बोल रहा हूँ यार, मेरी लड़की से बात करानी थी, फोन आया था मेरे पास।
1: तो भाई मेरे पास भी तो फोन आया था।
3: तो यार आप कहाँ से बीच में आ गए? वो कह रहे थे लाइफ पार्टनर, मैं लड़की से बात करना चाह रहा हूँ।
1: टाइम पे दोनों को भी, आपको भी करा होगा फोन, उन्होंने मुझे भी करा होगा, तो मैंने भी मिला दिया।
3: मैं क्या पागल हूँ यार, मैं आपसे बात करना चाहूंगा, मुझे भी तो टाइम पास करना है, लड़की का इंतजार कर रहा था मैं यार। मेरे पास फोन आया था, आप अपनी चला रहे हैं, मैं आपसे झूठ बोल रहा हूँ क्या?
1: ये तो वहाँ से मेरे पास,
3: अरे यार
1: जैसे आपके पास आया कि अभी अगर आप खाली बैठे
3: हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है।
2: हाय, आप दोनों की कॉल गलती से मिल गई है, कृपया लाइन होल्ड रखें, आप दोनों को अपने अपने पार्टनर तक पहुंचा दिया जाएगा।
3: हेलो।
1: हेलो,
3: कौन बोल रही है? अरे भाई यार, मैं लड़की के चक्कर में यार, कहां से आ रहे हो यार बीच में? मैं मेरी लाइन,
1: भाई ये नंबर क्या है, तू बता, तू क्यों लाइन में आ रहा है?
3: मैं कहां से लाइन पे आ रहा हूँ यार, तू लाइन में आ रहा है? मैं लाइन में आ रहा हूँ, अच्छा एक घंटे से मैं एक लड़की से बात करने के लिए चाह रहा हूँ यार, तू मुझ पर चिल्ला रहा है, मेरे पास कॉल आई है यहाँ पे। हाँ तो दो मिनट रुक, तू कर ले, तेरा कुछ जा रहा
1: है?
3: बदतमीजी मत कर, तू बड़ा शरीफ आदमी है जो यहाँ पे इस लाइन में आया हुआ है, इस सर्विस में।
2: हाय, कृपया करके लड़ाई बंद करें, अब आपकी लास्ट फाइनल कॉल, हम उस लड़की तक पहुँचा रहे हैं, लेकिन लाइन तक पहुँचने के लिए आप कहिए मेरे साथ कुकड़ू कू। सर मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, आप रेडियो मिर्ची पे हैं, दुनिया आपको सुन रही है, कम से कम इतनी तमीज होनी चाहिए यार, आप लड़की से बात करना चाह रहे हैं, किस तरह का टाइम पास करना चाह रहे थे?
1: तो अब वो आ रहा है, मुझे लग रहा भाई मुझे भी टाइम पास करना था, मुझे भाई मालूम था ये।
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
4: कभी प्यार का एहसास और कभी खुद को दिया हुआ एक खूबसूरत तोहफा। फेस्टिवल ऑफ डायमंड्स इज बैक एट तनिष्क। रोज पहनने के लिए स्टाइलिश डिजाइन्स हो या किसी खास मौके के लिए स्टनिंग डायमंड ज्वेलरी, हर पीस में है तनिष्क का भरोसा और बेहतरीन क्राफ्ट्समैनशिप। यही नहीं, गेट अ फ्री गोल्ड कॉइन ऑन एवरी 3,000 रियाल्स स्पेंट ऑन डायमंड परचेसेस। तो आज ही विजिट करें तनिष्क एट लुलु हाइपरमार्केट, ई रिंग रोड एंड दोहा फेस्टिवल सिटी टुडे। TNC supply.
5: It's all down to Dhoni, isn't it? Four balls left. They need 12 runs to win.
6: महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है ये सामने वाली टीम को कभी पता नहीं चला, लेकिन उसे पता है। सलमान खान अभी अपने फार्म हाउस में हॉर्स राइडिंग के बारे में सोच रहे हैं या
7: आर यू थिंकिंग ऑफ लाइक अ फ्लाइंग कारपेट? आर यू थिंकिंग फ्लाइंग कारपेट?
8: कैसे किया, सीरियसली कैसे किया ये?
6: उसे सब पता है। Ladies and gentlemen, your mind is about to get blown because number one mentalist from India, the Suhani Shah, is coming to Qatar for the very first time. Catch her live on 25th September at QNCC.
9: Early bird tickets out now. Get them at STD Snoo Noo. Book yours now.
6: The mentalist Suhani Shah live.

अभी भी सब लोग डेट फेस्टिवल में ही चले गए थे। 25th ऑफ जुलाई से शुरू हुआ 11th लोकल डेट फेस्टिवल, जो लेकर आए थे मिनिस्ट्री ऑफ म्युनिसिपैलिटी और सुख वाकिफ के एक साथ आने पर यह शुरू हुआ। 25 जुलाई से 10 अगस्त के बीच हमारे कतर में जबरदस्त अटेंडेंस लगी है, 110,000 विजिटर पहुंचे हैं। और सिर्फ पहुंचे हैं और खाली हाथ नहीं लौटे हैं, कुछ खरीद के लौटे हैं। तभी तो 183,268 किलोग्राम यानी कि लगभग 183,268 किलो खजूर खरीद लिए गए। और सबसे ज्यादा बिकी खलास खजूर। हाँ जी, इसके बाद बात करें तो खुनेजी, सीशी, बरही, ये सब बिकी। लेकिन क्या जबरदस्त तरीके की सेल थी एंड भीड़ ने इस बार पुराने सारे रिकॉर्ड को तोड़ दिया। ये बता रहा है कि भले ही कुछ लोग प्लान करते हैं कि समर वेकेशन आएंगे तो हम लोग अपने घर जाएंगे, नानी के घर, दादी के हाउस, लेकिन कुछ लोग प्लान करते हैं कहीं नहीं जाएंगे, ईस्टर्न स्क्वायर सुख वाकिफ में हर दिन बिताएंगे। यही तो बात है सर, कतर की विरासत को लेकर, कतर के कल्चर को लेकर एक बाजार जो सबकी पहली चॉइस होता है वो है सुख वाकिफ। और वहां पर लगा ये 11th लोकल डेट फेस्टिवल का नंबर बता रहा है कि फेस्टिवल किसी भी चीज का हो, लोग उमड़ पड़ते हैं और झूम कर खरीदारी करते हैं और सुख वाकिफ की गलियों में खुद को घुमा आते हैं। फिलहाल इसी उम्मीद के साथ कि अब अगला फेस्टिवल यहां कौन सा आ रहा है, आगे बढ़ेंगे, मस्मौला गौरव इंतजार करेगा। और आप जो खजूर खरीद कर आए उसमें से थोड़ा हिस्सा हमारा भी रखिए, हम आपसे अच्छी अच्छी बातें करते हैं, हम खजूर करते। 89.6 मिर्ची 1 हबीबी हरारा कतीर, इट्स हॉट।

0: वर्ल्ड चेस चैंपियन यानी कि प्रेजेंटली वर्ल्ड चेस का चैंपियन गुकेश, अगर कोई उनका दिमाग पढ़ ले तो कैसा होगा? मस्त मौला गौरव। अच्छा हुआ सुहानी शाह चेस नहीं खेलती, नहीं तो गुकेश कभी उनसे जीत नहीं पाता, क्योंकि उन्होंने गुकेश के दिमाग को पढ़ लिया था। एंड ये कैसे हुआ, आइए सुनते हैं।
1: इमेजिन यू सिटिंग एंड अक्रॉस यू इज अ चेस प्लेयर, हूएवर यू वांट, यू कैन सी द पोजीशन ऑन द चेस बोर्ड एंड थिंक ऑफ द मूव, जस्ट थिंक ऑफ what piece are you picking up, say this piece in your mind, like if it is a pawn for example you'll just say pawn, if it's a king you'll say king, whatever it is just say. He's not even blinking, just think of the piece and the square. Piece I know, I've got it, I'm trying to get the square right. Knight, are you thinking of the knight? Knight h,
2: yes.
1: Knight h5,
2: yeah.
0: My god. No doubt, उन्होंने गुकेश के दिमाग में उन्होंने कौन सी चाल चली थी ये तक गैस कर लिया। ये होती है मेंटलिस्ट की असली कामयाबी। एंड द मेंटलिस्ट सुहानी शाह आ रही है अपने कतर में, फर्स्ट टाइम एवर प्रेजेंटेड बाय आईपे, बी अ पार्ट ऑफ दिस इवनिंग, 25 सितंबर को होने वाला है। एंड बड़ी बात यह है कि इसमें थोड़े और चार चांद लग जाएंगे। जब डेब्यू किया है जिसने बादशाह के साथ, वो सिंगर यहां पर हमारे साथ होगा, बन जा तू मेरी बन जा बन। एंड इसके अलावा उनके साथ आशी, ये दोनों के दोनों परफॉर्म कर रहे होंगे। एंड साथ ही साथ सुहानी अपने स्ट्रेंज एक्ट से हम सबके दिमाग को घुमा रही होंगी। जल्दी से अपनी टिकट्स बुक कर लो, एस सिटी जो कि हमारी टिकटिंग पार्टनर है, जितनी जल्दी हो सके स्नूज पे जाकर एस सिटी पर अपनी टिकट्स बुक करो एट डिस्काउंटेड प्राइसेस, क्योंकि अभी अर्ली बर्ड ऑफर चल रहा है। एंड जो गुकेश के साथ हुआ, क्या बताओ आपके साथ हो जाए, आपका भी दिमाग एकदम से चक्कर खा जाए। मिर्ची इट्स हॉट।

0: check. Hey yo, this one is for all the little rock stars.
1: Vacation over हुआ है, अब जाना होगा school. Late morning उठने का बंद होगा rule. Bags on your shoulders, energy रखना full. क्योंकि मिर्ची लेके आ रहा है party super cool. Set your dreams, set your goals, confidence का tool. अब time आ गया है, सबको जाना होगा school. So join करो ये party.

0: Presented by Baladna Milk Laban Yogurt. Experience the fresh, creamy taste that Qatar loves. Refreshing every moment with every sip and spoon. Powered by iPay.
1: Laya iPay. Best actions reads. Bejo khushiyan paise dono hi ghar pe.
0: Entertainment partner Z5. Double the love, double the trouble. Varun Dhawan brings extra plot twist and extra drama in Hai Jawani To Ishq Hona Hai. Stream it now, only on Z5. Download the app now.
2: Pizza partner Papa John's. Enjoy double delight offer.
0: Two small pizzas at 44, two medium pizzas 66 and two large pizzas at 99 riyals. Papa John's. Better ingredients, better pizza. Smile partner Naseem Dental Center. Her smile hope perfect. Sif Naseem Dental ke saath. Visit kare Muntaza ya Azizia. Your trusted smile partner. Adventure Park Partner Jungle Zone. Double the fun, half the price at Jungle Zone Hyatt Plaza. Enjoy 50% off on your favorite rides and games every day until 4 PM. Don't miss out. जस ने सोचा था सिर्फ वाइफ क्यों, लंदन में एक गॉर्जियस गर्लफ्रेंड भी रख लूं। जस को लगा है जवानी तो इश्क होना है, पर जब पुराने रिश्ते नए सीक्रेट से टकराए तो एक लाई छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़े। एक लड़का, दो लव स्टोरीज और अनलिमिटेड केओस। है जवानी तो इश्क होना है। स्ट्रीम इट नाउ ओनली ऑन Z5। डाउनलोड द ऐप नाउ। गूगल आपकी सर्च हिस्ट्री जानता है, इंस्टाग्राम आपकी लाइक्स, नेटफ्लिक्स आपकी चॉइस, लेकिन सुहानी शाह वो सब जानती है बिना किसी प्रॉम्प्ट, पासवर्ड या परमिशन के। एक्सपीरियंस द इम्पॉसिबल फॉर द फर्स्ट टाइम। इंडियाज मोस्ट सेलिब्रेटेड मेंटलिस्ट सुहानी शाह लाइव इन कतर ऑन 25th सितंबर एट QNCC।
3: अर्ली बर्ड टिकट्स आउट नाउ, गेट देम एट STD Snoo Noo। बुक योर्स नाउ।
0: द मेंटलिस्ट सुहानी शाह।

0: भाई गाड़ी का एसी ना मुझे अभी ना -2 डिग्री वाली फीलिंग देता है। और मैं गाड़ी में बैठते ही ऐसा फील करता हूँ जैसे मैं कुल्लू मनाली की वादियों में घूम रहा हूँ, क्योंकि ना फील करोगे तो ही होगा। हाँ जी, क्योंकि गर्मी और बेइज्जती जितनी ज्यादा महसूस करोगे उतनी ज्यादा लगेगी।
1: नाम तो जानते हो मेरा, तापमान सलमान।
2: वेदर अपडेट।
0: तो इसलिए हम ज्यादा फील ही नहीं करते, हम बस यही सोचते हैं मौसम बहुत अच्छा चल रहा है। दिन का मैक्सिमम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस पहुंचा और दिन का मिनिमम अराउंड 33 आएगा। ह्यूमिडिटी उसमें आग में घी झोंकने का काम आज कम कर रही है, 25% है। वहीं हवाओं की रफ्तार की बात करें 16 किलोमीटर के आसपास चलती, बिल्कुल किसी काम की नहीं है हवाएं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये ह्यूमिडिटी जब शाम को बढ़ती है तो हालत खराब हो जाती है। लेकिन घबराना नहीं है, पानी पी के बॉडी को हाइड्रेट रखना है और महसूस ये करना है कि आप गाड़ी में बैठ रहे तो कुल्लू मनाली की वादियों में सफर कर रहे हैं और गाड़ी का जो एसी है वो आपको -2 डिग्री वाली स्ट्रॉन्ग विंड के साथ बेहतरीन हवा दे रहा है। बस सोचते रहो और एक दिन अच्छा दिन आ ही जाएगा। 89.6 मिर्ची वन इट्स हॉट।

0: Hollywood, Bollywood, bold eye. Only on Mirchi. It's hot.
1: नवाजुद्दीन सिद्दीकी, अगर आपको किसी को ट्रोल करना होता तो कैसे करते?
2: मैं करूँ?
3: आप करोगे?
2: नहीं, मैं करवाता मतलब मेरा होता है
3: तो वो तो पता है मेरा बस चलता है एक-एक को घुसन मार के आती हूँ
2: माय फ्रेंड हाउ आर यू माय फ्रेंड
1: ये थे नवाजुद्दीन सिद्दीकी ऑन मिर्ची इट्स हॉट
0: बॉलीवुड बोल्ड आई बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्ड आई ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
4: अरे यार, इतना सारा डेटा और कॉल्स कैसे मिल गया रिचार्ज में?
5: क्योंकि मैंने रिचार्ज किया ओरेडो के योर स्पेशल ऑफर से।
4: योर स्पेशल ऑफर?
5: हाँ, ये रिचार्ज मेरे हाला नंबर के लिए स्पेशली बना हुआ ऑफर है। ज्यादा वैल्यू और वो बेनिफिट्स जो मुझे एक्चुअली चाहिए।
4: ये तो मेरे नॉर्मल रिचार्ज से काफी बेटर लग रहा है।
5: बिल्कुल, योर स्पेशल ऑफर मेरे लिए सबसे अच्छा रिचार्ज ऑप्शन है।
4: ओरेडो का योर स्पेशल ऑफर, यानी वो ऑफर जो बना है खास आपके लिए। अभी ओरेडो ऐप पर चेक करें या अपने नियरेस्ट रिटेलर पर जाएं। एक्सपीरियंस मोर विद ओरेडो।
6: Enjoy the golden days with Kalyan Jewelers. Enjoy 0% making charges on selected ornaments. Visit Kalyan Jewelers today to grab this limited period offer. Conditions apply.
7: It's all down to Dhoni, isn't it? Four balls left. They need 12 runs to win.
8: Mahendra Singh Dhoni ke dimag mein kya chal raha hai? Ye samne wali team ko kabhi pata nahi chala. Lekin usse pata hai. सलमान खान अभी अपने फार्म हाउस में हॉर्स राइडिंग के बारे में सोच रहे हैं या
9: आर यू थिंकिंग ऑफ लाइक अ फ्लाइंग कार्पेट आर यू थिंकिंग फ्लाइंग कार्पेट
10: कैसे किया सीरियसली कैसे किया ये
8: उसे सब पता है लेडीज एंड जेंटलमैन योर माइंड इज अबाउट टू गेट ब्लोन बिकॉज नंबर वन मेंटलिस्ट फ्रॉम इंडिया द सुहानी शाह इज कमिंग टू कतर फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम कैच हर लाइव ऑन 25th सितंबर एट QNCC
11: Early bird tickets out now. Get them at STD Snoonu. Book yours now.
8: The Mentalist Suhani Shah. Live.

0: हेलो, मिर्ची हेल्पलाइन।
1: नहीं, हेल्पलाइन मिर्ची, बताओ सवाल क्या है।
0: आजकल जिसे देखो इन्फ्लुएंसर बन के घूम रहा है, और एक मैं हूँ, मुझे रील बनानी भी नहीं आती, मैं क्या करूँ?
1: तो तू एक काम कर, मैंने रील डाला है, तू फटाफट लाइक कमेंट और शेयर तो कर दे।

0: 89.6 Mirchi 1. It's hot.
1: मिर्ची के स्टूडियो क्लॉक का टाइम शाम के 5 और मेरे साथ चल रहा है मेरा शो शाम शानदार
2: इन एसोसिएशन विद नसीब मेडिकल सेंटर कतर्स लार्जेस्ट प्राइवेट मेडिकल सेंटर।

0: शाम शानदार ओनली ऑन 89.6 मिर्ची 1। कतर में बॉलीवुड का मिर्ची वाला तड़का, इट्स हॉट। मिर्ची फ्रेश माल।
1: लव लॉस और होप का म्यूजिकल सफर वे जुनून।

0: गाने को गाया है सुबोध शर्मा ने, म्यूजिक दिया है मिथुन ने और लिरिक्स लिखे हैं सईद कादरी ने। फिल्म आवारापन 2 से सुनते रहिए बेजुनून, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।
1: ट्रैफिक लाइट के साथ साथ गाड़ी के हेडलाइट के भी रूल होते हैं, जो हम जाने अनजाने में फॉलो नहीं करते हैं, लेकिन अगर नहीं किए तो 10,000 कतरी रियाल तक का फाइन है दोस्त। #974 बस बोलो गौरव, आपको बताना चाहेगा कि मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने एक इम्पोर्टेंट रिमाइंडर इशू कर दिया है, और ये इम्पोर्टेंट रिमाइंडर उन लोगों के लिए है जो न जाने अपनी गाड़ी की बिजली इतना क्यों बचा रहे, हेडलाइट क्यों नहीं जला रहे। यस, हम आपको बता दें, सनसेट से लेके सनराइज तक और इवन डे टाइम में अगर मौसम खराब है, विजिबिलिटी पुअर है, तो आपको अपनी गाड़ी की हेडलाइट्स ऑन रखनी है, रेयर लाइट्स ऑन होनी चाहिए। और हाँ, जब सामने से कोई गाड़ी आ रही तो हाई बीम पर चला के सामने वाले को ना ब्लाइंड मत करो, कोशिश करो लो बीम पे ही गाड़ी रहे, डिप्ड बीम पे। हाँ जी, पर कुछ लोग हैं जो ये रूल को तोड़ते हैं, ये बाइसाइकिल से लेकर मोटरसाइकिल और कार्स पर भी अप्लाई होता है, और कार पर तो होता ही होता है। सो गाइस, आई विल जस्ट से कि अपनी गाड़ी की हेडलाइट ऑन रखिए, जब भी अंधेरा हो उसका ज्यादा ध्यान रखिए। एंड मैं इतना ही कहूंगा कि आप इतना पैसा बचा क्यों रहे, करामा आपको इसका बिल थोड़े देता है, ये तो आपकी बैटरी के ऊपर है, और बैटरी 1-1.5 साल में खराब होती वो होती रहेगी। आप चाहे कितना ही बचा लो, ये छोटी बचत से आप अपनी जिंदगी को बड़े रिस्क में डाल रहे हो और अपने पॉकेट को भी। 10,000 कतरी रियाल आपके वहां कितना रुपया होता है याद रखो। 89.6 मिर्ची वन इट्स हॉट। अच्छा।

0: Mirchi. Iskabana, puskabana, sakabana. Yabana. Murga, murga. Murga. Navir bala murga. Mirchi, murga.
1: Mirchi.
2: It's Navid.
1: बोल रहा हूँ।
2: अगर किसी का वो जो बनाते हैं आप उल्लू, उसके लिए क्या करना पड़ेगा?
1: वो आपको मुझे बताना होगा।
2: तो मैं अभी बता दूँ?
1: एक सेकेंड, ये फॉर्म भर देते हैं। क्या नाम है आपका?
2: संजना।
1: संजना, किसका मुर्गा बनवाना है आपको?
2: अपने हस्बैंड का।
1: क्या बात कर रही है, और कोई नहीं मिला आपको?
2: फिलहाल अभी कोई और दिमाग में नहीं आ रहा।
1: अच्छा संजना, मुझे प्लीज आप ये बता देंगे कि ये इनको कितना गुस्सा आता है, ताकि मैं उसी हिसाब से इनसे बात करूँ फिर मुर्गा बनाऊँ। बहुत ज्यादा भड़क जाते हैं?
2: भड़क भी जाते हैं।
1: अरे बाप रे, तो मुझे संजना प्लीज बता देंगे किस तरह भड़कते हैं ये?
2: अब्यूजिंग वे में, थोड़ा
1: अब्यूजिंग वे में। जैसे कि कैसे?
2: आप मुझे शुरू कीजिए फिर मैं बताता
1: हूं। ओके चलिए।
3: हेलो सर, मैं इस बैंक से बोल रहा हूँ, फलाना बैंक से। सर आपको लोन देना है, दो मिनट दे सकते हैं?
2: नहीं, मेरे पास अभी टाइम नहीं है।
3: सर थोड़ा सा दो मिनट दे दीजिए यार, क्या बात जाती है आपकी? अरे शर्म किस बात की यार, हम लोन बेच रहे हैं, आप मुझे बता दीजिए। सर आप एक तो तमीज से बात करिए, आप लोन लेना है ले लीजिए, तमीज से बात करिए, बदतमीज कहीं का।
1: मुझे भी अच्छा नहीं लगता कि मैं इस तरीके से किसी का मुर्गा बनाऊं। और संजना मैं तुम्हें ये कहना चाह रहा था कि तुम्हारा मुर्गा बन चुका है। रेडियो मिर्ची पे।
2: मैंने अपना बनवाने के लिए फोन दे दिया था।
1: हम तो किसी का ही बना देते हैं, आपके हस्बैंड से ज्यादा हमदर्दी हो गई, किसी दिन उनका ही बनाएंगे, फिलहाल आपका बन गया। मेरे साथ प्यार से कह दो एक बार, कुकुड़ुकु। थैंक यू।
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।
4: जस ने सोचा था सिर्फ वाइफ क्यों, लंदन में एक गॉर्जियस गर्लफ्रेंड भी रख लूं। जस को लगा है जवानी तो इश्क होना है, पर जब पुराने रिश्ते नए सीक्रेट से टकराए तो एक लाई छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़े। एक लड़का, दो लव स्टोरीज और अनलिमिटेड केयर्स। है जवानी तो इश्क होना है। स्ट्रीम इट नाउ ओनली ऑन Z5। डाउनलोड द ऐप नाउ।
5: इट्स ऑल डाउन टू डोनी, इज़न्ट इट? 4 बॉल्स लेफ्ट, दे नीड 12 रन्स टू विन।
4: महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है ये सामने वाली टीम को कभी पता नहीं चला, लेकिन उसे पता है। सलमान खान अभी अपने फार्म हाउस में हॉर्स राइडिंग के बारे में सोच रहे हैं या
6: आर यू थिंकिंग ऑफ लाइक अ फ्लाइंग कार्पेट? आर यू थिंकिंग फ्लाइंग कार्पेट?
7: कैसे किया, सीरियसली कैसे किया ये?
4: उसे सब पता है। Ladies and gentlemen, your mind is about to get blown because number one mentalist from India, the Suhani Shah, is coming to Qatar for the very first time. Catch her live on 25th September at QNCC.
8: Early bird tickets out now. Get them at STD Snoonu. Book yours now.
4: The mentalist Suhani Shah live.

0: यार मैंने जो कोलकाता देखा है ना, वो बड़ा सिटी ऑफ जॉय है। वहाँ पे लोग खाने पीने के शौकीन हैं, सुबह सवेरे ड्यूटी पे निकल जाते हैं, एंड हावड़ा से लेकर कोलकाता के कोने कोने तक किसी बाजार में जाइए, एक अलग ही मजा है। लेकिन जब ब्राउन सीरीज देखी तो एक अलग ही पहलू नजर आया। यस, मस्मोला गौरव आपके साथ है, एंड जी की उस सीरीज के बारे में बात कर रहा हूं मैं जिसने पिछले दिनों मेरे दिमाग को तो झन्ना दिया था। करिश्मा कपूर मुझे आज से पहले ऐसी कभी नजर नहीं आई जैसी वो इस ब्राउन सीरीज में बनी है। एज रीटा ब्राउन कह सकते हैं, शानदार अभिनय किया है, एंड सीरीज इतनी शानदार थी कि भाई एक दिन में निपटा डाली, क्योंकि डायरेक्टर अभिनव देओल ने इसे डायरेक्ट किया है। ये एक नॉवल से इंस्पायर्ड है जिसका नाम है सिटी ऑफ डेथ, एंड मैं आपको बता दूं अभीक बरुआ की ये नॉवल सिटी ऑफ डेथ को एज अ बैकग्राउंड कोलकाता लेकर रीटा ब्राउन एक मर्डर मिस्ट्री पे मर्डर मिस्ट्री को सॉल्व करती जाती है। हालांकि ये जिस तरह के इस रोल में नजर आई है, इनका ग्लैमर आपको बिल्कुल नहीं दिखेगा, लेकिन एक ऐसी ऑफिसर जो शायद ड्यूटी से एकदम थक चुकी थी लेकिन फिर से एक्टिव होती है, और जब एक्टिव होती है तो फिर एक शानदार तरीके से वापस आती है। वेल, कुल मिलाकर इतना जरूर कहूंगा कि ट्रॉमा है, एडिक्शन है, ग्रीफ है, इसमें रिडेम्पशन है, एंड जब वो कोई वापस आने की सोचता है और जब पुलिस वाला आ जाता है कि अब कुछ करके दिखाना है तो कर देता है। बट मेरे लिए शॉकर था जब मुझे ये पता लगा कि जब करिश्मा कपूर को पहली बार ये सीरीज ऑफर की तो उन्होंने मना किया था
1: कि मैं ये शो नहीं कर रही कि मुझे कोलकाता नहीं जाना है, मुझे 50-60 दिन के लिए ट्रैवल नहीं करना है, तो बाय बाय। हाय जी गैंग, जी स्टूडियोस, लवली टू मीट यू, बट थैंक यू, बट नो थैंक यू। देन ऑब्वियसली आई मेट अभिनय एंड देन हियर आई एम, क्योंकि द रोल वाज सो डिफरेंट, एंड नॉट जस्ट डिफरेंट इन द रेगुलर वे डिफरेंट, इट वाज जेन्युइनली एक्सट्रीमली अनयूजुअल एंड रॉ, and something of course that I had not done before. Then, हाँ तो बोल नहीं था।
0: और हाँ बोल के आपने बहुत ही शानदार काम किया, क्योंकि हम एज एन रीटा ब्राउन आपको बहुत पसंद कर रहे हैं, एंड आई एम श्योर अगर अभी तक आपने नहीं देखी है तो Z5 का सब्सक्रिप्शन लेकर इस वेब सीरीज को जरूर देखो। एंड अगर ब्राउन देखने के बाद मन थोड़ा दुखी दुखी सा हो जाए तो फिर है जवानी तो इश्क होना है। यस,
1: इट वॉज जेन्युइनली एक्सट्रीमली अनयूजुअल एंड रॉ एंड समथिंग ऑफ कोर्स दैट आई हैड नॉट डन बिफोर, हाँ तो बोल नहीं था।
0: और हाँ बोल के आपने बहुत ही शानदार काम किया, क्योंकि हम एज एन रीटा ब्राउन आपको बहुत पसंद कर रहे हैं, एंड आई एम श्योर अगर अभी तक आपने देखी है तो Z5 का सब्सक्रिप्शन लेकर इस वेब सीरीज को जरूर देखो। एंड अगर ब्राउन देख

0: Presented by Baladna Milk Laban Yogurt. Experience the fresh, creamy taste that Qatar loves. Refreshing every moment with every sip and spoon. Powered by iPay.
1: Laya iPay. Best actions reads. Bejo khushiyan aur paise dono hi ghar pe.
0: Entertainment partner Z5. Double the love, double the trouble. Varun Dhawan brings extra plot twist and extra drama in Hai Jawani To Ishq Hona Hai. Stream it now, only on Z5. Download the app now.
2: Pizza partner Papa John's. Enjoy double delight offer.
0: Two small pizzas at 44, two medium pizzas 66 and two large pizzas at 99 riyals. Papa John's. Better ingredients, better pizza. Smile partner Naseem Dental Center. Her smile hope perfect. Sif Naseem Dental ke saath. Visit kare Muntaza ya Azizia. Your trusted smile partner. Adventure Park Partner Jungle Zone. Double the fun, half the price at Jungle Zone Hyatt Plaza. Enjoy 50% off on your favorite rides and games every day until 4 p.m. Don't miss out. घर बैठे चाहिए नया कार्ड? स्मार्ट चॉइस है ओरिरू मनी कार्ड. अप्लाई करो आज ही और क्यू पोस्ट से पाओ डोर स्टेप डिलीवरी कहीं भी इन कतर. एक्टिवेट करते ही शॉपिंग करो लोकल या इंटरनेशनल. और सुनो, हर एप्लीकेशन पर जीत सकते हैं एक ब्रांड न्यू आईफोन 17 प्रो मैक्स. लेट मत करो, ऑर्डर योर ओरिरू मनी कार्ड स्ट्रेट अवे. TNC अप्लाई. गूगल आपकी सर्च हिस्ट्री जानता है, इंस्टाग्राम आपकी लाइक्स, नेटफ्लिक्स आपकी चॉइस.

0: लेकिन सुहानीशा वो सब जानती है बिना किसी प्रॉम्प्ट पासवर्ड या परमिशन के एक्सपीरियंस द इम्पॉसिबल फॉर द फर्स्ट टाइम इंडियाज मोस्ट सेलिब्रेटेड मेंटलिस्ट सुहानीशा लाइव इन कतर ऑन 25th सितंबर एट QNCC
1: अर्ली बर्ड टिकट्स आउट नाउ गेट देम एट STD Snoo Noo बुक योर्स नाउ
0: द मेंटलिस्ट सुहानीशा

शाहरुख खान की आवाज अगर अभिजीत थे तो सलमान खान की बाला सुब्रमण्यम। लेट एसपी बाला सुब्रमण्यम, क्या शानदार आवाज। एंड यहाँ मिर्ची पर गाना सुन के मुझे पहला प्यार अपना याद आ गया। अरे मतलब क्रिकेट यार, जिसके लिए मम्मी पापा से न जाने कितने जूते चप्पल लात खाई, लेकिन फिर भी सुबह सवेरे उठ के खेलने चले जाते थे और रात तक घर लौटते थे, और उसके बाद को भाजन का शिकार कोई नहीं। लेकिन जिंदगी में हर किसी की पहली एक प्रायोरिटी होती है, लड़कों की ज्यादातर टाइम क्रिकेट होती थी हमारे स्कूल डेज से। वेल, इनकी बात करें तो इनकी पहली प्रायोरिटी थी मैजिक, इसीलिए पढ़ाई छोड़ दी, स्कूल से बाहर चली गई क्लास वन के बाद, और होम स्कूलिंग के साथ शुरू किया मैजिक का सफर और बन गई दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट रेनाउंड मेंटलिस्ट। सुहानी शाह की बात कर रहा हूं जो हमारे कतर आ रही है। यस, द मेंटलिस्ट सुहानी शाह लाइव इन कतर फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। कतर कैलेंडर लेकर आ गए हैं, प्रेजेंटेड बाय आईपे, हमारे एसोसिएट पार्टनर डेरी क्वीन पापा जोन्स, हमारे हेल्थ पार्टनर किम्स हेल्थ, हमारे रिफ्रेशमेंट पार्टनर बलादना, एंड शॉपिंग पार्टनर डाइसो जापान होम जारस। ये सारे के सारे लोग एक साथ आए हैं ताकि एक बेहतरीन शाम को हम अंजाम दे पाएं। तो इंतजार कीजिए, अब 25 सितंबर को वो होगा जो आपने इससे पहले कतर में कभी नहीं देखा है। लेकिन उसके लिए आपको भी थोड़ी मेहनत करनी है, अपनी टिकट्स बुक कर लो भाई राइट टाइम पे, क्योंकि इस वक्त आपको अर्ली बर्ड ऑफर मिल जाएगा हमारे टिकटिंग पार्टनर स्नूनो के साथ, जहां पर एस सिटी पर आपको ये मिलने वाली है इस वक्त अर्ली बर्ड ऑफर के साथ डिस्काउंटेड प्राइस पर। वेल, हमारे रेस्टोरेंट पार्टनर एब्सोल्यूट बारबेक्यू, साथ ही साथ हमारे इवेंट पार्टनर क्यूब इवेंट्स, मीडिया पार्टनर रिहाब मीडिया, एंड प्रोडक्शन पार्टनर सिम्फनी, ब्रांडिंग के प्रिंटिंग के पार्टनर है ब्रांड आर्ट्स, एंड बी स्क्वायर है हमारे मार्केटिंग पार्टनर। इतने सारे लोग एक साथ लग गए हैं ताकि सुहानी शाह को कतर में लेकर आए और एक बेहतरीन एक्सपीरियंस आप सबको दें। वेल, तो बता दूं सुहानी शाह आ रही हैं और आपको अपनी टिकट्स बुक करा लेनी है। साथ ही साथ यहां पर मिलेगा एंटरटेनमेंट का डबल डोज विद सिंगर चरण एंड डांसर आशी ओनली ऑन मिर्ची। तो टिकट्स बुक करते रहो और मिर्ची सुनते रहो, क्योंकि हम आपके एंटरटेनमेंट का जुगाड़ करते रहते हैं। मिर्ची, इट्स हॉट।

0: बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा
1: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: गुलशन देवैया कौन सी फिल्म को देखकर लगा था कि मुझे एक्टर बनना है, मैं भी ये कर सकता हूँ?
3: सत्या देखे तो उम्मीद जगी थी कि हम आ सकते हैं। मनोज जी को देखे लगा कि नहीं नहीं कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं।
2: ये तो सत्य है कि आप भी कर सकते हैं। दिस वॉज गुलशन देवैया ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
0: बॉलीवुड बोल्डा बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा
1: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
4: Enjoy the golden days with Kalyan Jewelers. Enjoy 0% making charges on selected ornaments. Visit Kalyan Jewelers today to grab this limited period offer. Conditions apply.
5: It's all down to Dhoni, isn't it? Four balls left. They need 12 runs to win.
6: महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है ये सामने वाली टीम को कभी पता नहीं चला, लेकिन उसे पता है। सलमान खान अभी अपने फार्म हाउस में हॉर्स राइडिंग के बारे में सोच रहे हैं या
7: आर यू थिंकिंग ऑफ लाइक अ फ्लाइंग कार्पेट? आर यू थिंकिंग फ्लाइंग कार्पेट?
8: कैसे किया, सीरियसली कैसे किया ये?
6: उसे सब पता है। Ladies and gentlemen, your mind is about to get blown because number one mentalist from India, the Suhani Shah, is coming to Qatar for the very first time. Catch her live on 25th September at QNCC.
9: Early bird tickets out now. Get them at STT Snoonu. Book yours now.
6: The mentalist Suhani Shah, live in

आज मैं आपको एक इमोशनल कहानी सुनाऊंगा। एक छोटा बच्चा रोज टॉफी की दुकान के आगे जाता है, लेकिन टॉफी को घूर कर वहां से आगे चला जाता है। ऐसा वो 2-3 दिन करता है। दुकानदार को लगता है शायद उसके पास पैसे नहीं है, इसलिए वो ना तो अंदर आता है और बस टॉफी को घूर के चला जाता है। तो अगले ही दिन जब वो आ रहा होता है तो दुकानदार टॉफी निकालकर बाहर रख देता है, कहता है ये लो बेटा, अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं कोई बात नहीं, तुम टॉफी ले लो। तो वो बच्चा कहता है नहीं, मैं अभी टॉफी लेने नहीं आया हूँ, मैं बस आपको ये बताने आया हूँ कि सैलरी आएगी तो मेरे पापा भी मुझे पैसे देंगे तो टॉफी ले लूंगा। मतलब देखिए, उस बच्चे को भी पता है कि 30 तारीख को ही सैलरी आती है, और इसलिए मैं कहता हूँ मेरे भी हालात उस बच्चे ही जैसे हैं। लेकिन मैं टॉफी से बड़ी चीजें देख रहा हूँ, और जैसी सैलरी आएगी वो जाके ले लूंगा। फिलहाल अगर बात करें, 1 कतरी रियाल के बदले इंडियन रुपीज 26 रुपए 13 पैसे 26.13 INR, वही 1 कतरी रियाल के बदले श्रीलंकन रुपीज 91.77। पाकिस्तान रुपीज की बात करूं जनाब, वाहिद कतरे रियाल के बदले 76.20 पाकिस्तान रुपीज। वही तपाई को नेपाली रुपीज का रेट चाहो, 1 कतरे रियाल के बदले 41.78 का भल्चर रेट रही। हाँ जी हजूर, 41.78 का रेट बहनी घर भेजा लाई सही टाइम छो पैसा। अगर इसके बाद बंधु बांग्लादेशी टाका की बात करेगा दादा, 1 कतरे रियाल के बदले 33.85 तो 33.85 ये है बांग्लादेशी टाका का रेट। अच्छा बाड़ी के घर भेजी दो। हाँ जी मास्मोल गौरव आपके साथ 89.6 मिर्ची पर ये था एक्सचेंज रेट मिर्ची थॉट।

0: हेलो, मिर्ची हेल्पलाइन
1: जी। बिल्कुल मिर्ची हेल्पलाइन, बता बेटा सवाल क्या है।
0: सर, मैंने 3 अलग अलग बिजनेस किए, उनके लिए मार्केटिंग भी किया, पर कुछ बिक नहीं रहा। मैं क्या करूं, कुछ सलूशन बताओ ना।
1: अरे बेटा, सिंपल सा सलूशन है, तू एक काम कर, दुकान ही बेच दे।

0: 89.6 मिर्ची वन, इट्स हॉट।
1: मिर्ची घड़ी में बज गए शाम के 6 और आप सुन रहे हैं शाम शानदार मस्त मौला गौरव के साथ।
2: इन एसोसिएशन विद नसीब मेडिकल सेंटर, खतर्स लार्जेस्ट प्राइवेट मेडिकल सेंटर।

0: शाम शानदार ओनली ऑन 89.6 मिर्ची 1 कतर में बॉलीवुड का मिर्ची वाला तड़का इट्स हॉट मिर्ची फ्रेश माल
1: एक्सप्लोसिव वाइब और पावर पैक्ड एनर्जी का डोज तबाही

0: इस गाने को गाया है और कंपोज किया है विशाल मिश्रा ने और लिरिक्स लिखे हैं राजशेखर ने। फिल्म टॉक्सिक से सुनते रहिए तबाही, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना, 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।
1: विशाल मिश्रा की आवाज में तबाही। लेकिन अगर पूरी दुनिया का युवा एक साथ आ जाए तो तबाही नहीं भैया, इतनी चीजों को बनाएगा कि दुनिया कहेगी भैया हम भी यूथ बनना चाहते हैं। एंड पूरी दुनिया यूथ के पावर को देख तो रही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। हर कंट्री में अपनी अलग आवाज है युवाओं की, और ऐसे में आज इंटरनेशनल यूथ डे और मौला गौरव कोई सॉलिड सीन लेकर आया है।
2: #974 द मोस्ट ट्रेंडिंग लोकल न्यूज ऑफ द डे।
1: यस, हम आपको बता दें कि वैसे तो हम भी दिल से बड़े युवा फील करते हैं, लेकिन वो बात अलग है कि बैडमिंटन खेलने के बाद घुटनों में कभी कभी दर्द होता है तो पता लगता है कि इतने भी युवा नहीं रहे। लेकिन अगर आप सच में वो वाले यूथ हैं जो चाहते हैं कि हम कुछ कर दिखाएं, तो मौका दे रहा है आपको प्लेस वेंदोम। यस, यहां पर एक इंटरैक्टिव इवेंट रखा गया 12th-16th August प्लेस वेंदोम कतर के ग्राउंड फ्लोर गेट नंबर 5 और 6 के पास। ये पूरी एक्टिविटी चल रही है, इंटरनेशनल यूथ डे को एजुकेशन अबव ऑल के साथ मिलकर मनाया जा रहा है। इसमें साथ दे रहे मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ, ताकि एक मल्टी डे इवेंट ऐसा बनाया जाए जो युवाओं की आवाज को और फ्यूचर लीडर्स को तैयार कर सके। वेल, इसी उम्मीद में कि आप यहां जाएंगे, अपने आप को कुछ सिखाएंगे, वॉलंटियर करेंगे एंड कुछ एसेंशियल स्किल्स आपके अंदर डेवलप होगी, ताकि आप आने वाले टाइम में कुछ मीनिंगफुल चेंज कम्युनिटी के लिए ला पाएं। यही यहां आपको सुनने को और देखने को मिलेगा। तो मतलब हर बार जाते हो एसी की हवा खा के, विंडो शॉपिंग करके चले आते हो, रेस्टोरेंट में कुछ खा लेते हो, लेकिन इस बार अपने लिए कुछ अच्छा सीख कर आओ। एंड मैं तो यही मानता हूं, एज इज जस्ट अ नंबर भैया, दिल से युवा हमेशा युवा। अगला गाना युवा से ही, मिर्ची पर, इट्स हॉट।

0: It's all down to Dhoni, isn't it? Four balls left. They need 12 runs to win.
1: महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है ये सामने वाली टीम को कभी पता नहीं चला, लेकिन उसे पता है। सलमान खान अभी अपने फार्म हाउस में हॉर्स राइडिंग के बारे में सोच रहे हैं या
2: आर यू थिंकिंग ऑफ लाइक अ फ्लाइंग कार्पेट? आर यू थिंकिंग फ्लाइंग कार्पेट?
3: कैसे किया? सीरियसली कैसे किया ये?
1: उसे सब पता है। Ladies and gentlemen, your mind is about to get blown because number one mentalist from India, the Suhani Shah, is coming to Qatar for the very first time. Catch her live on 25th September at QNCC.
4: Early bird tickets out now. Get them at STT Snoo Noo. Book yours now.
1: The mentalist Suhani Shah.

0: जुबिन नौटियाल की आवाज में बर्बाद हो सकते हो अगर आप थोड़े अलर्ट नहीं रहे तो।
1: मस्त मौला गौरव।
0: मेहनत की कमाई चंद क्लिक्स में हमने गवाई वाली सीन ना हो इसके लिए थोड़ा सा ध्यान दो। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री ने कुछ याद दिलाया है।
2: #974
0: MOCI ने हमसे कहा है कि हम अपनी उंगलियों को थोड़ा काबू में रखें क्योंकि होता क्या है ना, अरे वाह 90% का डिस्काउंट ये प्रोडक्ट पे, अरे आओ इसे खरीद लेते हैं। और जैसे ही आप उस अननोन लिंक को क्लिक करते हैं शायद आप हैकर्स को अपना एक्सेस दे देते हैं। इसीलिए मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री ने एक सुपर इम्पोर्टेंट पब्लिक एडवाइजरी इशू की है साइबर थ्रेट्स और फिशिंग अटैक से बचने के लिए। होता क्या है आजकल के हैकर्स बहुत क्लेवर हैं भैया, इन्होंने बिल्कुल ऑफिशियल जैसी दिखने वाली फेक वेबसाइट्स तक बना ली है। MOCI ने हमें वार्निंग दी है कि किसी भी अनट्रस्टेड सोर्स, अनवेरिफाइड व्हाट्सएप मैसेज, सस्पिशियस एड या फिर ऐवे ही गूगल सर्च रिजल्ट वाले लिंक्स पर क्लिक नहीं करना है। यस प्लीज डोंट क्लिक, क्योंकि हमारी पर्सनल आईडी हमारे बैंक अकाउंट के OTPs का गेम बजा सकते हैं। तो अब आप समझदार हैं, इशारा काफी है, MOCI ने हमें आगाह कर दिया और बाकी हमारी मर्जी, क्योंकि अब सिर्फ कंट्रोल उधर कंट्रोल नहीं, फिंगर कंट्रोल बॉस, फिंगर कंट्रोल चाहिए। उंगलियों को थोड़ा कम घुमाइए, हर चीज जो डिस्काउंट या ऑफर में दिखती है वो कभी कभी पूरी मुसीबत का घर लेकर आ जाती है। 89.6 मिर्ची 1, अपनी अकल लगाओ, अपने आप को बहुत अलर्ट रखो। मिर्ची It's hot.

रोहित शर्मा अपना डेब्यू करने जा रहे हैं। मस्त मौला गौरव। अब आप सोच रहे होंगे रिटायरमेंट के बाद कौन सा डेब्यू होता है। अरे भाई, हम टीवी शो के डेब्यू की बात करें जो अब रोहित शर्मा करने जा रहे हैं। यस, हम आपको बता दें कि हमारे इंडियन क्रिकेटर रोहित शर्मा अब एक टीवी शो होस्ट करने वाले हैं, द रोहित शर्मा शो। यस, सोनी टीवी सोनी लिव पर यह स्ट्रीम होगा और शो का एक टीजर आ गया है। भाई शानदार फॉर्मेट है, कहा यही जा रहा है फैमिली फ्यूड नाम का अमेरिका का एक फेमस शो है, एकदम उसी के स्टाइल में ये इंडियन वर्जन बन जाएगा और सितंबर से इसकी शूटिंग शुरू हो जाएगी। हालांकि अभी सिर्फ टीजर वीडियो आया है, लेकिन एक एपिसोड में दो फैमिलीज फीचर होंगी। क्या होने वाला है इसके लिए इंतजार कीजिए। कहा यही जा रहा है कि शो के लिए कुछ बड़े क्रिकेटर्स और भी आ सकते हैं, लेकिन फिलहाल अब तक टीवी और वेब शो में जो क्रिकेटर्स आ चुके हैं ऑलरेडी, उसमें नवजोत सिंह सिद्धू, सौरभ गांगुली, भज्जी पाजी, अजय जडेजा, श्रीशांत, वीरेंद्र सहवाग, शिखर धवन जैसे नाम तो है, लेकिन रोहित शर्मा का आना एक अलग सा ट्विस्ट है, क्योंकि भाई जो भी करता है वो हिट ही होता है। एंड आई एम श्योर ये शो भी भाई का हिट होगा। ऑल द बेस्ट शर्मा जी, एक बार फिर से मम्मी पापा आप ताने देंगे। देखो शर्मा जी के बेटे को क्रिकेट खेलने के बाद अब टीवी पे शो भी कर रहा है और तुम वही आरजे के आरजे रह गए। 89.6 मिर्ची 1, इट्स हॉट।

कंधों को किताबों के बोझ ने झुकाया, रिश्वत देना तो खुद पापा ने सिखाया। 99% मार्क्स लाओगे तो घड़ी, वरना छड़ी। लिख लिख कर पढ़ा हथेली पर अल्फा बीटा गामा का छाला, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ने पूरा पूरा बचपन जला डाला।

0: Presented by Baladna Milk Laban Yogurt. Experience the fresh, creamy taste that Qatar loves. Refreshing every moment with every sip and spoon. Powered by iPay.
1: Laya iPay. Best actions reads. Bejo khushiyan aur paise dono hi ghar pe.
0: Entertainment partner Z5. Double the love, double the trouble. Varun Dhawan brings extra plot twist and extra drama in Hai Jawani To Ishq Hona Hai. Stream it now, only on Z5. Download the app now.
2: Pizza partner Papa John's. Enjoy double delight offer.
0: Two small pizzas at 44, two medium pizzas 66 and two large pizzas at 99 riyals. Papa John's, better ingredients, better pizza. Smile partner Naseem Dental Center. Har smile ho perfect. Sif Naseem Dental ke saath. Visit kare Muntaza ya Azizia, your trusted smile partner. Adventure Park Partner Jungle Zone. Double the fun, half the price at Jungle Zone Hyatt Plaza. Enjoy 50% off on your favorite rides and games every day until 4 PM. Don't miss out. जस ने सोचा था सिर्फ वाइफ क्यों, लंदन में एक गॉर्जियस गर्लफ्रेंड भी रख लूं। जस को लगा है जवानी तो इश्क होना है, पर जब पुराने रिश्ते नए सीक्रेट से टकराए तो एक लाई छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़े। एक लड़का, दो लव स्टोरीज और अनलिमिटेड केओस। है जवानी तो इश्क होना है। स्ट्रीम इट नाउ ओनली ऑन Z5। डाउनलोड द ऐप नाउ। गूगल आपकी सर्च हिस्ट्री जानता है, इंस्टाग्राम आपकी लाइक्स, नेटफ्लिक्स आपकी चॉइस, लेकिन सुहानी शाह वो सब जानती है बिना किसी प्रॉम्प्ट, पासवर्ड या परमिशन के। एक्सपीरियंस द इम्पॉसिबल फॉर द फर्स्ट टाइम। इंडियाज मोस्ट सेलिब्रेटेड मेंटलिस्ट सुहानी शाह लाइव इन कतर ऑन 25th सितंबर एट QNCC।
3: अर्ली बर्ड टिकट्स आउट नाउ, गेट देम एट STD Snoo Noo। बुक योर्स नाउ।

0: वर्ल्ड चेस चैंपियन यानी कि प्रेजेंटली वर्ल्ड चेस का चैंपियन गुकेश, अगर कोई उनका दिमाग पढ़ ले तो कैसा होगा? अच्छा हुआ सुहानी शाह चेस नहीं खेलती, नहीं तो गुकेश कभी उनसे जीत नहीं पाता, क्योंकि उन्होंने गुकेश के दिमाग को पढ़ लिया था। एंड ये कैसे हुआ, आइए सुनते हैं।
1: इमेजिन यू सिटिंग एंड अक्रॉस यू इज अ चेस प्लेयर, हूएवर यू वांट, यू कैन सी द पोजीशन ऑन द चेस बोर्ड एंड थिंक ऑफ द मूव, जस्ट थिंक of what piece are you picking up. Say this piece in your mind, like if it is a pawn, for example, you'll just say pawn. If it's a king, you'll say king. Whatever it is, just say. He's not even blinking. Just think of the piece and the square. Piece, I know I've got it. I'm trying to get the square right. Knight? Are you thinking of the knight? Knight? H?
2: Yes.
1: Knight H5?
2: Yeah.
0: My God. Whoa. No doubt, उन्होंने गुकेश के दिमाग में उन्होंने कौन सी चाल चली थी ये तक गैस कर लिया। ये होती है मेंटलिस्ट की असली कामयाबी। एंड द मेंटलिस्ट सुहानी शाह आ रही है अपने कतर में, फर्स्ट टाइम एवर प्रेजेंटेड बाय आईपे, बी अ पार्ट ऑफ दिस इवनिंग, 25 सितंबर को होने वाला है। एंड बड़ी बात यह है कि इसमें थोड़े और चार चांद लग जाएंगे। जब डेब्यू किया है जिसने बादशाह के साथ, वो सिंगर यहां पर हमारे साथ होगा, बन जा तू मेरी बन जा बन। एंड इसके अलावा उनके साथ आशी, ये दोनों के दोनों परफॉर्म कर रहे होंगे। एंड साथ ही साथ सुहानी अपने स्ट्रेंज एक्ट से हम सबके दिमाग को घुमा रही होंगी। जल्दी से अपनी टिकट्स बुक कर लो, एससीटी जो कि हमारी टिकटिंग पार्टनर है, जितनी जल्दी हो सके स्नूज पे जाकर एससीटी पर अपनी टिकट्स बुक करो एट डिस्काउंटेड प्राइसेस, क्योंकि अभी अर्ली बर्ड ऑफर चल रहा है। एंड जो गुकेश के साथ हुआ, क्या बताओ आपके साथ हो जाए, आपका भी दिमाग एकदम से चक्कर खा जाए। मिर्ची इट्स हॉट।

0: Hollywood, Bollywood, Bolda. Only on Mirchi. It's hot.
1: One of my favorite things to do is Rajkumar Rao ke saath mein filmi quiz khelna.
2: Aapko fill in the blanks karna hai. Gangs of? वास्तव में संजय दत्त ने किस चीज की गाड़ी लगाई थी?
3: पावभाजी।
2: शाबाश। डॉन को कितने मुल्क की पुलिस पकड़ना चाहती है?
4: 11।
2: गोली मार भेजे में भेजा
3: चोर करता
2: है। शाबाश। लगे रहो मुन्ना भाई में वो किस फिलोसफी से?
3: गांधीयन।
2: सरकार में अभिषेक बच्चन के भाई का रोल किसने निभाया?
3: पीके मेनन।
2: खत्म।
1: इस आदमी से कोई नहीं जीत सकता। आदमी का नाम राजकुमार राव। रेडियो स्टेशन का मिर्ची। इट्स हॉट।
0: बॉलीवुड बोल्डाल। बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डाल। ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।
5: कभी प्यार का एहसास और कभी खुद को दिया हुआ एक खूबसूरत तोहफा। फेस्टिवल ऑफ डायमंड्स इज बैक एट तनिष्क। रोज पहनने के लिए स्टाइलिश डिजाइन्स हो या किसी खास मौके के लिए स्टनिंग डायमंड ज्वेलरी, हर पीस में है तनिष्क का भरोसा और बेहतरीन क्राफ्ट्समैनशिप। यही नहीं, गेट अ फ्री गोल्ड कॉइन ऑन एवरी 3,000 रियाल्स स्पेंट ऑन डायमंड परचेसेस। तो आज ही विजिट करें तनिष्क एट लुलु हाइपरमार्केट, ईरिंग रोड एंड दोहा फेस्टिवल सिटी टुडे। TNC supply.
6: It's all down to Dhoni, isn't it? Four balls left, they need 12 runs to win.
7: महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है ये सामने वाली टीम को कभी पता नहीं चला, लेकिन उसे पता है। सलमान खान अभी अपने फार्म हाउस में हॉर्स राइडिंग के बारे में सोच रहे हैं या
8: आर यू थिंकिंग ऑफ लाइक अ फ्लाइंग कार्पेट? आर यू थिंकिंग ऑफ फ्लाइंग कार्पेट?
9: कैसे किया? सीरियसली कैसे किया ये?
7: उसे सब पता है। Ladies and gentlemen, your mind is about to get blown because number one mentalist from India, the Suhani Shah, is coming to Qatar for the very first time. Catch her live on 25th September at QNCC.
10: Early bird tickets out now. Get them at STD Snoonu. Book yours now.
7: The mentalist Suhani Shah.

0: हेलो, मिर्ची हेल्पलाइन
1: जी। बिल्कुल, बताइए सवाल क्या है।
0: कॉल सेंटर वालों से कंटाल गया हूँ। पूरे दिन लोन के लिए इतने कॉल आते हैं, क्या करूँ।
1: अरे तो सिंपल है ना, लोन भर दे, फिर फोन ही नहीं आएगा।

0: 89.6 Mirchi 1. It's hot.
1: मिर्ची की स्टूडियो क्लॉक में टाइम हुआ है शाम के साथ और मस्त मौला गौरव के साथ आप बने हुए हैं दी शो शाम शानदार
2: इन एसोसिएशन विद नसीब मेडिकल सेंटर कतर्स लार्जेस्ट प्राइवेट मेडिकल सेंटर।

0: शाम शानदार ओनली ऑन 89.6 मिर्ची 1। कतर में बॉलीवुड का मिर्ची वाला तड़का, इट्स हॉट। मिर्ची फ्रेश माल।
1: इमरान हाशमी के सॉन्ग्स और प्लेलिस्ट हिट्स दोनों का रिश्ता पुराना है। उनकी अगली म्यूजिकल ऑफरिंग है ये आवारापन।

0: इस गाने को आवाज दी है अरिजीत सिंह ने, म्यूजिक दिया है अमाल मलिक ने और लिरिक्स लिखे हैं रश्मि विराग ने। आवारापन 2 से सुनते रहिए ये आवारापन, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।
1: अभी भी सब लोग डेट फेस्टिवल में ही चले गए थे। 25th of July से शुरू हुआ 11th लोकल डेट फेस्टिवल, जो लेकर आए थे मिनिस्ट्री ऑफ म्यूनिसिपैलिटी और सुखवाकिफ के एक साथ आने पर यह शुरू हुआ। 25 जुलाई से 10 अगस्त के बीच हमारे कतर में जबरदस्त अटेंडेंस लगी है, 1,10,000 विजिटर पहुंचे हैं। और सिर्फ पहुंचे हैं और खाली हाथ नहीं लौटे हैं, कुछ खरीद के लौटे हैं। तभी तो 183,268 किलोग्राम यानी कि लगभग 1,83,268 किलो खजूर खरीद लिए गए और सबसे ज्यादा बिकी खलास खजूर। हाँ जी, इसके बाद बात करें तो खुनेजी, सीशी, बरही ये सब बिकी, लेकिन क्या जबरदस्त तरीके की सेल थी एंड भीड़ ने इस बार पुराने सारे रिकॉर्ड को तोड़ दिया। ये बता रहा है कि भले ही कुछ लोग प्लान करते हैं कि समर वेकेशन आएंगे तो हम लोग अपने घर जाएंगे, नानी के घर, दादी के हाउस, लेकिन कुछ लोग प्लान करते हैं कहीं नहीं जाएंगे, ईस्टर्न स्क्वायर सूख वाकिफ में हर दिन बिताएंगे। यही तो बात है सर, कतर की विरासत को लेकर, कतर के कल्चर को लेकर एक बाजार जो सबकी पहली चॉइस होता है वो है सुख वाकिफ, और वहां पर लगा ये 11th लोकल डेट फेस्टिवल का नंबर। बता रहा है कि फेस्टिवल किसी भी चीज का हो, लोग उमड़ पड़ते हैं और झूम कर खरीदारी करते हैं और सुख वाकिफ की गलियों में खुद को घुमा आते हैं। फिलहाल इसी उम्मीद के साथ कि अब अगला फेस्टिवल यहां कौन सा आ रहा है, आगे बढ़ेंगे, मस्मौला गौरव इंतजार करेगा। और आप जो खजूर खरीद कर आए उसमें से थोड़ा हिस्सा हमारा भी रखिए, हम आपसे अच्छी अच्छी बातें करते हैं, हम खजूर करते। 89.6 मिर्ची 1 हबीबी हरारा खतीर, ए थॉट।

0: Kahve Mirci.
1: Iskabana, uskabana, sakabana. Rabbala. Burga, burga. La firbala burga.
0: Mirci burga.
2: Hello.
3: Hello, Mr. Whipple, man. से बोल रहा हूँ आपका कुछ दिन के लिए हमें इनबॉक्स चाहिए आपके मोबाइल का इनबॉक्स तो मैं अपना आदमी भेज दूँ या आप यहाँ पे आके जमा करा देंगे
2: इनबॉक्स चाहिए इनबॉक्स कैसा मतलब
3: मैं आपको वही समझा रहा हूँ एक्चुअली हमारी कंपनी अपना सर्वर चेंज कर रही है तो सर्वर में जो डेटा होता है अब वो सर्वर हटाएंगे तो सारा डेटा हमें कहीं तो रखना पड़ेगा ना तो हम आपके इनबॉक्स में रखेंगे कुछ दिन तक वो डेटा अब वो जब हमारा सर्वर नया लग जाएगा तो हम आपको इनबॉक्स आपका वापस कर देंगे तो मैं यहाँ से कंप्यूटर में फीड कर रहा हूँ आपका इनबॉक्स अपनी तरफ खींच रहा हूँ ठीक है सर
2: नहीं नहीं बात तो सुनो भाई साहब
3: हाँ बताइए
2: नहीं तो जो इनबॉक्स है मेरा वो तो मेरा अपने फोन मेमोरी में है ना
3: नहीं वो हम खींच लेंगे आप उसकी फिक्र मत करिए
2: नहीं तो आप कैसे उसको अपलोड करेंगे
3: मैं कुछ भी करूँ यार आप ज्यादा बहस करते क्यों एक तो सर्वर वो उतार रहे हैं आप मुझसे बहस कर रहे हैं
2: बहस वाली बात नहीं है मतलब मैं खुद मालूम तो करूँ ना अगर आप मेरे से कोई बात पूछ रहे हैं तो कम
3: बिल्कुल,
2: से कम मुझे
3: बिल्कुल, से, बिल्कुल सही कह रहे हैं
2: जा कहाँ रहा है
3: नहीं वो जा कहाँ रहा है जा यहीं रहा है आपकी कंपनी में जा रहा है और मैं आपसे सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आपका कुछ दिन के लिए हमें इनबॉक्स चाहिए अब उसमें आपको टेंशन क्या है हम आपके मैसेजेस रखेंगे उसको पढ़ेंगे सही से
2: मेरे प्राइवेट एसएमएस है उसमें मैं ऐसे किस तरह से दे दूँ उसको
3: वैसे आप बुरा मत मानना आपके मना करने से मुझे लग रहा है कि आपने उसमें सारे नॉनवेज मैसेजेस रखे हुए हैं उसमें
2: यार क्या बात कर रहा हूँ मतलब
3: नॉनवेज एसएमएस क्यों रखे हुए हैं यार आपने उसमें बेकार की बातें कर रहे हैं आप कंपनी को जरूरत है क्या बदतमीजी कर रहे हैं आप उसपे मैं तो मुझे सिर्फ इनबॉक्स नहीं, नहीं, नहीं चाहिए मेरी बात सुनिए
2: चल
3: नहीं नहीं आपने फॉर्म भरा था सेकंड पेज पे मेरे हाथ में है रुकिए रुकिए सेकंड पेज पे लिखा हुआ है कि कंपनी आपका इनबॉक्स कभी भी ले सकती है उसमें कस्टमर को कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं होगा यहाँ तक कि आपके घर की बाल्टी आपके बर्तन आपके कपड़े तक उतरवा सकती है
2: बिल्कुल
3: क्या बात कर रहे हैं यार मेरी बात सुनिए आप पूरी हेलो
2: हेलो
3: हेलो भाई साहब आपने फोन काट दिया यार इनबॉक्स लेने की बात कर रहा था मैं फोन काट रहे हैं यार
2: आपको से फोन मत करियो मैं इनबॉक्स बना दूंगा दिमाग खराब कर
3: दिया क्या क्या क्या यार बात सुनिए आप मेरी मैं आपसे सिर्फ एक बात विपुल मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ कोई तुम्हारा इनबॉक्स नहीं चाहिए मैंने मुर्गा बनाया है तुम्हारा तुम रेडियो मिर्ची पे हो
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
4: It's all down to Dhoni, isn't it? Four balls left, they need 12 runs to win.
5: महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है ये सामने वाली टीम को कभी पता नहीं चला लेकिन उसे पता है सलमान खान अभी अपने फार्म हाउस में हॉर्स राइडिंग के बारे में सोच रहे हैं या
6: आर यू थिंकिंग ऑफ लाइक अ फ्लाइंग कार्पेट आर यू थिंकिंग फ्लाइंग कार्पेट
7: कैसे किया सीरियसली कैसे किया ये
5: उसे सब पता है Ladies and gentlemen, your mind is about to get blown because number one mentalist from India, the Suhani Shah, is coming to Qatar for the very first time. Catch her live on 25th September at QNCC.
8: Early bird tickets out now. Get them at STD Snoo Noo. Book yours now.
5: The mentalist Suhani Shah.

ज्यादा नहीं, आज से 30 साल पहले चले जाइए। रात के वक्त किसी की गाड़ी खराब हो जाती थी तो हाईवे पे वो कैसा फील करता था। मोबाइल था नहीं एंड जो थे वो इतने महंगे थे कि लोग हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता था, लेकिन समय के साथ चीजें आईं और लोगों के लिए कनेक्टिविटी बहुत ही आसान हो गई। एक दूसरे से बात कर पाना उससे ज्यादा आसान हो गया और फिर तो इंटरनेट ने पूरी दुनिया ही बदल दी भैया। अब तो लाइव वीडियो कॉल होते लगते ही नहीं कि कोई बंदा हमसे इतनी दूर रह रहा है। फिलहाल ऐसे ही पावर देखते देखते जब डिजिटलाइजेशन के दौर में पहुंचा तो लोगों के हाथ में एक एक चीज आ गई और कतर में एक सबसे पावरफुल ऐप जो हमारे मोबाइल पर होता है वो है मेथराश, जिसको लेकर मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने एक बार फिर से हाईलाइट किया एक इम्पोर्टेंट पॉइंट। और ये पॉइंट है आप मेथराश को अपने रिलेटिव्स के लिए ऑथराइज कर सकते हैं। यस, यानी कि अगर अब आपके बच्चे या बीवी के पास लोकल नंबर नहीं भी है, यानी कि कतर का कोई मोबाइल नंबर नहीं भी है, तो भी आप उनको एक्सेस दे सकते हो और वो भी मेथराश एप्लीकेशन को अपने फोन पर डाउनलोड कर यूज कर सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। इसमें आपको ऐप के मेन मेनू पर जाना है डेलीगेशन पर और वहां से रिलेटिव रजिस्ट्रेशन जो है उसके थ्रू आप उनके कतर आईडी नंबर को, QID एक्सपायरी डेट को या फिर वो मोबाइल नंबर को जिसको रजिस्ट्रेशन के यूज किया गया था वो डालकर ऐड कर सकते हो अपने फैमिली मेंबर्स को, ताकि उनके पास भी मेथराश एप्लीकेशन आ जाए। वेल, बहुत सारे इंपॉर्टेंट काम मेथराश के थ्रू होते हैं। हो सकता है आप किसी इंपॉर्टेंट काम से यहां नहीं है और कुछ ऐसा है जो मेथराश के थ्रू हो सकता है, तो आप अपनी फैमिली मेंबर्स से वो काम करा पाएंगे। इसी बात को हाईलाइट करते हुए एक बार फिर से मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने याद दिलाया कि अब आप मेथराश पर अपने फैमिली मेंबर्स को, अपने रिलेटिव्स को ऑथराइज कर सकते हो कि वो मेथराश सर्विसेज को यूज कर पाए इवन इफ दे डोंट हैव अ मोबाइल नंबर ऑफ कतर। वेल, मस्मौला गौर ने बता दिया। अगर अभी तक आपको ये नहीं पता था, प्लीज डाउनलोड करा लीजिए, अपने फैमिली मेंबर्स को भी मेथराश ऐप का ऑथराइजेशन दे दीजिए। 89.6 मिर्ची वन इट्स हॉट।

0: check. Hey yo, this one is for all the little rock stars.
1: Vacation over हुआ है, अब जाना होगा school. Late morning उठने का बंद होगा rule. Bags on your shoulders, energy रखना full. क्योंकि मिर्ची लेके आ रहा है party super cool. Set your dreams, set your goals, confidence का tool. अब time आ गया है, सबको जाना होगा school. So join करो ये

0: से कंस स्पून पावर्ड बाय आई पे
1: लाया आई पे बेस्ट एक्शंस रेट्स भेजो खुशियां और पैसे दोनों ही घर पे
0: Entertainment partner Z5. Double the love, double the trouble. Varun Dhawan brings extra plot twist and extra drama in Hai Jawani To Ishq Hona Hai. Stream it now, only on Z5. Download the app now.
2: Pizza partner Papa John's. Enjoy double delight offer.
0: Two small pizzas at 44, two medium pizzas 66 and two large pizzas at 99 riyals. Papa John's, better ingredients, better pizza. Smile partner Naseem Dental Center. Her smile hope perfect. Sif Naseem Dental ke saath. Visit kare Muntaza ya Azizia, your trusted smile partner. Adventure Park Partner Jungle Zone. Double the fun, half the price at Jungle Zone Hyatt Plaza. Enjoy 50% off on your favorite rides and games every day until 4 PM. Don't miss out. घर बैठे चाहिए नया कार्ड? स्मार्ट चॉइस है ओरिरू मनी कार्ड. अप्लाई करो आज ही और क्यू पोस्ट से पाओ डोर स्टेप डिलीवरी कहीं भी इन कतर. एक्टिवेट करते ही शॉपिंग करो लोकल या इंटरनेशनल. और सुनो, हर एप्लीकेशन पर जीत सकते हैं एक ब्रांड न्यू आईफोन 17 प्रो मैक्स. लेट मत करो, ऑर्डर योर ओरिरू मनी कार्ड स्ट्रेट अवे. TNC अप्लाई.
3: Enjoy the golden days with Kalyan Jewelers. Enjoy 0% making charges on selected ornaments. Visit Kalyan Jewelers today to grab this limited period offer. Conditions apply.

0: गाने का नाम फॉर अ रीजन, करण औजला की आवाज में सुना दिया फॉर अ रीजन की एंटरटेनमेंट चाहिए आप। जिंदगी में कभी कभी कुछ बातों के पीछे रीजन होता है और कुछ बातें बस यूं ही कर देते हैं हम, उसके पीछे कोई रीजन नहीं होता है। जैसे मैं इस मुसाफिर कैफे की बात करूं तो ये आजकल बड़ा जबरदस्त ट्रेंड कर रहा है नेटफ्लिक्स पर, एक नई ओटीटी सीरीज जिसका नाम है मुसाफिर कैफे, जहां पर एक बंदा जिसे एक लड़की से प्यार हो जाता है लेकिन फिर वो लड़की उससे दूर हो जाती है, फिर वो कैफे खोल देता है और फिर उससे दूसरी लड़की से प्यार हो जाता है, एंड उसी की कहानी है। लिखा है इसे ऑथर दिव्य प्रकाश दुबे ने, और यहां पर आता है एक ट्विस्ट। दिव्य प्रकाश दुबे जब मैं बनारस में आरजे था वहां पर एक बार मेरे स्टूडियो के मेहमान बनकर आए, हम दोनों के बीच इतनी बातचीत हुई कि हमने वहां दो चार कहानियां और लिख डाली। लेकिन जब वो मुझे मुसाफिर कैफे के बारे में बता रहे थे तो मैंने कहा था कि यार एक दिन इस पर फिल्म बननी चाहिए, इतनी गजब की आपने किताब लिखी है। और मैं अभी अपने फेसबुक के मैसेज को चेक कर रहा था तो हम दोनों ने फेसबुक पर मैसेजेस आपस में जो किए उसमें मैंने लास्ट 2019 में उनसे कहा था कि यार आपकी ये किताब जबरदस्त है, इस पर एक फिल्म तो बननी चाहिए। 7 साल लगे लेकिन आज एक सीरीज तैयार है मुसाफिर कैफे, डू वॉच इट, क्योंकि मेरे दोस्त दिव्य प्रकाश दुबे ने लिखी है। मैं कोशिश करूंगा जल्द ही उनसे कुछ बातें करूं और आप तक उसे जरूर लेकर आऊं। फिलहाल के लिए मस्त मौला गौरव आपके साथ यहां बातें कर रहा है 89.6 मिर्ची वन इट्स हॉट।
1: ओ कुड़ियो गुड़ किन खा लिया स्वीटी, गुड़ वाली चा किन पीती स्वीटी, ओ जिदा नाड़ा किन खिचया किचके मर किन सीटी।

रियार साहब गड्डियां ऊंचिया रखी है, लेकिन मैं कहता हूँ इस लड़की ने उससे भी ऊंचा दिमाग रखा है। फर्स्ट क्लास में यानी कि क्लास वन में जब थी तब स्कूल छोड़ दिया था क्योंकि पैशन था, मैजिक सीखना है, कुछ अलग करना है, एंड होम स्कूलिंग शुरू कर दी। लेकिन पैशन इतना बड़ा था कि आज पूरी दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट रेनाउंड मेंटलिस्ट है। नाम है सुहानी शाह, अपने कतर में पहली बार आ रही है। यस, कतर कैलेंडर द मेंटलिस्ट सुहानी शाह लाइव इन कतर फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, प्रेजेंटेड बाय आईपे एसोसिएट पार्टनर डेरी क्वीन पापा जोन्स, रेस्टोरेंट पार्टनर एब्सोल्यूट बारबेक्यू, एंड हेल्थ पार्टनर किम्स हेल्थ, एंड साथ ही साथ रिफ्रेशमेंट पार्टनर बलादना, शॉपिंग पार्टनर डाइसो जापान, होम जारस, ये सब के सब एक साथ आए हैं ताकि हम आपको एक ऐसी खूबसूरत शाम दे पाए जो कतर ने इससे पहले कभी एक्सपीरियंस नहीं किया। बी अ पार्ट ऑफ दिस ब्यूटिफुल इवनिंग जहां पर सुहानी शाह हम सबके दिमाग को घुमा कर रख देंगी। प्रोडक्शन पार्टनर सिंफनी, हमारे इवेंट पार्टनर क्यूब इवेंट्स, मीडिया पार्टनर रिहाब मीडिया, एडवर्टाइजिंग पार्टनर ब्रांड आर्ट्स, साथ ही साथ हमारे मार्केटिंग पार्टनर क्यू स्क्वाड, ये सब के सब एक साथ आए हैं ताकि एक खूबसूरत शाम बना पाए एंड एक्सपीरियंस ऐसा दें जो सदियों तक याद रहे, ऐसा कहेंगे। हाँ जी, क्योंकि सुहानी जब शॉक करती हैं तो रॉक करती हैं। आई एम श्योर आपने अभी तक अगर अपनी टिकट्स बुक नहीं की है तो एसटीटी हमारे टिकटिंग पार्टनर सुनू पर जाकर एसटीटी पर बुक कर लो, क्योंकि अर्ली बर्ड ऑफर में अभी ये टिकट आपको डिस्काउंटेड प्राइस पर मिल रहे हैं। इसी उम्मीद में कि टिकट बुक करेंगे, एक साथ सब मिलेंगे एंड सुहानी को कतर में बेहतरीन फील कराएंगे, क्योंकि सुहानी अकेले नहीं आ रही है, इनके साथ एंटरटेनमेंट का असली तड़का लगाने चरण एंड यस सिंगर चरण एंड आशी आ रहे हैं, जो कि डांस एंड सिंगिंग डुओ है, कमाल कर देंगे। बस उसके लिए इंतजार कीजिए, 25 सितंबर की शाम के लिए अपना टिकट बुक कर लीजिए। मिर्ची इट्स हॉट, टाटा बाय, मिलेंगे कल शाम, वीकेंड की वाइब सेट करेंगे। तब तक हबीबी मासलामा।

0: It's all down to Dhoni, isn't it? Four balls left. They need 12 runs to win.
1: महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है ये सामने वाली टीम को कभी पता नहीं चला, लेकिन उसे पता है। सलमान खान अभी अपने फार्म हाउस में हॉर्स राइडिंग के बारे में सोच रहे हैं या
2: आर यू थिंकिंग ऑफ लाइक अ फ्लाइंग कार्पेट? आर यू थिंकिंग फ्लाइंग कार्पेट?
3: कैसे किया? सीरियसली कैसे किया ये?
1: उसे सब पता है। Ladies and gentlemen, your mind is about to get blown because number one mentalist from India, the Suhani Shah, is coming to Qatar for the very first time. Catch her live on 25th September at QNCC.
4: Early bird tickets out now. Get them at STD Snoonu. Book yours now.
1: The mentalist Suhani Shah.

0: हेलो मिर्ची हेल्पलाइन।
1: हाय देयर, व्हाट्स अप, टेल मी।
0: सर मैं नोटिस पीरियड पे हूँ और हाथ में दूसरी जॉब भी नहीं है, क्या करूँ?
1: वेल, ये बात तुझे पहले नोटिस करनी चाहिए थी सेनोरिटा। अब सेम जॉब ना मिलेगी दोबारा।

0: 89.6 Mirchi 1. Mirchi 1. It's hot.
1: मिर्ची घड़ी में इस वक्त बज रहे हैं 8। सुनते रहिए 89.6 मिर्ची 1, इट्स हॉट।
2: इन एसोसिएशन विद नसीब मेडिकल सेंटर, कतर्स लार्जेस्ट प्राइवेट मेडिकल सेंटर।

0: 2003 की ये मूवी थी अरमान. सोनू निगम और सुनिधि चौहान की आवाज में आपने गाना सुना अभी अभी. और आपको याद है अरमान मूवी का एक और गाना था प्रीति जिंटा के ऊपर पिक्चराइज्ड. तो प्रीति जिंटा जिसका कैरेक्टर निभा रही है वो लड़की ऐसे टेररराइज कर रही होती है कि मेरे दिल का तुमसे है कहना, मेरे ही रहना नहीं तो समझे. यू रिमेम्बर एग्जैक्टली दैट सेम मूवी जिससे ये गाना है मेरी जिंदगी में आए हो. बहुत दिन बाद सुना था ये तो मुझे लगा कि आपके लिए लेकर आऊं.
1: मिर्ची कैफे
0: सुन रहे हैं आप. मिर्ची कैफे मेरे यानी पारुल के साथ ओनली ऑन मिर्ची. कुछ कहानियां ना लाइफ में एक्चुअली ऐसी इंटरेस्टिंग होती हैं कि कोई आपकी जिंदगी में आता है और आई डोंट नो वेदर इट इज कॉल्ड लव एट फर्स्ट साइट, बट हाँ कुछ तो ऐसा होता है जो क्लिक होता है. बिकॉज ऐसे चलते चलते हम लोग कितने लोगों से मिलते हैं, कितने लोगों से हमारी आंखें टकराती हैं, बट कुछ आंखें ऐसी होती हैं विच दैट सोल चेक, जो इंस्टेंट कनेक्शन आंखें मिलने से फील होता है. यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट राइट. जरूरी नहीं है कि आपको प्यार हो जा रहा है हर किसी से, पर हाँ कुछ लोगों से मुलाकात एक कुछ अलग फील होती है. तो 1998 में वो एक पार्टी पे मिले थे जब दोनों की फिल्में रिलीज हुई थी. ठीक है, 8 साल तक दोनों ने एक दूसरे को डेट किया, इंस्टेंट क्लिक था उनका, और फिर 2006 में उनकी शादी हुई. मैं एक ऐसे बॉलीवुड कपल के बारे में बता रही हूँ, लेकिन यू नो व्हाट इंटरेस्टेड मी मोर वाज मुझे एक्चुअली बहुत लेट पता चला था कि ये इनकी वाइफ हैं. सो हैव यू हर्ड दैट सॉन्ग, आपने करीब मूवी देखी थी, बॉबी देओल, नेहा एक लड़की थी बहुत प्यारी सी, उनकी फिल्म आई थी करीब जिसमें वो गाना था चुरा लो ना दिल मेरा टडंग सनम, राइट. तो वो जो लड़की है नेहा वो उनकी करीब फिल्म रिलीज हुई थी, और ये जो हमारे साहब हैं इनकी फिल्म रिलीज हुई थी सत्या. कैन यू गेस हुम आई एम टॉकिंग अबाउट. नेहा इज द वाइफ ऑफ मनोज बाजपेयी. गाइस मुझे ये नहीं पता था, अगर आपको पता था तो वेल वेरी गुड, बट मुझे बहुत लेट पता चला था. मुझे लगा कि आपको बताती हूँ. मेन बात जो मुझे आपको बतानी थी वो यही थी कि मनोज बाजपेयी की वाइफ है दिस गर्ल जिसको आपने करीब में बॉबी देओल के साथ इतनी प्यारी सी सुंदर सी बोली सी लड़की डांस करते हुए देखा. ऑफकोर्स वी अंडरस्टैंड मनोज सर. यही गाना मैं अभी आपके लिए लेकर आई हूँ फ्रॉम द फिल्म करीब. ये मेरी आज टाइम मशीन का गाना है विद द स्टोरी बिटवीन मनोज एंड नेहा. सुनो इस गाने को कुमार सानू और संजीवनी की आवाज में ओनली ऑन मिर्ची कैफे. स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, इट्स हॉट.

0: Mirchi.
1: Iskabana, uskabana, sakabana. Yabana. Murga, murga. La vieja la murga.
2: Mirchi, murga.
3: Hello.
4: Hi. ये पे आपकी फ्री कॉल है। अगर आप अकेले बैठे हुए हैं और चाहते हैं किसी को अपना बनाना, किसी से अभी बात करना, तो हैश दबाइए। कृपया लाइन होल्ड करें, हम आपकी कॉल उस तक पहुंचा रहे हैं जिससे आप बात करना चाहते हैं।
5: हेलो।
3: हेलो,
5: कौन बोल रही हैं?
3: आप कौन बोल रही हैं?
5: बोल नहीं रही हूँ, मैं बोल रहा हूँ यार, मेरी लड़की से बात करानी थी, फोन आया था मेरे पास।
3: तो भाई मेरे पास भी तो फोन आया था।
5: तो यार आप कहाँ से बीच में आ गए? वो कह रहे थे लाइफ पार्टनर, मैं लड़की से बात करना चाह रहा हूँ।
3: टाइम पे दोनों को भी, आपको भी करा होगा फोन, उन्होंने मुझे भी करा होगा, तो मैंने भी मिला दिया।
5: मैं क्या पागल हूँ यार, मैं आपसे बात करना चाहूंगा, मुझे भी तो टाइम पास करना है, लड़की का इंतजार कर रहा था मैं यार। मेरे पास फोन आया था, आप अपनी चला रहे हैं, मैं आपसे झूठ बोल रहा हूँ क्या?
3: ये तो वहाँ से मेरे पास, अरे यार जैसे आपके पास आया कि अगर आप खाली बैठे
5: हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है।
4: हाय, आप दोनों की कॉल गलती से मिल गई है, कृपया लाइन होल्ड रखें, आप दोनों को अपने अपने पार्टनर तक पहुंचा दिया जाएगा।
5: हेलो।
3: हेलो,
5: कौन बोल रही है? अरे भाई Hello? यार मैं लड़की के चक्कर में, यार कहां से आ रहे हो यार बीच में, मैं मेरी लाइन मैं कहां से लाइन पे आ रहा हूँ यार, तू लाइन में आ रहा है, लाइन में आ रहा हूँ तो एक घंटे से मैं एक लड़की से बात करने के लिए चाह रहा हूँ यार, तू मुझ पर चिल्ला रहा है, मेरे पास कॉल आई है यहाँ पे, तो दो मिनट रुक के तू कर ले, तेरे कुछ जा रहा
3: है,
5: बदतमीजी मत कर, तू बड़ा शरीफ आदमी है जो यहाँ पे इस लाइन में आया हुआ है, इस सर्विस में।
4: हाय, कृपया करके लड़ाई बंद करें, अब आपकी लास्ट फाइनल कॉल, हम उस लड़की तक पहुँचा रहे हैं, लेकिन लाइन तक पहुँचने के लिए आप कहिए मेरे साथ कुकड़ू कु। सर मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, आप रेडियो मिर्ची पे हैं, दुनिया आपको सुन रही है, कम से कम इतनी तमीज होनी चाहिए यार, आप लड़की से बात करना चाह रहे हैं, किस तरह का टाइम पास करना चाह रहे थे?
3: तो वो आ रहा है, मुझे लग रहा भाई मुझे भी टाइम पास करना था, मुझे भाई मालूम था ये कुकुकू।
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट, इट्स हॉट।
6: It's all down to Dhoni, isn't it? Four balls left, they need 12 runs to win.
7: महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है ये सामने वाली टीम को कभी पता नहीं चला, लेकिन उसे पता है। सलमान खान अभी अपने फार्म हाउस में हॉर्स राइडिंग के बारे में सोच रहे हैं, या
8: आर यू थिंकिंग ऑफ लाइक अ फ्लाइंग कार्पेट? आर यू थिंकिंग फ्लाइंग कार्पेट?
9: कैसे किया, सीरियसली कैसे किया ये?
7: उसे सब पता है। Ladies and gentlemen, your mind is about to get blown because number one mentalist from India, the Suhani Shah, is coming to Qatar for the very first time. Catch her live on 25th September at QNCC.
10: Early bird tickets out now. Get them at STT Snoo Noo. Book yours now.
7: The mentalist Suhani Shah.

0: अपने मूवी से आपने गाना सुना जावेद अख्तर साहब के लिरिक्स, के एस चित्रा शंकर महादेवन की आवाज, ए आर रहमान सर का म्यूजिक। बड़े दिनों बाद सुनाना है गाना, सच बताना।
1: मिर्ची कैफे
0: सुन रहे हैं आप, मिर्ची कैफे मेरे यानी पारुल के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। काजोल थी इसमें, बड़ी प्यारी फिल्म थी, और इसके जो लिरिक्स है ना, एक बगिया में रहती है एक मैना, उस बाग से मैं आपके लिए एक स्टोरी लेकर आई हूँ। सो हैव यू एवर हर्ड द मैरीगोल्ड थ्योरी? मैरीगोल्ड होता है ना, वो क्या करता है कि इंसेक्ट्स वगैरह को दूर रखता है अपनी सुगंध से, व्हाटएवर फ्रेग्रेंस इट हैज, उससे दैट प्लांट हैज दैट ऑरा, दैट वाइब, और उसमें ऐसे साइंटिफिकली कंस्ट्रक्टेड कुछ यू नो केमिकल्स होते हैं कि वो अपने आसपास के और पौधों को अच्छे से फ्लरिश करने में हेल्प करता है। एंड यू नो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट प्लांट ओनली। कुछ लोग होते हैं ना जिनसे हम कभी कभी मिलते हैं और हमें सडनली फील होती है ऐसी बर्स्ट ऑफ एनर्जी, हैप्पीनेस, और कुछ कुछ लोग होते हैं जो बहुत ड्रेनिंग होते हैं। आप उनसे एक मिनट भी बात करोगे ना इन योर ऑफिस, या कहीं मिल गए आपको पड़ोसी वड़ोसी चलते फिरते, आपको ऐसा लगेगा यार अच्छा सा नहीं लगा इस इंसान से मिलके, यू नो अंदर से यू फील सम सैडनेस। सो बेसिकली ना, ये मैरीगोल्ड थ्योरी के बारे में पढ़कर मुझे एक ऐसा चेक ऑन करने का मन किया अपने ऊपर, जो कि आप सब भी कर सकते हो। क्या आपकी एनर्जी वैसी ड्रेनिंग वाली है? क्या आप जिससे मिलते हो वो सामने वाला अच्छा फील करेगा आपसे मिलने के बाद, या ड्रेन्ड फील करेगा? कीप दैट चेक ऑन हमेशा। अगला गाना आपके लिए लेकर आई हूँ सोनू निगम और महालक्ष्मी अय्यर की आवाज में। भाई ये एक ऐसा रोमांटिक गाना है जिसको आप जब भी सुनोगे ऐसा लगेगा अभी अभी कहीं से ऐसा ताजा ताजा निकल के आया है। बंटी और बबली से ये गाना है, दिस इज अ ब्यूटीफुल ट्रैक, ओनली ऑन मिर्ची कैफे। आपके लिए लेकर आई हूँ, मेरा नाम है पारुल, स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, इट्स हॉट।

0: अरे यार, आशा भोसले की अमेजिंग आवाज में जानम समझा करो का ये गाना, ऑफ कोर्स एल्बम का, मूवी का नहीं, रात शबनमी। यार मेरे शो पे यू नो दिस मिर्ची कैफे आप हमेशा ये देखेंगे कि कोई ना कोई 90s पॉप एरा से मैं गाना लेकर आती ही आती हूँ आपके लिए, बिकॉज यू नो हमने वो जो जमाने थे जो कैसेट में भरवा भरवा के गाने अपने लिए रखे थे, यार उससे कैसे हम बाहर आ सकते हैं कभी भी, नॉट एवर। ओके,
1: मिर्ची कैफे
0: सुन रहे हैं आप, मिर्ची कैफे मेरे यानी पारुल के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। और मैं आपको अभी यहाँ पर एक ऐसी लिस्ट बताने वाली हूँ जो पता नहीं आपने कभी सुनी है नहीं सुनी है, एंड इट्स अ लिटिल यू नो ऑफ बीट बिकॉज सब आपको ऐसे इंग्लिश की किताब में बताते हैं, मोस्टली द बुक रीडर्स दे लव रीडिंग इंग्लिश बुक्स। अगर आपने कभी भी कोई हिंदी की किताब नहीं पढ़ी है, जस्ट लिसन टू दिस, मैं आपको ऐसे कुछ 3-4 हिंदी की मेरी फेवरेट बुक्स के नाम बता रही हूँ जिन पे रिसेंटली एक पिक्चर भी बनी, OTT पे जो रिलीज हुई थी यू नो सीरीज। अगर आपने ये नहीं पढ़ी है, कभी आपको मौका मिले, यार हिंदी की किताबें पढ़ना इज अ लेजिट थिंग। ओके, सुन लो अच्छे से, गुनाहों का देवता, अक्टूबर जंक्शन, गोदान, मधुशाला एंड मुसाफिर कैफे, ये किताबें By God, अगर आपने कभी पढ़ी ना आपको मजा आ जाएगा। मैं रिपीट कर रही हूँ, गुनाहों का देवता, अक्टूबर जंक्शन, गोदान, मधुशाला या फिर मुसाफिर कैफे।

से कोई भी किताब अगर आपने इनमें से पढ़ी है ओके तो मुझे जरूर लिखना. 7045983983 इज माई व्हाट्सएप नंबर. असाइड इंस्टाग्राम का मेरा आईडी है parals.world. यार लेट्स डिस्कस हिंदी बुक्स, क्योंकि मुसाफिर कैफे ने ये बात अच्छी शुरू कर दी है जब से वो सीरीज आई कि यू नो पीपल आर टॉकिंग अबाउट हिंदी बुक्स लेजिट. और मैंने भी पहले पढ़ी थी और अब मैं बहुत वक्त से हिंदी बुक्स नहीं पढ़ रही थी एंड नाउ आई एम गोइंग बैक टू देम बिकॉज व्हाई नॉट. अगला गाना प्रियांश श्रीवास्तव जोनिता गांधी, ये मैं आपके लिए लेकर आई हूँ फ्रॉम मुसाफिर कैफे, क्योंकि ये बहुत ही प्यारे फील वाले गाने हैं मैन. मजा आ गया मुझे इनको सुनकर. और क्योंकि मेरे शो का नाम है मिर्ची कैफे और यहाँ पर आपकी पसंद का ध्यान रखना मेरा काम है. लिसन टू दिस ट्रैक. अभी आ रही हूँ छोटे से ब्रेक के बाद. स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट.

0: Hollywood, Bollywood, Bolda. Only on Mirchi. It's hot.
1: नवाजुद्दीन सिद्दीकी, अगर आपको किसी को ट्रोल करना होता तो कैसे करते?
2: मैं करूँ?
3: आप करोगे?
2: नहीं, मैं करवाता हूँ. मतलब मेरा होता है.
3: सर, वो तो पता है. मेरा बस चलता है, एक एक को घुसड़ मार के आती हूँ.
2: माय फ्रेंड. हाउ आर यू माय फ्रेंड?
1: ये थे नवाजुद्दीन सिद्दीकी ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.
0: बॉलीवुड बोल्डा. बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा. ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.

0: सच सच बताना कितने दिनों बाद सुना आपने ये गाना. कुमार सानू की बेहतरीन आवाज में ये बेहतरीन गाना फ्रॉम दोज इयर्स. कुछ ना कहो यार, व्हाट अ ब्यूटीफुल सॉन्ग.
1: मिर्ची कैफे
0: सुन रहे हैं आप. मिर्ची कैफे मेरे यानी पारुल के साथ. शो के एंड तक आते आते मैं थोड़ी सी उदास हो जाती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है अरे यार अब नेक्स्ट एपिसोड पे आपसे बातचीत करने का वेट करना पड़ेगा मुझे, और वो भी फिर कुछ वक्त बाद आएगा टाइम. सो आई होप आपको मजा आता है ये गाने सुन के जो मैं आपके लिए स्पेशली चुन चुन के लाती हूँ. आज मैं उन सबको थैंक यू करना चाहती हूँ. सो आकाश, गगन, पी शर्मा, राज, मौलिका, विवेक पटनायक, नीलाद्री, थैंक यू सो मच. जब भी मेरा शो चल रहा होता है मुझे आपके मैसेजेस आते हैं, आप मेरे गानों में डीपली इन्वॉल्व रहते हो, मुझे बताते हो कि कौन से गाने आने चाहिए. तो सुनो, मेरा जो ये रूम है ना जहाँ पे मैं बैठी हूँ स्टूडियो, उसमें सामने एक खिड़की है जिससे मुझे बाहर पेड़ दिख रहे हैं, आसमान दिख रहा है, कुछ बिल्डिंग्स दिख रही हैं, और मैं आप सबसे बात कर रही हूँ, लेकिन मैं बैठी एक कमरे में हूँ एक माइक पे. रेडियो का जो ये मैजिक है ना कोई नहीं छीन सकता, बिकॉज जो भी रेडियो सुनता है उसकी एक अपनी अलग पिक्चराइजेशन बनती है. ये सब OTT वीडियोस रेडियो का मैजिक कहीं नहीं जा सकता. अगर आप भी इस बात को ट्रस्ट करते हैं मुझे अभी लिखकर भेजिए हाय हेलो लेट्स चैट. और आप अगले एपिसोड पे कौन सा गाना सुनना चाहते हो ये तो आप मुझे हमेशा लिख सकते हो. 7045983983 व्हाट्सएप नंबर, paruls.world यानी कि मेरी दुनिया इंस्टाग्राम पे ढूंढो इस आईडी को और मुझे DM करो. मैं सबका जवाब देती हूँ, पक्का झूठ नहीं बोल रही, ट्राई करके देख लो. अगला गाना आपके लिए छोड़कर जा रही हूँ विशाल ददलानी, श्रेया घोषाल, खबर नहीं. क्योंकि आसमान और जमीन कहाँ है, हमारी जिंदगी आगे कहाँ जाने वाली है, कुछ खबर नहीं होते हुए भी रोज हम उस जद्दोजहद में लगे रहते हैं. दैट इज द ब्यूटी ऑफ लाइफ, द अनप्रेडिक्टेबिलिटी. नहीं चलो ठीक है, इसी थॉट के साथ यहाँ पर छोड़ के जा रही हूँ आपको. अगले एपिसोड में मुलाकात होगी फटाफट से, तब तक के लिए इंस्टाग्राम और नंबर आपके लिए छोड़ के जा रही हूँ. लेट्स कैच अप देयर. सुनते रहो मिर्ची, मेरा नाम है पारुल, मिर्ची कैफे इज द शो. मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में. स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट.

अच्छा, तुम्हारे साथ भी कभी ना कभी होता होगा कि तुमने कोई चीज बहुत मन से, बहुत शिद्दत से बनाई हो, एंड यू वांटेड एवरीबॉडी टू अप्रिशिएट दैट, लेकिन ऐसा हुआ नहीं. लोगों को ना तारीफ करने का मन ही नहीं किया. तो डिसअपॉइंटिंग तो लगता ही है. पुरानी जीन्स पे हेलो हेलो वेलकम, दिस इज मी श्रेया. और आते ही बताना चाहती हूँ कि बिल्कुल ऐसा लगा था देवानंद और विजय आनंद साहब को, दोनों ब्रदर्स को, जब उन्होंने बनाई थी फिल्म गाइड. तो जब गाइड का प्रीमियर हुआ ना, पूरी इंडस्ट्री वॉज इन्वाइटेड. एंड विजय आनंद को लगा था कि थोड़ी ऑफ बीट फिल्म है, थोड़ी उनकी जितनी भी कमर्शियली सक्सेसफुल, यू नो, चटपटी मसालेदार बॉलीवुड फिल्म है उनसे अलग है, तो लोग आकर के ना उनको अप्रिशिएट करेंगे, कंग्रेचुलेट करेंगे कि कितना अलग कुछ बना दिया है. लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं. नोबडी वॉकड अप टू हिम एंड कंग्रेचुलेटेड हिम, एंड दिस लेफ्ट हिम शैटर्ड कि भाई क्या हो गया, ऐसा क्यों. लोगों को एक्चुअली गाइड का क्लाइमैक्स और इतनी अलग फिल्म ना पसंद ही नहीं आई, स्पेशली जो लोग प्रीमियर देखने आए थे, यानी भाई इंडस्ट्री के लोग. फिर क्या हुआ, गाइड यू नो इतनी सक्सेसफुल कैसे हुई, ये भी इंटरेस्टिंग कहानी है, सब बताऊंगी. अभी अभी तो आई हूँ, थोड़ा सा इंतजार करो. पुरानी जीन्स पे दिस इज मी श्रेया.

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: मिर्ची इसका बाना उसका बाना सबका बाना बाना मुर्गा मुर्गा नफीस वाला मुर्गा मिर्ची मुर्गा
2: मिर्ची
3: नवीद
2: बोल रहा हूँ।
3: अगर किसी का वो जो बनाते हैं आप उल्लू के लिए क्या करना पड़ेगा
2: वो आपको मुझे बताना होगा।
3: तो मैं अभी बता दूँ।
2: एक सेकेंड, ये फॉर्म भर देते हैं। क्या नाम है आपका?
3: संजना।
2: संजना किसका मुर्गा बनवाना है आपको?
3: अपने हस्बैंड का।
2: क्या बात कर रही हैं, और कोई नहीं मिला आपको?
3: फिलहाल अभी कोई और दिमाग में नहीं आ रहा।
2: अच्छा संजना, मुझे प्लीज आप ये बता देंगे कि ये इनको कितना गुस्सा आता है ताकि मैं उसी हिसाब से इनसे बात करूँ फिर मुर्गा बनाऊँ। बहुत ज्यादा भड़क जाते हैं?
3: भड़क भी
2: जाते हैं। अरे बाप रे, तो मुझे संजना प्लीज बता देंगे किस तरह भड़कते हैं ये?
3: अब्यूजिंग वे में, थोड़ा
2: अब्यूजिंग वे में। जैसे कि कैसे?
3: आप मुझे शुरू कीजिए फिर मैं बताता
2: हूं। ओके चलिए।
4: हेलो सर, मैं इस बैंक से बोल रहा हूँ, फलाना बैंक से। सर आपको लोन देना है, दो मिनट दे सकते हैं?
3: नहीं मेरे पास अभी टाइम नहीं है।
4: सर थोड़ा सा दो मिनट दे दीजिए यार, क्या बात जाती है आपकी? अरे शर्म किस बात की यार, हम लोन बेच रहे हैं, आप मुझे बता दीजिए। सर आप एक तो तमीज से बात करिए, आप लोन लेना है ले लीजिए, तमीज से बात करिए, बदतमीज कहीं का।
2: मुझे भी अच्छा नहीं लगता कि मैं इस तरीके से किसी का मुर्गा बनाऊं। और संजना मैं तुम्हें ये कहना चाह रहा था कि तुम्हारा मुर्गा बन चुका है। मैं रेडियो मिर्ची पे।
3: मैंने अपना बनवाने के लिए फोन दे दिया था।
2: हम तो किसी का ही बनाए थे, आपके हस्बैंड से ज्यादा हमदर्दी हो गई, किसी दिन उनका ही बनाएंगे, फिलहाल आपका बन गया। मेरे साथ प्यार से कह दो एक बार, कुकड़ू कू थैंक यू।
1: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची।
5: It's all down to Dhoni, isn't it? Four balls left, they need 12 runs to win.
6: महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है ये सामने वाली टीम को कभी पता नहीं चला, लेकिन उसे पता है। सलमान खान अभी अपने फार्म हाउस में हॉर्स राइडिंग के बारे में सोच रहे हैं या
7: आर यू थिंकिंग ऑफ लाइक अ फ्लाइंग कार्पेट? आर यू थिंकिंग फ्लाइंग कार्पेट?
8: कैसे किया, सीरियसली कैसे किया ये?
6: उसे सब पता है। Ladies and gentlemen, your mind is about to get blown because number one mentalist from India, the Suhani Shah, is coming to Qatar for the very first time. Catch her live on 25th September at QNCC.
9: Early bird tickets out now. Get them at STT Snoo Noo. Book yours now.
6: The mentalist Suhani Shah live in

मूवी बॉक्स ऑफिस पे खुली तो एकदम फुल हाउस थी, लेकिन उसके बाद सब डिप करने लगा। लोग आ नहीं रहे थे देखने, टिकट्स बिक नहीं रहे थे। पुरानी जीन्स पे आप और श्रेया के साथ एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द क्लासिक हिट फिल्म गाइड, जिसमें थे देव साहब, उनके भाई विजय आनंद ने फिल्म बनाई थी ऑन द वेरी वेरी पॉपुलर बुक द गाइड विच वॉज रिटन बाय आर के नारायण। तो मैं बता रही थी कि जब लोगों को ये पता चला कि भाई देव साहब की फिल्म है तो लोग डेफिनेटली बॉक्स ऑफिस पे इसको देखने गए, लेकिन लोगों को इतनी अनकन्वेंशनल ऑफ बीट फिल्म और स्पेशली क्लाइमैक्स ना समझ में आने के चक्कर में ना कुछ ही दिनों में इसका कलेक्शन डिप करने लगा। बट कहते हैं बाय वर्ड ऑफ माउथ ये फिल्म इतनी पॉपुलर हुई और लोगों को जब इसका क्लाइमैक्स कुछ समझ में आया तो लोग वापस इस फिल्म को देखने लगे। आई मीन दिस वॉज वन ऑफ दोज फिल्म जिसको लोगों ने दो दो तीन तीन बार जा करके देखा एंड इसीलिए बाद में इसका कलेक्शन ओ हो आसमान छूने लगा। That is why 7 Filmfare Awards जीते थे इस फिल्म ने उस साल। पुरानी जीन्स पे आज इसी फिल्म की बातें मेरे यानी आपकी श्रेया के साथ, so don't you go anywhere.

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: वेकेशन ओवर हुआ है, अब जाना होगा स्कूल। लेट मॉर्निंग उठने का बंद होगा रूल। बैग्स ऑन योर शोल्डर्स, एनर्जी रखना फुल, क्योंकि मिर्ची लेके आ रहा है पार्टी सुपर कूल। सेट योर ड्रीम्स, सेट योर गोल्स, कॉन्फिडेंस का टूल। अब टाइम आ गया है, सबको जाना होगा स्कूल। सो ज्वाइन करो ये पार्टी, ये होगी सुपर कूल। 'Cause it's time for मिर्ची बैक टू स्कूल।
2: Presented by Balagna Milk Laban Yogurt. Experience the fresh, creamy taste that Qatar loves. Refreshing every moment with every sip and spoon. Powered by iPay.
3: Laya iPay, best actions reads. Bejo khushiyan aur paise dono hi ghar pe.
2: Entertainment partner Z5, double the love, double the trouble. Varun Dhawan brings extra plot twist and extra drama in Hai Jawani To Ishq Hona Hai. Stream it now only on Z5. Download the app now.
4: Pizza partner Papa John's, enjoy double delight offer.
2: Two small pizzas at 44, two medium pizzas 66, and two large pizzas at

0: every day until 4 p.m. Don't miss out.
1: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर.

ऑनलाइन था ना, इसीलिए थोड़ा रोमांस एंगल भी दिखाया गया। बट ये बात आर के नारायण को बिल्कुल पसंद नहीं आई। आफ्टर ही सॉ द फिल्म ही गेव एन इंटरव्यू टू अ मैगजीन जिसमें उन्होंने कहा था कि ये द मिसगाइडेड गाइड है। पुरानी जीन्स पे आज इसी फिल्म की बातें, इसी फिल्म के गाने विद मी श्रेया। तो बस यहीं पे रहना पड़ेगा।

इन्होंने तो इसको द मिसगाइडेड काइट बोल दिया था। पुरानी जींस पे आप और श्रेया के साथ एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द क्लासिक हिट फिल्म जिसमें थी वहीदा रहमान, जिसमें थे देव आनंद साहब, विजय आनंद ने बनाई थी। मूवी का नाम द गाइड। ये फिल्म जो थी ये अडेप्टेशन थी आर के नारायण की वेरी पॉपुलर फिल्म द गाइड की। तो भाई उनसे सारी परमिशन ली गई थी इस फिल्म को बनाने के लिए, लेकिन इसमें थोड़ा बॉलीवुड का तड़का तो

0: बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा
1: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: नेहा शर्मा, आपको आए दिन कोई ना कोई ट्रोल करता रहता है, अगर आपको किसी को ट्रोल करना होता तो क्या कहते?
3: अंदर से मैं ट्रोल करना चाहती हूँ but I can't. But if I were to, I would. You know, there are people, it's unbelievable. कुछ लोग नीचे लिखते हैं, रोज जिम जाते हो फिर भी पतले नहीं हो रहे, तुम लोगों को क्या सिक्स पैक्स एट पैक्स है क्या घर पे? जाओ ना जिम, इट्स हार्ड वर्क, हाँ जाओ डेली जिम, इट्स नॉट ईजी।
2: करेक्ट, नेहा शर्मा सही कह रही है, इट इज वेरी इजी टू ट्रोल बट इट्स नॉट ईजी टू गो टू द जिम। आप सुन रहे हैं मिर्ची इट्स हॉट।
0: Bollywood Boldal, Bollywood, Bollywood, Bollywood Boldal,
1: only on Mirchi, it's hot.
4: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

0: पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द फिल्म गाइड। तो मैं आपको बता रही थी कि देव आनंद और विजय आनंद ने भाई जब अपने म्यूजिशियंस फॉर द फिल्म चूज किए, उनको हायर किया, तो उसमें थे हसरत जयपुरी साहब एज लिरिसिस्ट। लेकिन कुछ टाइम देने के बाद ना दोनों भाइयों को हसरत जयपुरी साहब के गाने कुछ समझ नहीं आए, तो उन्होंने शैलेंद्र जी को हायर किया। शैलेंद्र जी ने इस फिल्म के गाने बनाने शुरू किए। लेकिन जब हसरत जयपुरी साहब जा रहे थे और शैलेंद्र जी आ रहे थे, तो हसरत साहब ने ना एक गाना जो आधा अधूरा था वो सुनाया था शैलेंद्र जी को, और उस गाने की जो पहली लाइन थी ना वो शैलेंद्र जी ने रखी। वो गाना ये था, और इसकी जो फर्स्ट लाइन है ना, ये लाइन दी थी हसरत साहब ने, आगे इसको कंटिन्यू किया शैलेंद्र जी ने।
1: रात न जाए तो ना आए तेरी याद सता।
0: So this line, दिन ढल जाए हाय रात ना जाए तू तो ना आए तेरी याद सताए, ये वाली जो लाइन है ये हसरत साहब की थी। लेकिन अगर आप क्रेडिट देखोगे तो ये शैलेंद्र जी का है, बिकॉज आफ्टर दैट द एंटायर सॉन्ग वॉज रिटन बाय हिम। यही गाना कमिंग अप राइट नेक्स्ट। मैं हूँ श्रेया ऑन पुरानी जीन्स।

विजय आनंद ने दादा को बोला था कि इस पूरे गाने को ऐसे कंपोज करो जैसे हर स्टैंजा ना अलग गाना है। पुरानी जीन्स पे आप और श्रेया के साथ एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द फिल्म गाइड, इस फिल्म की बातें और इस फिल्म के गाने। अच्छा, ये एक गाना जो गाइड का था ना, दिस वॉज अ वेरी टफ सॉन्ग टू कंपोज। एक तो ये लंबा भी था, इसमें हरकतें भी बहुत सारी थी और दादा को ना थोड़ा प्रॉब्लम आ रही थी। तो विजय आनंद हु इज डायरेक्टिंग द फिल्म, उन्होंने पता है उनसे क्या कहा कि हर स्टैंजा को ऐसे कंपोज करो जैसे कि ये अलग गाना हो। एंड विजय आनंद ऑल्सो थॉट कि गाइड में ना वो हर स्टैंजा को अलग अलग जगहों पे दिखाएंगे, ऐसे ही पिक्चराइज करेंगे, जबकि वो हुआ नहीं बिकॉज वहीदा रहमान का खूबसूरत डांस इस गाने में था। यही गाना कमिंग अप राइट नेक्स्ट। मैं हूँ श्रेया ऑन पुरानी जीन्स।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: मिर्ची।
2: हेलो
3: मैडम, गुड इवनिंग।
2: हाय,
3: बैंक से बोल रहे हो ना? हमारी नई स्कीम आई है मैडम, ताजी स्कीम है, बढ़िया स्कीम है। इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट बिल्कुल कम।
2: तो सब्जी बेच रहे हैं या लोन के लिए?
3: पहले सब पहले सब्जी बेचता था।
2: अगर अगली बार फोन आ गया ना
3: मैडम, तमीज से बात करो वरना यहीं से चपेट मारूंगा सारे दांत। बात कर दो।
2: हेलो
3: मैडम, अगर ये स्कीम लोगी तो धनिया साथ फ्री दे दूंगा
2: वहीं आके ऐसा सिर पैर तो मारूंगी ना।
4: प्रीति, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। मुझे पहली बार ही एहसास हुआ कि लड़कियों से ज्यादा पंगे लेने नहीं चाहिए, अपने ऊपर पड़ जाती है यार। आप रेडियो मिर्ची में इतना गुस्सा क्यों कर रही हैं? आपका मुर्गा बन गया
3: मेरा, आपका तो मुर्गा बन गया।
4: प्रीति, ये जो बीप बीप हो रहा था ये बीप हटा दूं मैं एक बार? दिल्ली को सुना दूं?
2: नहीं,
4: से सॉरी।
2: I'm sorry.
4: प्यार से बोल दीजिए कोकड़ो को है।
2: कुकड़ू गो।
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची।
5: It's all down to Dhoni, isn't it? Four balls left, they need 12 runs to win.
6: महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है ये सामने वाली टीम को कभी पता नहीं चला, लेकिन उसे पता है। सलमान खान अभी अपने फार्म हाउस में हॉर्स राइडिंग के बारे में सोच रहे हैं।
7: या आर यू थिंकिंग ऑफ लाइक अ फ्लाइंग कार्पेट? आर यू थिंकिंग अ फ्लाइंग कार्पेट?
8: कैसे किया? सीरियसली कैसे किया ये?
6: उसे सब पता है। Ladies and gentlemen, your mind is about to get blown because number one mentalist from India, the Suhani Shah, is coming to Qatar for the very first time. Catch her live on 25th September at QNCC.
9: Early bird tickets out now. Get them at STT Snoonu. Book yours now.
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

दादा ने अपना पूरा बटुआ खाली कर दिया था मेलोडीज से भरा हुआ फॉर दिस फिल्म। पुरानी जीन्स पे आप और श्रेया के साथ एंड 1970s में फिल्म आई थी गाइड, जिसकी आज बात हो रही है। सो नवकेतन फिल्म्स यानी देव साहब का बैनर और उनके भाई विजय आनंद का बैनर, वो हमेशा जब भी फिल्म बनाते थे तो एस डी बर्मन साहब को हायर करते थे। इस बार क्या हो रहा था कि दादा उस टाइम पे आ चुके थे जब उनकी जगह नए म्यूजिशियंस को हायर किया जा रहा था, फिर चाहे वो उनके बेटे आर डी बर्मन साहब ही क्यों ना हो। सो एस डी बर्मन साहब को ना एक मौका, वो एक फिल्म चाहिए थी जिसमें वो अपना मिरेकल एक बार फिर से दिखा पाए, एंड गाइड प्रूव्ड टू बी वन ऑफ देम। व्हाई? बिकॉज उन्होंने अपना सारा बटुआ खाली कर दिया। मेलिफ्लुइस ट्यून्स लाइक आओ, गाता रहे मेरा दिल ले लो, तेरे मेरे सपने ले लो, यू नो इतने सारे गाने, कांटों से खींच के आंचल ले लो, पिया तो से ले लो। तो इसी बात पे आज फिर जीने की तमन्ना है। कमिंग ऑन राइट नेक्स्ट, मैं हूँ श्रेया। एस डी बर्मन साहब ने कंपोज किया है, लता जी की आवाज़ है और वहीदा रहमान का डांस था, शैलेंद्र जी के लिरिक्स। अप नेक्स्ट फिल्म

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर.
1: वेकेशन ओवर हुआ है अब जाना होगा स्कूल. लेट मॉर्निंग उठने का बंद होगा रूल. बैग्स ऑन योर शोल्डर्स एनर्जी रखना फुल क्योंकि मिर्ची लेके

0: गूगल आपकी सर्च हिस्ट्री जानता है, इंस्टाग्राम आपकी लाइक्स, नेटफ्लिक्स आपकी चॉइस, लेकिन सुहानीशा वो सब जानती है बिना किसी प्रॉम्प्ट, पासवर्ड या परमिशन के। एक्सपीरियंस द इम्पॉसिबल फॉर द फर्स्ट टाइम, इंडियाज मोस्ट सेलिब्रेटेड मेंटलिस्ट सुहानीशा लाइव इन कतर ऑन 25th September एट QNCC।
1: Early bird tickets out now. Get them at STT Snoonu. Book yours now.
2: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

देव आनंद को लगा कि उनका कोई सिग्नेचर ट्यून, सिग्नेचर गाना तो है ही नहीं इस फिल्म में, और फिल्म काफी टाइट चल रही, काफी स्ट्रेस में चल रही है। पुरानी जीन्स पे आप हो श्रेया के साथ एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द फिल्म गाइड टुडे। सो देव साहब ने जब ये पूरी पिक्चर बन गई और देखी अपने भाई विजय आनंद, हु वाज डायरेक्टिंग द फिल्म एज वेल, उनके साथ बैठ करके ना, तो देव साहब को लगा कि भाई इसमें मेरा कोई सिग्नेचर गाना तो है ही नहीं, क्योंकि वो जनरली एक आध गाना ऐसा सुपर डुपर हिट देते थे अपनी फिल्म का जिसमें बस वो गुनगुना रहे हैं और चलते जा रहे हैं, जैसे कि हम दोनों में है ना, मैं जिंदगी का साथ निभाता, राइट। तो क्या हुआ, जब पूरी पिक्चर कंप्लीट हो गई फिर इस पे म्यूजिशियंस को वापस बैठाया गया, एस डी बर्मन साहब, शैलेंद्र जी ने गाना लिखा एंड ऑफ कोर्स देव साहब इसमें एकदम अपनी मस्ती में चलते जा रहे हैं और गा रहे हैं मेरा दिल। यही गाना कमिंग अप राइट नेक्स्ट। मैं हूं श्रेया अनपुरा।

जब पहला सीन लिया गया तो डायरेक्टर विजय आनंद को लगा कि देव साहब के आगे वैजंती माला तो थोड़ी चबी चबी लग रही है पुरानी जीन्स पे. आप श्रेया के साथ एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द फिल्म गाइड. सो वैजंती माला को इस फिल्म के लिए चूज किया गया था और डायरेक्टर विजय आनंद ने ना ऐसे ही जब फर्स्ट टेक लिया तो दे थॉट कि वैजंती माला देव साहब के आगे थोड़ी प्लम्प लग रही है. अब भाई विचार विमर्श हुआ देव साहब से भी, फिर क्या हुआ, इन केम वहीदा रहमान. और जब वहीदा रहमान आती थी तो एक्टिंग के साथ अपने डांसिंग स्किल्स भी लेकर के आती थी. ये आपको देखने को मिलेगा गाइड में जब उन्होंने वो गाना किया है ना, आज फिर जीने की तमन्ना है. ओ हो हो पुरानी जीन्स पे मैं हूँ श्रेया. अगर आपको मुझसे कुछ बात करनी है ना तो बस इस आवाज़ के पीछे आपको मिल जाऊंगी फेसबुक और इंस्टा पे. हैंडल है मेरा RJ Shreya with Love. That's RJ SHRUYA Shreya with Love.

आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर 89.6 मिर्ची।

इनको फॉरेन भेजा गया था कलर की टेक्निक को बारीकी से समझने के लिए। पुरानी जीन्स पे आप हो श्रेया के साथ एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द फिल्म गाइड। ये नव केतन प्रोडक्शंस की यानी देव साहब की, उनके भाई विजय आनंद की पहली कलर फिल्म थी। अब हुआ ये कि विजय आनंद ने पहली बार एज एडिटर कमान पकड़ी थी अलोंग विद बाबू शेख एंड गाइड वॉज द फर्स्ट कलर फिल्म। सो विजय आनंद चाहते थे कि हर चीज ना एकदम कमाल हो, पहली कलर फिल्म है उनकी खुद की तो इट हैज टू बी परफेक्ट। तो उसके लिए उन्होंने सिनेमेटोग्राफर फेली मिस्त्री जी को ना अब्रॉड भेजा था, हॉलीवुड भेजा था टू नो द टेक्निक टू शूट द फिल्म इन कलर एंड इट केम आउट सो ब्यूटिफुल। अगर आप रेट्रो फैन हैं और आपने गाइड नहीं देखी तो क्या आप रेट्रो फैन हैं? और पता है आपको ये किसने मुझे इंट्रोड्यूस किया था? इट वॉज माई मॉम हू सेड कि बाकी रेट्रो फिल्म के बारे में तुम बहुत बात करती हो, गाइड इज अ मास्टर पीस एंड इट इज। पुरानी जीन्स पे मैं हूँ श्रेया, गाने सुन करके वापस आओ, अभी तो बहुत सारी बातें करनी है इसी फिल्म की।

सिर्फ मिर्ची पर 89.6 89.6। आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

देव साहब को ये गाना बिल्कुल नहीं पसंद आया था। फिर उन्होंने कहा कि चलो भाई, विजय यानी उनके भाई विजय आनंद, हु वाज एडिटिंग द फिल्म, हु वाज डायरेक्टिंग द फिल्म एज वेल, चलो एक काम करते हैं, गाना बना लो, बाद में देखेंगे रिटेन करना है कि नहीं करना है। बट बाय द टाइम इस गाने की शूट एंड हुई, ही लव्ड द सॉन्ग। पुरानी जीन्स पे आप और श्रेया के साथ गाइड फिल्म की बात हो रही है, देव साहब की फिल्म थी ये, एंड इस फिल्म का म्यूजिक देने वाले एस टी बर्मन साहब, गाने लिखने वाले शैलेंद्र जी, और उन्होंने एक गाना लिखा जिसपे वहीदा रहमान ने क्या परफॉर्मेंस दी। द सॉन्ग वॉज, अब ये गाना जब बनने लगा ना तो देव साहब को बिल्कुल नहीं पसंद आया, उनको लगा कि क्यों ही रख रहे हम ये गाना। लेकिन बाय द टाइम ये गाना शूट होकर के एकदम कंक्लूड हो रहा था, ही लव्ड द सॉन्ग, एंड फिर इस गाने को रिटेन किया गया, एंड व्हाट अ प्रिटी प्रिटी सॉन्ग। ये गाना मैं ऑलरेडी आपको सुना चुकी हूँ तो फिर से नहीं सुनाऊंगी। लता जी का ही एक और गाना कमिंग अप राइट नेक्स्ट। मैं हूँ श्रेया ऑन पुरानी जीन्स।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: वेकेशन ओवर हुआ है अब जाना होगा स्कूल, लेट मॉर्निंग उठने का बंद होगा रूल, बैग्स ऑन योर शोल्डर्स, एनर्जी रखना फुल, क्योंकि मिर्ची लेके आ रहा है पार्टी सुपर कूल। सेट योर ड्रीम्स, सेट योर गोल्स, कॉन्फिडेंस का टूल, अब टाइम आ गया है सबको जाना होगा स्कूल, सो ज्वाइन करो ये

0: गूगल आपकी सर्च हिस्ट्री जानता है, इंस्टाग्राम आपकी लाइक्स, नेटफ्लिक्स आपकी चॉइस, लेकिन सुहानीशा वो सब जानती है बिना किसी प्रॉम्प्ट, पासवर्ड या परमिशन के। एक्सपीरियंस द इम्पॉसिबल फॉर द फर्स्ट टाइम इंडियाज मोस्ट सेलिब्रेटेड मेंटलिस्ट सुहानीशा लाइव इन कतर ऑन 25th सितंबर एट QNCC।
1: Early bird tickets out now. Get them at STT Snoo Noo. Book yours now.

ये मूवी दो वर्जन्स में शूट हुई थी, एक इंग्लिश वर्जन में इन कोलैबोरेशन विद पर्ल एस बक, डायरेक्टेड बाय टेड डैनियल ल्यूस्की, एंड इट वाज टू इंट्रोड्यूस देव आनंद साहब टू वेस्टर्न ऑडियंस। और हिंदी वर्जन उसके बाद में आया जब देव साहब के छोटे भाई विजय आनंद ने इस फिल्म को डायरेक्ट किया। पहले ये था कि भाई एक ही वर्जन को वापस शायद डब कर लेंगे, लेकिन नहीं, देव साहब को लगा कि भाई ये तो चीटिंग हो जाएगी हिंदी ऑडियंस के साथ। और फिर हाँ, बहुत सारे कॉन्सेप्चुअल क्लैशेस भी हुए थे जिसकी वजह से देव साहब ने इसकी बागडोर संभाली, अपने भाई को भी संभलवाई और नव केतन प्रोडक्शंस के अंडर में ये फिल्म को बनाया गया। टॉकिंग अबाउट द फिल्म ऑफ कोर्स गाइड, पुरानी जीन्स पे मैं हूँ श्रेया। वापस आओ, अभी तो हाईवे पे भी जाना है।

0: सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: बॉलीवुड बोल डाल बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल
2: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
3: गुलशन देवैया कौन सी फिल्म को देखकर लगा था कि मुझे एक्टर बनना है, मैं भी ये कर सकता हूँ?
4: सत्या देखे तो उम्मीद जगी थी कि हम आ सकते हैं। मनोज जी को देख के लगा कि नहीं नहीं कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं।
3: ये तो सत्य है कि आप भी कर सकते हैं। दिस वॉज गुलशन देवैया ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: बॉलीवुड बोल डाल बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल
2: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
5: इट्स ऑल डाउन टू डोनी इज़न्ट इट। 4 बॉल्स लेफ्ट, दे नीड 12 रन्स टू विन।
6: महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है ये सामने वाली टीम को कभी पता नहीं चला, लेकिन उसे पता है। सलमान खान अभी अपने फार्म हाउस में हॉर्स राइडिंग के बारे में सोच रहे हैं या
7: आर यू थिंकिंग ऑफ लाइक अ फ्लाइंग कार्पेट? आर यू थिंकिंग फ्लाइंग कार्पेट?
8: कैसे किया, सीरियसली कैसे किया ये?
6: उसे सब पता है। Ladies and gentlemen, your mind is about to get blown because number one mentalist from India, the Suhani Shah, is coming to Qatar for the very first time. Catch her live on 25th September at QNCC.
9: Early bird tickets out now. Get them at STT Snoonu. Book yours now.
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

पुरानी जीन्स पर श्रेया का जाने का टाइम हो गया है और जब मैं जाती हूँ तो आपको तो पता ही है मैं अपने साथ गाड़ी में आपको बैठा ले जाती हूँ। और कहाँ जाते हैं अच्छा आज का हाईवे हिट उन लोगों पे है जो ना जुबान से ज्यादा बात नहीं करते, उनको सामने वाले की नजरों से सब पता चल जाता है। पूरा कमरा भरा हो सकता है, पूरा हॉल भरा हो सकता है लोगों से, लेकिन इनकी बातें नजरों से चल रही होती हैं और शायद कुछ ऐसा कह रही होती हैं। बहुत कम लोगों की नजरें आपको प्यार के काबिल समझ पाती हैं। अगर ऐसी कोई नजर आपके पास है ना, उसे संभाल के रखना। दिस इज मी श्रेया, ओनली ऑन पुरानी जीन्स।

जा बुरा करते हाल, पलक फड़के आए के दिल धड़के, उमर की उठा कड़कती कमा, कातिल अदा जालिम हया।

0: गाने को गाया है सुबोध शर्मा ने, म्यूजिक दिया है मिथुन ने और लिरिक्स लिखे हैं सईद कादरी ने। फिल्म आवारापन 2 से सुनते रहिए बेजुनून, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ। 89.6, 89.6,
1: it's hot.

आगे भागूं मैं ये पीछे पीछे आए, कुछ ना देखे कुछ ना सोचे आ...

0: मैं क्यों बेचैन रहता हूँ,
1: क्यों
0: मेरी इस बेकरारी की वजह क्या है बता दूँ क्या
1: क्या

इस गाने को गाया है और कंपोज किया है विशाल मिश्रा ने और लिरिक्स लिखे हैं राजशेखर ने। फिल्म टॉक्सिक से सुनते रहिए तबाही, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना, 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।